मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 सितंबर सन 2026 सुबह के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। तो श्रोताओं उठिए, जागिए, नींद को त्यागिए, मुंह हाथ धोइए, बिछौना छोड़िए और स्वागत कीजिए इस प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह का। इसमें न जाने ये दिन आपको दिया है ईश्वर ने और न जाने आज के दिन कितनी सारी खुशियां, संभावनाएं, ऊर्जाएं और न जाने क्या क्या छुपा हुआ है भविष्य के गर्त में। तो नींद को त्यागिए और खुले दिल के साथ मुस्कुराकर स्वागत कीजिए इस खूबसूरत सी सुबह का और ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी लखनऊ, क्योंकि आकाशवाणी लखनऊ पे इस समय कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्कार लखनऊ। और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं नंदिनी मिश्रा। स्वीकार कीजिए नमस्कार नंदिनी का। और फिलहाल 6 बजने वाले हैं तो आइए आपको सुनाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
2: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
3: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए

ही खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम आरंभ हो गया है। नमस्कार लखनऊ। और नमस्कार लखनऊ में समाचारों के बाद हम बात करते हैं कृषि से जुड़ी। तो आज की कृषि चर्चा का विषय है फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग और पैकेजिंग।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां फल और सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं, वहां इनकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि किसान भाई जहाँ फल और सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, तो इनकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें?
2: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फल एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, विपणन एवं भंडारण। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फल एवं सब्जी एक पेरिशेबल कमोडिटी है, यानी ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इनमें पानी की मात्रा और चीनी की मात्रा दोनों ही अधिक होती है। इसी वजह से इसको हमें एक अच्छे तरीके से ग्रेडिंग, पैकेजिंग और इसकी भंडारण करना है और

0: ग्रेडिंग, पैकेजिंग और इसकी भंडारण करना है और बाद में उसकी विपणन व्यवस्था करनी है। इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, उनकी फसल अधिक समय तक सुरक्षित रहेगी और उपभोक्ता को भी अच्छी फसल और कम दाम का लाभ मिलेगा।
1: तो शुरुआत करें कि ग्रेडिंग ग्रेडिंग अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो ये हो कैसे?
0: जी, ग्रेडिंग का अर्थ है छटाई। ये पूर्व काल से ही चली आती है। सबसे पहले तो हम लोग फलों और सब्जियों को उनके आकार के हिसाब से छांटते हैं कि छोटा आलू या बड़ा आलू, या फिर जैसे केला है तो वो कच्चा केला या पक्का केला, कि कच्चे केले में हरा रंग होता है तो वो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है, और पक्का केले को जल्दी ही उसका विपणन करना चाहिए जिससे कि वो जल्दी से जल्दी उपभोक्ता तक पहुंच जाए इससे पहले कि वो खराब हो जाए। इसके अलावा हम वजन के आधार पर भी हम ग्रेडिंग करते हैं, और ये ग्रेडिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो होती है मैनुअल, जो अधिकतर किसान भाई खुद करते हैं, वो छांट छांट कर सब्जियों को अलग करते हैं, और दूसरी मशीन के द्वारा होती है। मशीन के द्वारा जो ग्रेडिंग होती है वो जल्दी होती है और सुरक्षित भी होती है, क्योंकि उसमें हाथ का जो स्पर्श नहीं रहता जिससे कि वो खराब नहीं होती है। लेकिन दोनों ही तरीके की ग्रेडिंग प्रचलित है।
1: डॉक्टर साहब, फल और सब्जियों की बात चल रही है तो बाजार में जो दिखता है वही बिकता है,
0: जी,
1: तो इसकी पैकेजिंग में क्या कुछ खास है?
0: बहुत खास बात है। आज की डेट में तो वही जो आपने बताया कि जो दिखता है वो बिकता है, तो पैकेजिंग आकर्षक होने के साथ साथ वो मजबूत होनी चाहिए, प्लस वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। इस पर आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है। प्लास्टिक पैकेजिंग को, पॉलिथीन को हम लोग ना कह रहे हैं और इको फ्रेंडली पैकेजिंग के ऊपर जा रहे हैं। इससे आपका उत्पाद ताजा रहता है और सुरक्षित रहता है। यह वजन में भी हल्का होता है तो इसके जो परिवहन के जो खर्चा होता है वो भी कम आता है।
1: यानी ट्रांसपोर्टेशन में
0: जी,
1: एक जगह से दूसरी जगह ले आने में भी आसानी रहती
0: आसानी
1: है,
0: रहती है।
1: तो इसके कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं?
0: पैकेजिंग तो आपकी ये कई तरीके की होती है। इको फ्रेंडली पैकेजिंग जो हमने आपको बताई, दूसरी वायुरोधी पैकेजिंग। वायुरोधी पैकेजिंग में ऑक्सीजन जो है वो कम से कम आपके फल या सब्जी के कांटेक्ट में आती है, जिससे कि उसका ब्राउनिंग का या खराब होने का कम खतरा रहता है। और ये भी आजकल काफी पैकेजिंग जो है वो प्रचलित है। प्लस शीत पैकेजिंग, ये इस तरीके से है जिससे कि उत्पादों को निम्न तापमान पर पैक किया जाता
1: यानी
0: है।
1: कम तापमान
0: जी,
1: पर।
0: न्यून तापमान पे, कम तापमान पे पैक करते हैं, जैसे 16 या 17 डिग्री कम से कम, तो जिससे कि वो खराब नहीं होते हैं जल्दी गर्मी से पा करके।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे फल सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और विपणन के बारे में।
0: जी
1: अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94 15 78 66 33, 9415 78 6633, 9415 78 66 33। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं और उसमें मुझे बहुत खुशी होगी।
1: डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा, आज आप कार्यक्रम में आई और फल सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि चर्चा में आज की चर्चा का विषय था फल, फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग और पैकेजिंग। जानकारी दे रही थी डॉक्टर नीलिमा गर्ग और आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। और इसी के साथ दोस्तों, कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में सकारात्मकता रखना, सकारात्मक विचार रखना, पॉजिटिविटी जीवन में जिनके होती है उनके जीवन की दशा और दिशा ही बदल जाती है। तो ऐसे ही कुछ बेहतरीन सुविचार प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज का भी विचार ऐसा ही कुछ है। तो आज का सुविचार है विश्व शांति, स्वर एवं मालिक डॉक्टर प्रेम नारायण मेहरोत्रा का।
3: विश्व शांति, दुनिया के विकास के शिखर पर पहुंचने के लिए शांति बहुत आवश्यक है। जब विश्व में शांति का माहौल होगा तो मनुष्य को ईश्वर पद्धति बुद्धि का पूरा उपयोग विकास के द्वारा मानवता

0: के कल्याण के लिए करने का अवसर प्राप्त होगा और तभी विश्व विकास की शिखर पर पहुंच पाएगा। मानस में तुलसीदास जी ने इसीलिए लिखा है कि जहां सुमत तहां संपत नाना, जहां कुमत तहां विपद निदाना। विश्व के सभी राष्ट्र अपनी प्राकृतिक संपदा मानवता के लिए उपयोग कर अपना विकास करें और विकसित राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख राष्ट्रों को पूरा सहयोग करें, तभी सनातन संस्कृत का वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत मूर्त रूप ले सकेगा और विश्व शांति की स्थापना हो सकेगी। आपसी प्रेम और सौहार्द पनपने के लिए गलत कार्य करने वालों के मन में दंड का भय होना आवश्यक है और इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिन भय होए न प्रीत। विश्व की सभी राष्ट्रों को अपनी सीमाओं और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सैन्य शक्ति का अवश्य विकास करना चाहिए, जिससे यदि कोई राष्ट्र उसके साथ उद्दंडता करने का दुस्साहस करे और शांतिपूर्ण विनय को न सुने तो उसे उसकी भाषा में समझाने में सक्षम हो। प्रभु राम ने अपनी वानर और भालू सेना के लिए समुद्र से रास्ता मांगा, लेकिन 3 दिन तक की प्रार्थना करने के बाद समुद्र ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्हें क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोसों बारिद विशिक कृषानु। और ज्यों ही उन्होंने बाण को धनुष पर चढ़ाकर खींचा, समुद्र का जल खौलने लगा और उसके अंदर के जीव जंतु मरने लगे। तब समुद्र देव ब्राह्मण के रूप में थाल में भेंट लेकर प्रभु राम के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी भूल स्वीकार कर प्रभु को श्वेत निर्माण का उपाय बताया। वर्तमान समय में आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या बना हुआ है और विश्व के विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने खड़ा है। इसके कृत्यों से सदैव निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और मासूम बच्चों की हत्या होती है और बड़ी मेहनत से बनाई गई जन संपत्तियों का विनाश होता है। जो भी संगठन लोग इन आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके पास बुद्धि तो है पर कुछ स्वार्थी लोगों के बहकावे में आकर वे अपनी बुद्धि का उपयोग गलत दिशा में कर रहे हैं। अतः आज के युग में जब हमारे विज्ञान ने हमें सैटेलाइट के रूप में ऐसी आंख प्रदान कर दी है कि हम अंतरिक्ष से हर देश की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं और आतंकवाद को विकसित करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों को चिन्हित कर अपने निशाने पर ले सकते हैं, संपूर्ण विश्व के विकसित राष्ट्रों को एकजुट होकर एक साथ इन केंद्रों को तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर की किसी उंगली में गैंग्रीन हो जाने पर डॉक्टर उस उंगली को काट कर शेष शरीर को विषाक्त होने से बचा लेता है, इस कार्य में किसी जाति धर्म के लोगों को विरोध की आवाज नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि मानवता के कल्याण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। जिस दिन दुनिया से आतंकवाद का नाश हो जाएगा, विश्व शांति उसी दिन पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगी और विश्व विकास के शिखर पर अग्रसर हो जाएगा।
1: तो आज का सुविचार था विश्व शांति, स्वर एवं आलेख डॉक्टर प्रेम नारायण मेहरोत्रा का। और बिल्कुल सच है कि विश्व शांति समय की दरकार है, लेकिन विश्व में शांति होने के लिए ये अति आवश्यक है कि मनुष्य के मन में शांति हो। अगर स्थिरता है मानव के मन में तो निसंदेह वो अपने आसपास के माहौल में हर जगह शांति और प्रेम ही बांटेगा। तो मन को शीतल और प्रफुल्लित करने के लिए आइए अब आरंभ करते हैं आज की आराधना।

ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है कि बड़ी से बड़ी आपदा को, विपदा को आसानी से पार किया जा सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य पूरे मनोभाव के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, निस्वार्थ भाव से, निर्विकार भाव से ईश्वर की शरण में जाए।

जहाँ ईश्वर की भक्ति होती है वहाँ सुख और शांति होते हैं, क्योंकि भक्ति और आस्था हृदय के सबसे पवित्र भाव होते हैं। और इसी पवित्र भावों के साथ जब ईश्वर की अपने आराध्य की छवि व्यक्ति हृदय में बसाता है तो निसंदेह कल्याण ही कल्याण होता है।

वाणी और पानी दोनों में ही छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। इसीलिए मन में शीतलता होनी अति आवश्यक है और ये शीतलता का भाव मन में तभी आता है जब व्यक्ति की आस्था, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ वो ईश्वर की आराधना करता हो, ईश्वर में आसक्ति रखता हो।

और इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहे, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहे, इसी शुभकामना के साथ अब हमारी आज की आराधना यही संपन्न होती है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज लीजिए सुनिए इसका भाग 288। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवाने जा रहे हैं सुंदरकांड का वो प्रसंग जिसमें लंका दहन का वर्णन आता है।

रावण की आज्ञा का अक्षरशः पालन हुआ, किंतु कपड़ा लपेटते घी तेल लगाते हनुमान की पूंछ लंबी होती गई। नगर के भंडार खाली हो गए। नगर में घुमा फिराकर जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान ने लघु रूप धारण किया और अटारियों पर जा चढ़े। 49 पवन चले, पवन पुत्र जैसे आकाश छू रहे हों। सारा नगर धू धू कर जल उठा। नगर वासियों में त्राही त्राही मच गई। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जिन्होंने अग्नि की रचना की हनुमान उन्हीं के दूत थे, स्वयं उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उलट पलट कर हनुमान ने सारा नगर जला दिया और तब जाकर समुद्र में कूद पड़े। तत्पश्चात वे सीता के सम्मुख उपस्थित होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज आपने सुना इसका भाग 288। गायक कलाकार थे श्रीकांत पलगांवकर और कविता कृष्णमूर्ति, और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आज आपने इसके अंतर्गत सुना सुंदरकांड का वो भाग जिसमें लंका दहन का वर्णन आता है। इसी के साथ श्री रामचरित मानस से गान यही संपन्न हुआ।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को शाम 6:50 से 7:20 के मध्य। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। संस्कृत में समाचार श्रोताओं आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में, क्योंकि सुबह के 6:55 होने वाले हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य यूपीआई इत्यस्य वैश्विक विस्ताराय आह्वानं कृतवान्। सः वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रम् आहूतवान् यत् तत् भारतस्य स्वदेशीयेन उपभोक्तृदेय जालेन यूपीआई इत्यनेन सह अधिकानां देशानां देय प्रणालीः संयोजये तथा भारतीय प्रवासी जनानां धनप्रेषण व्ययस्य न्यूनीकरणे साहाय्यं कुर्यात्। प्रधानमन्त्री एतद् ह्यः मुंबई नगरे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य सप्तम संस्करणं संबोधयन् उक्तवान्। प्रधानमन्त्री यूपीआई इत्येतत् वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विजेतारम् इति वर्णयन् उक्तवान् यत् गते मासे यूपीआई माध्यमेन 400,000,000,000,000 धन विनिमयाः अभिलेखिताः। सः सबलं प्रतिपादितवान् यत् धन विनिमय व्ययस्य न्यूनीकरणाय वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रणालीषु वैश्विक सहकारः नूतनं लक्ष्यं भवितव्यम्।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे दिन की शुरुआत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, सुबह का नाश्ता। हम सभी ने सुना है कि नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है, लेकिन इसे अक्सर हल्के में लिया जाता है या कभी कभी पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि नाश्ता आपकी सेहत और ऊर्जा के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सुबह का नाश्ता हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। रात भर सोने के दौरान हमारा शरीर ऊर्जा का उपयोग करता है और सुबह उठने के बाद हमारे मस्तिष्क और शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आप सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं तो ये शरीर के लिए लंबे समय तक भूखे रहने जैसा है। इसका सीधा असर आपकी कार्यक्षमता, मस्तिष्क के प्रदर्शन और पूरे दिन की ऊर्जा पर पड़ता है। नाश्ता पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। जब आप सुबह नियमित

0: और संतुलित नाश्ता करते हैं तो ये शरीर को दिन भर की गतिविधियों के लिए तैयार करता है। इसके विपरीत नाश्ता छोड़ देने से शरीर थका हुआ महसूस करता है और ऊर्जा का स्तर नीचे चला जाता है। ये स्थिति खासतौर पर उन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है जो शारीरिक मेहनत या मानसिक एकाग्रता की जरूरत वाले कार्य करते हों। सुबह का नाश्ता मस्तिष्क के कार्य को भी बेहतर बनाता है। रिसर्च बताती है कि जो बच्चे और वयस्क नियमित रूप से नाश्ता करते हैं उनकी एकाग्रता और याददाश्त बेहतर होती है। खासतौर पर बच्चों के लिए नाश्ता बेहद जरूरी है क्योंकि ये उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। स्कूल जाने वाले बच्चों में ध्यान और पढ़ाई में प्रदर्शन नाश्ता करने से बेहतर होता है। इसके अलावा सुबह का नाश्ता वजन नियंत्रण में भी मदद करता है। ये भूख को नियंत्रित करता है और दिन भर में अनावश्यक स्नैक्स खाने की आदत से बचाता है। जो लोग नाश्ता छोड़ देते हैं वे अक्सर दोपहर में ज्यादा खा लेते हैं जिससे वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। नाश्ता छोड़ने से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और ये वजन कम करने के बजाय वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं कि सही नाश्ता कैसा होना चाहिए। एक अच्छा नाश्ता वो है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन का संतुलित मिश्रण हो। भारत में हमारे पास पारंपरिक और पोषण से भरपूर नाश्ते के कई विकल्प हैं, जैसे कि पोहा, इडली सांभर, पराठा और उपमा जैसे व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण से भरपूर होते हैं। इन व्यंजनों को ताजे फलों या दही के साथ खाया जाए तो ये एक संपूर्ण और संतुलित भोजन बन जाते हैं। यदि आप जल्दी में हैं, तो ओट्स, दलिया या स्प्राउट्स जैसे फटाफट तैयार होने वाले विकल्प अपनाएं। ओट्स और दलिया में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है जो आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करती है। स्प्राउट्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इन्हें सलाद के रूप में खाया जा सकता है। फलों और मेवों को भी अपने नाश्ते का हिस्सा बनाइए। एक कटोरी पपीता, सेब या केले के साथ मुट्ठी भर बादाम और अखरोट आपके दिन की बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली के मक्खन वाले ब्रेड स्लाइस एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। सुबह का नाश्ता सिर्फ पोषण ही नहीं बल्कि बीमारियों से बचाव का भी तरीका है। नियमित नाश्ता करने वालों में डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा कम होता है। ये शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है और पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखता है। हालांकि ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि नाश्ता कभी भारी और तैलीय ना हो। ऐसे नाश्ते से सुस्ती और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हल्का, संतुलित और पोषण से भरपूर नाश्ता आपकी सेहत के लिए सबसे सही है। यदि आप अब तक नाश्ते को नजरअंदाज करते रहे हों, तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आज ही शुरू करें। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सुबह का नाश्ता कितना आवश्यक होता है हमारी सेहत के लिए। और इसी के साथ अब नमस्कार लखनऊ में बारी हो गई है कि हम आपको आज अपनी विभिन्न सभाओं में जो कार्यक्रम लेकर आए हैं उनके बारे में संक्षेप में जानकारी दें।

आज रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा चर्चा का विषय है। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुरेंद्र अग्निहोत्री की वार्ता सुनिएगा। विषय होगा संतुलन और प्रगति का मार्ग है साहित्य। कानून की बात, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज शाम 7:30 पर।

सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा आगरा और सीतापुर जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आज आकाशवाणी गोरखपुर की पेशकश होगा। इसमें समाज फरमाइएगा खसूसी कार्यक्रम मौजू होगा शायरे फितरत जिगर मुरादाबादी, तहरीर और आवाज मोहम्मद फारूक जमाल की। अब से थोड़ी देर में यानी 7:10 पर विविधा में आज का विषय है किसी के साथ हंसिए उस पर नहीं। हमारी दूसरी सभा में दिन में 1:15 पर हमारी दिन की सभा में बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम आंगनबाड़ी दिन में 1:15 पर। इसमें डॉक्टर कीर्ति नारायण जी बताएंगी बच्चों में निमोनिया के कारण।

यानी 7:10 पर विविधा में आज का विषय है किसी के साथ हंसिए उस पर नहीं। हमारी दूसरी सभा में दिन में 1:15 पर हमारे दिन की सभा में बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम आंगनबाड़ी दिन में 1:15 पर। इसमें डॉक्टर कीर्ति नारायण जी बताएंगी बच्चों में निमोनिया के कारण, इसके बारे में जानकारी देंगी। आपसे बातचीत करेंगी नीना सोनकर। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर आज डॉक्टर शरद कुमार सिंह सिक्की की भेंटवार्ता सुनिएगा, जल कृषि और मिश्रित मत्स्य पालन। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5:00 और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युव वाणी। शाम 5:45 पर कार्यक्रम होगा नई उड़ान। इसमें फिट इंडिया के तहत लखनऊ SGPGI नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर नारायण प्रसाद से बातचीत का विषय होगा ट्रांसप्लांट पश्चात जीवन शैली और सावधानियां। आपसे बातचीत करेंगी नीना सोनकर। शाम 6:30 पर किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो किसान। इसमें आज के विषय हैं खरीफ फसलों का सामायिक प्रबंधन, तोरिया उत्पादन की उन्नत तकनीक और समन्वित कृषि प्रणाली। विशेषज्ञ होंगे उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र और प्रस्तुति एवं कार्यक्रम का संचालन करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर आज सुनिएगा पखावज वादन, कलाकार होंगे पंडित राज खुशी राम। रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा अलका चतुर्वेदी के गाए कुछ गीत। और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा सुमोना एस पांडे एवं तारिका सिंह के गाए कुछ अवधि युगल लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब से थोड़ी देर में श्रोताओं आप सुनेंगे आज की विविधा।

विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। आज की विविधा, किसी के साथ हंसिए उस पर नहीं। कभी आपने गौर किया है, हमारी हंसी किसी के लिए खुशी भी बन सकती है और किसी के लिए जिंदगी भर का दर्द भी। किसी की चाल देखकर हंस देना, किसी के कपड़ों का मजाक बना देना, किसी के बोलने के तरीके की नकल करके सबको हंसा देना, या फिर किसी की कमजोरी को मजाक बनाकर कहना, अरे इतना तो चलता है, हम तो बस मजाक कर रहे थे। लेकिन क्या सचमुच मजाक था? हो सकता है आपके लिए वो सिर्फ कुछ सेकंड्स की हंसी हो, लेकिन जिस इंसान को सबके सामने हंसी का पात्र बनाया गया, उसके लिए वही कुछ सेकंड्स कई दिनों, महीनों या कभी-कभी पूरी जिंदगी की याद बन जाते हैं।

आइए आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक बच्चा स्कूल में कविता सुनाने के लिए मंच पर जाता है। डर के कारण उसकी आवाज थोड़ी कांपती है। वो एक शब्द गलत बोल देता है। पूरी कक्षा हंस पड़ती है। बच्चा भी मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। उस दिन के बाद शायद वो मंच पर जाने से डरने लगे। शायद वो हाथ उठाकर जवाब देना बंद कर दे। शायद अगली बार कविता याद होने के बावजूद कहे, मैडम मुझे नहीं आती। सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उसकी एक गलती को उसकी पहचान बना दिया। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा होता है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। जिस व्यक्ति के वजन पर हम हंस रहे हैं, शायद वो अपने शरीर को लेकर पहले से ही असुरक्षित हो। जिसके रंग, चेहरे या बालों पर हम टिप्पणी कर रहे हैं, शायद उसने आईने के सामने खुद को स्वीकार करने में बहुत लंबा वक्त लगाया हो। जिसकी आर्थिक स्थिति का हम मजाक उड़ा रहे हैं, शायद वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हो। और जिस इंसान की चुप्पी पर हम हंस रहे हैं, शायद वो भीतर से किसी ऐसी तकलीफ से गुजर रहा हो जिसे वो शब्दों में कह ही नहीं पा रहा है। इसीलिए अगली बार किसी पर हंसने से पहले एक पल रुकिए। अगर यही बात मेरे बारे में कही जाती तो क्या मुझे सच में हंसी आती? ये बात अपने मन में, ये सवाल अपने आप से अवश्य पूछिए। हंसी गलत बिल्कुल नहीं है, हंसिए और खूब हंसिए, लेकिन किसी को गिरा कर नहीं, किसी के साथ हंसिए। किसी की खुशी में हंसिए, किसी की सफलता पर हंसिए, किसी की मजेदार बात पर हंसिए। और अगर कोई गलती कर दे तो उसके ऊपर हंसने के बजाय उसका हाथ पकड़कर कहिए, कोई बात नहीं, अगली बार और बेहतर होगा। क्योंकि किसी को शर्मिंदा करके हम कुछ पल की हंसी तो पा सकते हैं, लेकिन किसी को संभाल कर हम उसके भीतर पूरी जिंदगी का आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। याद रखिए, शब्दों से कोई दिखाई देने वाला घाव नहीं बनता, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंसान के भीतर बहुत गहरे उतर जाते हैं। और सबसे खूबसूरत इंसान वो नहीं जो दूसरों पर हंसकर सबसे ज्यादा लोगों को हंसाए, बल्कि वो है जिसकी मौजूदगी में कोई दूसरा खुद पर हंसने से भी ना डरे। तो आज से एक छोटी सी कोशिश कीजिए, किसी के साथ हंसिए, उस पर नहीं, क्योंकि आपकी हंसी किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकती है और आपकी संवेदनशीलता किसी टूटे हुए इंसान का आत्मविश्वास भी लौटा सकती है। हंसी बांटिए, किसी की हंसी मत उड़ाइए, क्योंकि इंसान को हंसना खूबसूरत बनाता है, लेकिन किसी को रुलाना हंसनर, किसी को रुलाकर हंसना इंसानियत नहीं। तो इसी के साथ आज की विविधा यहीं संपन्न होती है। विविधा के एक और अंक में एक नवीन विषय के साथ आप सबसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आपसे थोड़ी ही देर में।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आज 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय 12,000 रूपए और सहायिकाओं का मानदेय 6,000 रूपए प्रतिमाह करने की घोषणा की। महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग ने जारी किए आदेश। लखनऊ में शुरू हुआ 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026, 5,196 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्तावों के किए गए MOU। और बारिश तथा बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिलों में नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अभियान की शुरुआत करेंगी।
5: यह अभियान पूरे सितंबर महीने में देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, पंचायतों और घरों में सामुदायिक भागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना।

0: योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा, लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा, उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृवंदन योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित यह लेख आंगनबाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनबाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में राज्य स्तरीय समारोह में नव नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 8,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए और सहायिकाओं का मानदेय 4,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं और उनके परिवारों को हर वर्ष 5,00,000 रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट हो चुके हैं और इसमें काम करने वाली महिलाएं सम्मानजनक मानदेय प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र विकसित भारत की संकल्पना का आधार बनेंगे।
2: बचपन अगर सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो यही स्वस्थ बचपन एक समर्थ और स्वस्थ भारत की संकल्पना को पूरा करेगा, और स्वस्थ और समर्थ भारत ही प्रधानमंत्री जी की संकल्पनाओं को पूरा करेगा, जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत होगा। उसका आधार कोई बनने वाला है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बनने वाले हैं।
1: इस बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के लिए महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जौहरी ने आदेश भी जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर 2026 से प्रभावी होगा और इसका भुगतान अक्टूबर 2026 में किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल पहचान आज की नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में प्रदेश के वस्त्र परिधान और हस्तशिल्प निर्यात में बढ़ोतरी हुई है।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक 350 बिलियन यूएस डॉलर की टेक्सटाइल अपेरल इकोनॉमी और 100 बिलियन यूएस डॉलर की टेक्सटाइल एंड अपेरल एक्सपोर्ट का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस राष्ट्रीय संकल्प में अपनी पूरी शक्ति के साथ भागीदारी कर सके। पिछले 6 वर्ष में प्रदेश के वस्त्र परिधान और हस्तशिल्प निर्यात में लगभग 56% की यूपी के अंदर वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश इस सेक्टर में देश का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन गया है।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूपी टेक मित्र पोर्टल लॉन्च करने के साथ हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में टेक्सटाइल सेक्टर में 5,196 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों के MOU किए गए, साथ ही 163 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ कंफर्ट और 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी का वितरण किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में कल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में यूपी स्टार्टअप संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह कार्यक्रम विचार से अवसर तक, नवाचार से निवेश तक और प्रतिभा से उपलब्धि तक की यात्रा को गति देने का एक प्रयास है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिलों में

0: नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और वहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बहराइच में घाघरा नदी खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहां के 12 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सीतापुर के करीब 274 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा नदी की बाढ़ से 102 गांवों के करीब 80,000 लोग प्रभावित हैं। प्रशासन ने बाढ़ और जलभराव वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से मौसम विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के पालन की अपील की है। उधर पिछले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। इसके चलते कई जिलों के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में बहराइच, बलरामपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती सहित कई जिलों के लिए वर्षा का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश भर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कानपुर देहात में जिला जज रविंद्र सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नुपुर श्रीवास्तव ने कल हरी झंडी दिखाकर इससे संबंधित प्रचार वाहनों को रवाना किया। प्राधिकरण की सचिव नुपुर श्रीवास्तव ने लोगों से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने वादों का निस्तारण कराने की अपील की।
1: लोक अदालत में ऐसे वाद जैसे वैवाहिक वाद होते हैं, बैंक वसूली ऋण वाले मुकदमे होते हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल और किसी भी तरीके के सिविल वाद या शमनीय वाद जो होते हैं, जो सुलह समझौते से निपट सकते हैं, उसके लिए बिना किसी अधिवक्ता शुल्क, बिना न्याय शुल्क के जनता सुबह 10 बजे से 5 बजे तक न्यायालय आ सकती है।
0: पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य रहे मोहसिन रजा को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। साथ ही आयोग के 8 सदस्य भी नामित किए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आज 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 12,000 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 6,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग ने जारी किए आदेश। लखनऊ में शुरू हुआ 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026, 5,196 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के किए गए एमओयू। और बारिश तथा बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिलों में नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ और नमस्कार लखनऊ में अब बारी है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम की। आज शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पखावज वादन। कलाकार हैं डॉक्टर राज खुशी राम।

ने 7 बार तांडव नृत्य किया है, जिसमें रौद्र तांडव और आनंद तांडव बहुत प्रचारित हुए हैं। रौद्र तांडव महासती के भस्म होने के बाद क्रोध में किया था भगवान शंकर ने ये नृत्य, और अगली बार जब माँ पार्वती से उनका विवाह हुआ उसके बाद उन्होंने जगत में श्रृंगार रस को व्याप्त करने के लिए दोनों ने मिलके माँ और पार्वती और शिव ने युगल नृत्य प्रस्तुत किया विश्व के समक्ष, वो है आनंद तांडव। इसी आनंद तांडव को हमने गुरु कृपा से एक परन बनाई है, जिसका नाम हमने आनंद तांडव परन रखा है। ये स्वनिर्मित है, आपके सामने प्रस्तुत है। और इसमें एक चीज और है, नृत्य को जब उन्होंने किया तो वो संकीर्ण जाति में है, और गणपति गणेश ने सर्वप्रथम पुष्कर नाम के वाद्य, जो आजकल पखावज या मृदंग के नाम से है, उसका वादन किया। तो आपके सामने प्रस्तुत है आनंद तांडव। जटा कटा सम भ्रमम भ्रमन्नलिम्प निर्झरि गले लवीच वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगद जलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम जटाटवी गलज जल प्रवाह पाहित स्थले गले वलम्ब लुंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमट डमट निनाद व डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम बमक बमक बम बमक बमक बम बमक बमक बम बमाक बम बम बमाक बम बम बमाक बम बम बमाक बमाक बम बमाक बम बम बम बमाक बम शिव शंकर सतीपति कैलाशपति गिरजापति हर हर हर विश्व शर कार्तिकेय गणपति पितु शंभु सांब सदा शिवकारक शत्रुविदारक डमरु अरुत्रिशूल करधारक महादेव अभयंकर प्रलयंकर कृतकता धान धिकिट धग्र धिकिट कृध धिकिट नतिकत त्रिकृतान धा त्रिकृतान धा त्रिकृतान धा डम डम डम डम डिमि डम डिमि डम डम डमरु बजावत पार्वती संग नटत नटेश्वर संगति करत पुष्कर गणपति दे दे दे ताम दे दे दे ताम धा दे दे दे ताम दे दे ताम धा दे ताम दे ताम दे ताम तिग दा दे दे दे ता दुम किट धा दे दे दे ता दुम किट धा दे दे दे ता दुम किट धा या छवि निरख राज ताली दे स्तुति गावत मृदंग बजावत सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहिता नमामि कत्त दिगट धगट दिगट धगट धान धा दगट धान धा दगट धान धा भवम भवानी सहिता नमामि कत्त दिगट धगट दिगट धगट धान धा दगट धान धा दगट धान धा भवम भवानी सहिताम नमामि कत्त दिगट धगट दिगट धगट धान धा दगट धान धा दगट धान धा।

प्रस्तुत हैं कुछ परने जो घरानेदार भी हैं। सबसे प्रथम नाना पांसे घराना। दादी ट दादा किट किड़दा किट गिद्धा किट दिद्धा किट किट किट धगत टिकर दत धगत टिग दिगन नगत यगत टिग गत तगिन धग दिगत त्रिगर दग दा गत टिग तगिन धग दी थु थु त्रिगर के दा क्रदान धा दा गिन धा कद धग दिगत त्रिगर तक दा कत कत कत टिग तगिन धग दिगन धग दिगन धद धद दिट दिट किट तग तग दुम किट तग देत किट धा ग दिगत धग दिन दिलान देता त्रिगर तक दा गदी गन धग टिट गत टिट तगिन धग निदा कतिट तगिन धग टिट धा न धा कतिट तगिन

एक रामपुर दरबार की शतरंगी परन, जिसमें छह लय बनती हैं। दिन ता तिट धा तिट कत ग दी ग धातिट धातिट धा धातिट किट धा किट धा धान धिकिट तक धिकिट तधिकिट

कुछ चक्रदार परने द्वेक तगदी गल, ये अवधि घराने की चक्रदार परन है जो फरमाइशी है। तगते टिकिट तगते टिकिट तगते तगते तगते धगते टिकिट धगते टिकिट धगते धगते धगते धगन धिकिट धगन धिकिट धगते धगते धगते धगन धिकिट धगते टिकिट धगते धगते कतगदी धिकिट तगिन धत तगिन धत्ता किट तगिन दान धा। फरमाइशी है, देखें।

चैत्र का महीना चल रहा है और अभी 22 तारीख से माँ का स्तवन नवरात्र के रूप में होगा, जो 9 दिन 9 देवियों के पर आधारित होगा। 9 दुर्गा को स्कंद पुराण में प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस तरह श्लोकबद्ध किया गया है। इसी श्लोकों पर आधारित गुरु कृपा से हमसे रचना बन गई है, जो नवदुर्गा पर्ण के नाम से प्रचारित है। इस स्वनिर्मित रचना को आप सुने और माँ दुर्गा का स्तवन अपने हृदय में करें। धा दिन ता तेट धा त्रिकट गति गले धा त्रिकट गति गले धा त्रिकट धा गति धूम गति गति गले धा धूम गति गति गले धा धूम गति गति गले धा दुर्गे दुर्गति हारणी माता दधान तान धा गति गले धाता शैल पुत्र जय ब्रह्मचारिणी दर्प दलनि त्रय ताप हारणी गति गले धा धा गति गले धा धा गति गले धा धा चंद्र घंटा घनन घनन घन घनात घननन कुष्मांडामा गदिन धान तान धा स्कंद मात जय कात्यायनी काल रात्रि जय कांत्रिकृत तक धागृत धूमृत घांत्रिकृत तकान महागौरी जय सिद्धिदात्री अणिमा धा महिमा धा लघिमा धा त्रिकृत तक ईशत्तधा वैशत्तधा प्रकाम्य प्राप्त अंतरमितत्तधा धा धा पुंगी फल तांबूल लमग ध्वज कुमकुम अक्षत प्रसून श्रीफल कपूर कर धर राज नमत जय नव दुर्गे शंख नाद दिग दिग दिगंत में मृदंग करत गुंजार धर जय मा जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंड विच्चे नमः धा धा धा धा धा धा धा धा धा। बीच में अष्ट सिद्धि और 9 प्रकार की पूजन सामग्री का भी प्रयोग, जो मृदंग वांग में प्रथम बार आया है, इसका भी प्रयोग किया गया है इस स्मरण में।

0: जय मृदंग धा।
1: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुन रहे थे पखावज वादन कलाकार थे डॉक्टर राज खुशीराम। आज आपने प्रस्तुत किया पखावज पर शूल ताल। इसी के साथ अब आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे हमारा आज का नमस्कार लखनऊ। फिलहाल नमस्कार नकलू लखनऊ यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात सुनवाने के लिए। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी

0: ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेस का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment.

0: establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने

0: के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले दो दिनों में अमरीकी युद्धपोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के दो प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में क्वेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
1: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75,000 से 80,000 वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इसे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
3: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांस

0: फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबलेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आतंकवादी मामलों पर भी जोर, कृषि बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

किसी की सफलता के पीछे मेहनत, लगन और सही दिशा में आगे बढ़ने का जज्बा होता है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी युवा जिन्होंने सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट और फाइनेंस के क्षेत्र में शानदार अनुभव हासिल किया। अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाई और कई उपलब्धियां भी हासिल की। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके सफर, अनुभव और भविष्य के सपनों के बारे में।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, आप अपना नाम तो बताइए।
1: जी, मेरा नाम सीए गीतिका अग्रवाल है, बरेली की
0: आपने
1: रहने वाली हूँ।
0: जी एक आपने टारगेट बनाया था, उसको अचीव भी किया आपने, और ये भी हमने सुना है कुछ सीक्रेट कि आप अपने दम पर सीए के रूप में स्थापित हुई हैं, क्या कहेंगे आप?
1: जी, ये आपने सही सुना है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी सीए नहीं था, बट इस बात को मैं थोड़ा सा अमेंड करना चाहती हूँ। अपने दम पर नहीं,
0: जी
1: पर हाँ, मैं अपने पापा के दम पे जरूर सीए बनी हूँ। मतलब मेरे पापा चाहते थे, मैं उनकी सबसे बड़ी लड़की हूँ, वो चाहते थे कि मैं कुछ बहुत अलग करूँ।
0: जी
1: और घर में इंजीनियर, डॉक्टर्स बहुत सारे थे, लड़कियां भी थी, बट कोई भी लड़की सीए नहीं थी, तो उन्होंने मुझे पुश किया और मैं सीए बन गई।
0: क्या बात है। मतलब देखिए, ये आपका अपने फादर के प्रति प्यार है कि आपने पापा जी को शामिल किया अपने सीए बनने में, ये आपका बड़प्पन है और यही आपका कर्तव्य भी था। अच्छा, ये बताइए गीतिका कि आपका जो सीए का वर्क है उसके अनुभव के बारे में बताइए, क्या काम होता है उसमें? अभी कुछ लोगों को, हमारे सुनने वालों को शायद मालूम ना हो कि सीए का वर्क क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए।
1: जी, सीए के प्रोफाइल में एक काम नहीं होता, हम लोग काफी सारे लेवल्स पे, कई चीजों पे काम करते हैं। बट अगर मैं सबसे बेसिक बात

0: बताऊं तो सीए से जो मैंने सीखा है या जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है
1: जी
0: वो ये है कि किस जैसे हमारी जिंदगी में हम लोग हमेशा एक हैप्पी एंडिंग को प्रेफर करते हैं, यही चीज मुझे अकाउंट्स में कहीं ना कहीं दिखती है कि आपकी जिंदगी में कोई भी चीज कहीं से भी आउट ऑफ बॉक्स भी कोई एंट्री आ रही है बट लास्ट में आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी।
1: क्या बात है, मतलब प्रैक्टिकली आप बहुत बढ़िया सोचते हैं।
0: धन्यवाद।
1: अच्छा गीतिका, आपने मेरे समझ से कई कंपनियों में भी वर्क किया है, तो वहां के अनुभव के विषय में भी बताइए हमारे यूथ को कि वो भी उस क्षेत्र में जाकर कुछ अपना नाम कमा सकते हैं, शहर का नाम रोशन कर सकते हैं, बताइए कुछ।
0: सर आपके माध्यम से ये तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आपका एक कंफर्ट जोन होता है जब आप घर में रहते हो, लेकिन हर इंसान को अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दुनिया देखनी चाहिए। मैंने ये दुनिया देखी और ये खूबसूरत है, मुझे लगता है बहुत खूबसूरत है और सबको निकलना चाहिए। जिंदगी के पड़ाव में जब आप खुद अपने दम पे खड़े होकर कुछ करते हो तो उसका जो ग्लो आपके चेहरे पे आता है वो अलग ही होता है।
1: बिल्कुल सही
0: मैं
1: बात।
0: अपनी कंपनी की तरफ से सिंगापुर तक घूम के आई हूँ एंड मेरा एक पैसा भी नहीं लगा और मैं विदेश घूम आई। आई एम वेरी ग्लैड कि हाँ मैं अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकली और मुझे ये मौका मिला।
1: क्या बात है। और वैसे आपके कार्य क्षेत्र में एक रिपोर्ट होती है MIS,
0: जी
1: वो क्या होता है, वो जरा वो भी थोड़ा सा बताएं।
0: एक्चुअली MIS रिपोर्ट को हम बेसिकली मैनेजमेंट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। उस रिपोर्ट में हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहा है, उसको हम समराइज करके मैनेजमेंट लेवल और VPs लेवल में उसको प्रेजेंट करते हैं। VPs वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे, तो बेसिकली जो CEO CFOs होते हैं उनकी एक मंथली मीटिंग होती है, क्वार्टरली मीटिंग होती है, जिसमें उस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है। हम उस रिपोर्ट के थ्रू उनको पूरा बिजनेस का ओवरव्यू दिखाते हैं कि आपके फाइनेंस लेवल पे आपका बिजनेस किस रेट से ग्रो कर रहा है, एक्सपेंसेस कहाँ हैं, रेवेन्यू कहाँ है।
1: बहुत बढ़िया, मतलब कम शब्दों में आपने पूरा बिजनेस बता दिया हमारे सुनने वालों को, है ना।
0: जी
1: आगे गीत का, काम करने के दौरान जो सीए का आपका वर्क है,
0: जी
1: शुरू शुरू में आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मुश्किल तो आई होगी, और उन मुश्किलों को आपने कैसे संभाला।
0: सर, जैसे मैंने आपसे अभी पहले कहा कि कंफर्ट जोन से निकलना एक बहुत मुश्किल काम होता है, तो जब मैंने अपना फर्स्ट जॉब शुरू किया था, तो आप जब आप जॉब मार्केट में आते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको टाइम जोन के अकॉर्डिंग काम मिलेगा। सो मैंने नाइट शिफ्ट में भी काम किया है, तो उस शिफ्ट को फॉलो किया है बिकॉज आप US वालों के साथ काम करते हो, सो यू नीड टू बी अवेलेबल एट दैट टाइम, राइट।
1: जी।
0: तो उस चीज को मैनेज करते हुए अपना लाइफ बैलेंस मेंटेन करना एक बहुत बड़ा रिस्क और टास्क था मेरे लिए शुरू में, बट रिसेंटली मैंने उसको मैनेज किया और अपने शिफ्ट चेंज किए। सो वो एक लंबा जर्नी है, मुझे ऑलमोस्ट 6 to 7 years हो गए हैं जॉब करते हुए।
1: जी, बहुत हमारी ओर से अभी से आपको शुभकामनाएं दे देते हैं कि आप खूब तरक्की करें। एक लड़की होने के नाते जब आप सीए बनी थी, बहुत सारे नए चेहरों के साथ आपको काम करना पड़ा होगा,
0: जी
1: उस समय क्या फीलिंग रही आपकी और आपके जो कलीग थे उनकी क्या मनोदशा रही, कुछ प्रैक्टिकली कुछ बताएं।
0: जी ऐसा मैंने अपनी तरफ से तो कुछ फील नहीं किया क्योंकि बचपन से ही मेरे पापा ने और मम्मी ने मुझे एक बात सिखाई थी। मैं कोएड में पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे उन्होंने सिखाया था कि तुम्हारे साथ जो लड़के पढ़ रहे हैं या और बच्चे पढ़ रहे हैं वो
1: जी
0: सब तुम्हारे भाई बहन जैसे हैं, जैसे तुम अपने कजन्स के साथ रहते हो वैसे ही उनके साथ रहो।
1: क्या बात
0: तो मैं शुरू से ही, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे, बॉयज भी गर्ल्स भी, तो मैंने कभी उनमें लड़का लड़की वाला फर्क खुद से तो नहीं किया, बट ये मैं मानती हूँ कि जब मैं प्रोफेशनली आई तो कई लोगों को लगता था कि शायद मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी, बट मुझे उनको रॉन्ग प्रूव करने में बड़ा मजा आता था।
1: क्या
0: मतलब
1: बात है, यही स्पिरिट रहनी चाहिए हमारे बच्चों में, है ना।
0: जी
1: अच्छा गीतिका, अपने कैरियर को, जो सीए का कैरियर है, इसको आप कहाँ तक ले जा सकते हैं।
0: सर, रिसेंटली मैं एक मैम से मिली हूँ एंड वो मेरी एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं। मींस जैसे अभी आप खुद भी कह रहे हैं कि प्रोफेशनली कई बार ऐसा होता है कि काफी लड़कियां काम नहीं करती हैं या हायर पोजीशंस पे नहीं होती हैं, राइट, बट मैं

0: अपने जर्नी में दो लेडीज से मिली हूँ, एक मेरी मैनेजर थी ओरेकल में, इस बबिता शनॉय, वो ओरेकल में मेरी मैनेजर थी एंड वो मेरी फर्स्ट लेडीज मैनेजर थी एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय हर कि हाँ मैं उस पोजीशन पे अपने आप को सोच सकती हूँ, कि मुझे अभी तक लगता था हायर लेवल पे लेडीज नहीं है बट ऐसा नहीं है। एंड मेरी एक मैम है वो वीपी की पोजीशन पे है, वाइस प्रेसिडेंट, मैं को काफी इंस्पिरेशन मिलता है, मैं जैसे जैसे आगे मूव कर रही हूँ काफी हैं जो बहुत इंस्पिरेशनल फिगर्स बन गए हैं।
1: क्या बात है। अच्छा, एक अंत में एक प्रश्न और आपसे पूछेंगे
0: जी
1: कि हमारा जो आज का यूथ है, हमारा युवा है, उसको अगर इस फील्ड में आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, या जो बातें हम अभी तक डिस्कस नहीं कर पाए हैं और आप समझती हैं यूथ को बताना जरूरी है, वो आप अपना नजरिया रख सकते हैं।
0: सर, जितना मैं आजकल के यूथ को जानती हूँ,
1: जी।
0: दे आर मच मोर टैलेंटेड एंड कैपेबल, वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि उनमें थोड़ी सी पेशेंस की कमी है।
1: अच्छा।
0: जो सीए एक प्रोफेशन है वो आपको कंटिन्यूस पेशेंस मांगता है, तो अगर आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं
1: जी।
0: सो आई डोंट थिंक कि दे आर लैकिंग ऑफ एनीथिंग, दे आर कैपेबल, दे आर नॉलेजेबल एंड आजकल इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हर चीज ऑनलाइन सोर्सेज हो गए, बुक्स हो गई, हमारे टाइम पे तो बुक्स डिलीवर होने में महीनों लगते थे एंड
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बुक्स डिलीवर नहीं होती थी, क्लासेस नहीं अवेलेबल हैं, मैंने फाइनल के पेपर भी बिना कोचिंग लिए दिए हैं,
1: अच्छा।
0: और वो चीजें जो हमने डिफिकल्टी फेस करी थी उस टाइम पे वो अब नहीं है, तो मुझे लगता है उन लोग के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड भी है आजकल का यूथ, सो इट्स जस्ट दे नीड सम पेशेंस।
1: गीतिका, जैसे हमने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपसे पूछा था कि अपने दम पर आप सीए बनी है, तो आपकी इन बातों से जब जो एंड में आपने बोला कि मैंने कोचिंग भी नहीं ली, खुद बुक्स भी महीनों में डिलीवर होती थी, उसके बाद आपने पढ़ाई करके सीए की पदवी उपलब्धि प्राप्त की, तो ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए रहा है। और ऐसे में हमारे युवा जो सुन रहे हैं वो भी आपसे इंस्पायर होके कुछ ना कुछ इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे और अपने शहर, अपने देश का नाम आगे बढ़ाएंगे। गीतिका, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
2: तो ये थी हमारी खास बातचीत जिसमें हमने जाना कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सफर कैसा रहा, कारपोरेट जगत में काम करने के अनुभव क्या रहे और सफलता के लिए किन-किन बातों का महत्व है। उनकी कहानी यही संदेश देती है कि मेहनत, सीखने की इच्छा और लगातार आगे बढ़ने का जज्बा हो तो मंजिल जरूर हासिल की जा सकती है। हम उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।

कार्यक्रम यंग बरेली में अब आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ाते हैं। 16 नवंबर से स्वगणना, 1 दिसंबर से घर पहुंचेंगे प्रगणक। साथियों, जनगणना 2027 के द्वितीय चरण यानी जनसंख्या गणना की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक लोग स्वयं जनगणना प्रपत्र भर सकेंगे। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक 35 दिनों में घर घर जाकर जनसंख्या की गणना की जाएगी। जिलाधिकारी के अनुसार मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में तैयारियों की इस विषय पर समीक्षा भी की गई।

0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

ये जल भराव की समस्या का पहलू हम थोड़ा सा अलग मानकर आगे बढ़ते हैं। साथियों, जब बारिश होती है, जल भराव होता है, तो हमारे बहुत से युवा, जी यूथ, बाइक को निकालकर और जहां पानी भरा होता है उसमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? उनको आनंद आता है, या पानी दोनों साइड में जब उछलता है तो उनको आनंद आता है, हम समझ नहीं पाते। लेकिन हमारे युवा अगर हमारी इस बात को सुन रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे हम क्यों बात कर रहे हैं। अभी देखा गया है, कल परसों भी देखा गया है कि बाइक पर कुछ लोग, एक ट्रेंड चल गया है, फैशन चल गया है कि पूरे परिवार को लेकर चलने लगे हैं। ऐसे में जो हस्बैंड हैं वो बाइक चलाते हैं और उनकी धर्मपत्नी पीछे बैठती हैं। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है, आज के न्यूज़पेपर में भी है, कि पिछली सीट जो बाइक की होती है उस पर बहुत ऊंचा सा सामान रखा है, उस पर एक महिला बैठी है जो चलाने वाले की धर्मपत्नी है, और एक बहुत छोटा सा बच्चा उनकी गोद में है। अब बताइए, ऐसे में खतरा नहीं होगा क्या? हादसे की आशंका नहीं होगी? तो भाई, हम तो यही कहना चाहेंगे यंग बरेली कार्यक्रम के माध्यम से कि आप बाइक चलाएं, खुद चलें। अगर आप परिवार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का सहारा लें।

साथियों, अक्सर अक्सर क्या, अभी कल परसों पीछे जो निकल के गया है, बारिश बहुत हुई है और ऐसे में शहर में बहुत ज्यादा जगहों पर जल भरा हुआ है।

साथियों, आज 9 सितंबर 2026 को बरेली में कोई बड़ा त्योहार या वीआईपी मूवमेंट ना होने के कारण शहर का जो ट्रैफिक रूट है वो सामान्य रूप से चलेगा। जो पिछले त्योहारों के बड़े रूट डायवर्जन अब पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। हालांकि शहर के कुछ हिस्सों में चल रहे कंस्ट्रक्शन और रेगुलर नो एंट्री नियमों के कारण आपको रूट पर ध्यान देना होगा।

आपको आज का यंग बरेली प्रोग्राम कैसा लगा? हमें इंतज़ार रहता है आपकी फीडबैक का। अगर आप कार्यक्रम के विषय में कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप हमारी मेल आईडी लिख सकते हैं आपका patramela.bareilly@gmail.com। एक बार फिर से आईडी आपको बता देते हैं, आपका patramela.bareilly@gmail.com। और अगर आप चिट्ठी, खत या लिखकर भेजना चाहते हैं तो आप उसका भी एड्रेस नोट कर सकते हैं। कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली। और अब अपने दोस्त संजय को कार्यक्रम यंग बरेली से आज्ञा दीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम यंग बरेली 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ लोकगीत मदन मोहन की आवाज में। आइए सुनते हैं पहला लोकगीत।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के स्वर में कुछ लोकगीत। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज में एक और लोकगीत।

साथियों, मदन मोहन के स्वर में गाए इस लोकगीत के साथ ही हमारा लोकगीतों का ये सफर यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज पर 9 बजने को है। कुछ ही देर में हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए समीर का लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं शान और सुनिधि चौहान की, फिल्म का नाम मैं ऐसा ही हूं।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान

0: फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम।

धरती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए गुलजार का लिखा हुआ और विशाल भारद्वाज का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की। फिल्म का नाम ओ रोमियो।

में पीछे की बस्ती में कल जो कबूतर उड़ाया।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
5: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए पालोमी की आवाज में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गाना। स्वानंद किरकिरे हैं गीतकार और संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मंच म्यूजिक हरबी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज फिल्म से। गीतकार हैं तनिष्क बागची और हरबी सहारा, और संगीत दिया है तनिष्क बागची, मंच म्यूजिक और हरबी सहारा ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: आज ही कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और निर्माता अक्षय कुमार पर। भारतीय सिनेमा हर दौर में बदलता आया है और हर दौर की उसकी एक कहानी है। 90 का दशक वो दौर था जब सिनेमा ने रुपहले पर्दे के नए सितारों, उनके एक्टिंग और उनके फन से लोगों को रूबरू कराया। अभिनेता अक्षय कुमार इसी दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। ऊंची कदकाठी, असरदार डायलॉग डिलीवरी।
1: निकर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, पराठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6। तुहाडे सामने लैके आया एक रोमांचक गाना, सुनने वाले नु 101 रुपए इनाम। सुनो।

0: de bancă, sting bașa, bașcap, ucea, o să cea bașa.
1: फिल्मों में आए इस नए एक्टर को लोगों ने शुरुआत से ही खूब प्यार दिया। अपने स्टंट के लिए जाने जाने वाले अक्षय कुमार दिल्ली के रहने वाले थे। यहीं चांदनी चौक में जन्म हुआ उनका और पले बढ़े। इनके पिता का नाम हरिओम भाटिया और माता का नाम अरुणा भाटिया है। पिता पेशे से भारतीय सेना में अधिकारी थे। अक्षय के पिता को कुश्ती में भी रुचि थी और अक्षय कुमार भी खेलों में खूब रुचि रखा करते थे।

कुछ समय बाद अक्षय कुमार के पिता अपने परिवार को लेकर मुंबई के कोलीवाड़ा आ गए। यहाँ माटुंगा के स्कूल से कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए बम्बई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बॉक्सिंग से खासा लगाव होने की वजह से पिता को मनाया, बैंकॉक गए और यहाँ थाई बॉक्सिंग और यहीं मार्शल आर्ट भी सीखी। पैसे कमाना भी जरूरी था, इसलिए बैंकॉक में ही शेफ के काम में लग गए।

0: लगी।
1: भारत लौटने के बाद कोलकाता, ढाका और दिल्ली में भी थोड़े दिन तक अलग अलग काम करने के बाद वापस जब उनका मुंबई आना हुआ तो यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया।

अक्षय कुमार के मार्शल आर्ट के क्लासेस में एक छात्र के पिता ने उन्हें मॉडलिंग के लिए सुझाया और कुमार ने अपना पहला पोर्टफोलियो बनाने के लिए 18 महीने तक फोटोग्राफर जयेश सेठ के सहायक के रूप में काम किया। जरूरत के मुताबिक फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम करते रहे, जो उनका पैशन भी था। सिलसिला आगे बढ़ा और 1987 में फिल्म आज में कराटे प्रशिक्षक के रूप में कुमार ने अपनी पहली स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की और बाद में अक्षय कुमार ये मंच नाम अपनाया। एक ऐसी ही सुबह विज्ञापन शूट के लिए अक्षय कुमार को बेंगलुरु जाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई। फ्लाइट तो मिस हो गई, लेकिन इसी शाम एक फिल्म स्टूडियो में निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती से उनकी मुलाकात हुई। अक्षय कुमार की कदकाठी और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें फिल्म दीदार में बतौर लीड एक्टर साइन कर लिया, जिसमें अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर के साथ अनुपम खेर भी नजर आए।

फिल्म ने अक्षय कुमार के शुरुआती करियर को आगे बढ़ाया, कुमार की एक्टिंग को पसंद किया गया और फिल्म सौगंध में बतौर मुख्य अभिनेता उन्हें चुन लिया गया। इसी वर्ष अक्षय कुमार की फिल्म डांसर भी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास करिश्मा न कर सकी। बाद में अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार के लिए सफल रही और उनकी भूमिका को भी सराहा गया। इस फिल्म में उनकी को स्टार थी आयशा जुल्का।

इसी दरमियान राष्ट्रीय द्वारा निर्देशित फिल्म मिस्टर बॉन्ड, जो जेम्स बॉन्ड पर आधारित थी, रिलीज हुई। 1993 में केशुराम द्वारा निर्देशित फिल्म अशांत में अक्षय कुमार, डी आर विष्णुवर्धन और अश्विनी भावे के साथ नजर आए। फिल्म दिल की बाजी, कायदा कानून और सैनिक व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन फिल्म वक्त हमारा है कुछ हद तक कामयाब भी रही। समीर मलकान की फिल्म में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव रॉय की मोहरा, इन दोनों ही फिल्मों ने 1994 में अच्छा प्रदर्शन किया और सफल रही। फिल्म मोहरा में इंस्पेक्टर अमर सक्सेना के किरदार को एक नई पहचान तो जरूर मिली। रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा ने एक तरह से अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया और अक्षय कुमार का करियर ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा।

यश चोपड़ा की फिल्म ये दिल लगी में अभिनेत्री काजोल के साथ उन्हें अभिनय का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता ने फिल्मी गलियारों में अक्षय कुमार को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर पहचान दिलाई जिस पर फिल्म के चलने का भरोसा किया जा सकता था। फिल्म सुहाग और ऐलान जैसी कम बजट वाली एक्शन फिल्में भी अक्षय कुमार ने इसी दौरान की और इन्हें भी सफलता मिली। इन फिल्मों ने अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में शुमार कर दिया। 1995 में सबसे बड़ा खिलाड़ी और 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में उन्होंने की। दोनों का ही निर्देशन उमेश मेहरा ने किया। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार का स्क्रीन अपीयरेंस बहुत अलग था। पोनीटेल, लंबे कोट और खूंखार अंडरटेकर से कुश्ती कर उन्होंने फिल्म में खूब शोहरत पाई।

1997 में यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल तो पागल है डेविड धवन की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जो खिलाड़ी श्रृंखला की पांचवी फिल्म थी। इसमें कुमार की जोड़ी जूही चावला के साथ भी पसंद की गई। कमाई के नजरिए से ये फिल्म औसत थी। दोहरी भूमिका वाली फिल्म अफलातून ने एक बार फिर कुमार को सफलता दिलाई। कुछ कमोबेश प्रदर्शन के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में अभिनय किया। प्रीति जिंटा के साथ फिल्म संघर्ष और करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जानवर को बॉक्स ऑफिस पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली।

0: है।
1: सन 2000 में रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक फिल्म हेरा फेरी, जो प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म थी, कुमार के साथ साथ सुनील शेट्टी के करियर में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। सन 2000 में आई फिल्म धड़कन, 2003 में अंदाज, जो रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, इसमें लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार ने अभिनय किया। 2004 में ऐतराज और मुझसे शादी करोगी। इन फिल्मों के अलावा राजकुमार संतोषी की एक्शन ड्रामा फिल्म खाकी में अक्षय कुमार की जोड़ी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्य रॉय के साथ एक तरह से कहें तो सफल रही, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई। अमरीश पुरी, रवीना टंडन और राज बब्बर के साथ क्राइम फिल्म पुलिस फोर्स एन इनसाइड स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर चर्चित रही। सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी अच्छी कमाई वाली फिल्म साबित हुई।

2006 में फिर हेरा फेरी, सिंह स्किंग, 2007 में नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार की अन्य फिल्में भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर सफल रही एक तरह से। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव एक मनोरोग विशेषज्ञ का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता था। उनके साथ फिल्म में थी विद्या बालन। फिल्म में अक्षय कुमार के मजाहिया किरदार को पसंद किया गया। ये कॉमेडी हॉरर फिल्म कल्ट फिल्मों में शुमार है श्रोताओं, जिसे लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म के गीत संगीत को भी खूब पसंद किया गया।

फिल्म खिलाड़ी 420 में अक्षय कुमार ने दोहरी भूमिका निभाते हुए खतरनाक स्टंट्स किए, जो हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए विमान पर थे। इनके अलावा भी कुछ और स्टंट्स के लिए फिल्म में उन्हें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म अजनबी में कुमार नकारात्मक भूमिका में नजर आए। 2005 में आई फिल्म गर्म मसाला के लिए उन्होंने हास्य भूमिका अदा की और फिल्म फेयर पुरस्कार को अपने नाम किया। वर्ष 2007 की अगर बात करें तो उनकी चार फिल्में लगातार हिट रहीं। 2009 में रोहन सिप्पी के बैनर तले बनी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना दीपिका पादुकोण के साथ आई।

वैसे इस दौरान अक्षय कुमार की फिल्में व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव वाली रहीं। 2012 राउडी राठौर, 2014 में फिल्म हॉलीडे, 2012 में ही आई फिल्म ओ माय गॉड, 2015 में बेबी, 2016 एयरलिफ्ट, 2017 में जॉली एलएलबी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अभिनय की काफी सराहना हुई। 2016 में रिलीज क्राइम थ्रिलर रुस्तम, जिसके निर्देशक थे टीनू सुरेश देसाई, पटकथा विपुल के रावल ने लिखी। अक्षय कुमार ने कमांडर रुस्तम का किरदार अदा किया। इलियाना डिक्रूज ने रुस्तम की पत्नी का किरदार अदा किया। नौसेना अधिकारी रुस्तम पावरी की भूमिका को काफी सराहना मिली और अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार 2017 में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आए।

ये फिल्म स्वच्छता और खुले में शौच उन्मूलन पर विशेष ध्यान आकर्षित करती थी। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो अक्षय कुमार की स्वयं निर्मित फिल्म थी। इसके साथ फिल्म पैडमैन भी चर्चाओं में रही। 2019 में केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4, गुड न्यूज और 2021 में एक्शन फिल्म सूर्यवंशी ने मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के साथ व्यवसाय किया। 2021 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ भी थीं। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी काम किया। एटीएस प्रमुख डीसीपी वी सूर्यवंशी यानी अक्षय कुमार मुख्य किरदार की भूमिका में थे। 2023 में ओ माई गॉड 2।

अक्षय कुमार की कुछ और फिल्में जैसे भागम भाग, एनिमेटेड फिल्म जंबो, दे दनादन, कमबख्त इश्क, प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म खट्टा मीठा, फराह खान द्वारा निर्देशित फिल्म तीस मार खान, फिल्म पटियाला हाउस, देसी बॉय, सिंह इज ब्लिंग, इन सभी फिल्मों में अक्षय कुमार ने बड़े ही अलग अलग किरदार निभाए। अक्षय कुमार की फिल्मों को देखें तो आज भी उनके द्वारा निभाए गए तमाम किरदार ऐसे हैं जो लोगों के दिलों में जगह पाते हैं। कुमार ने फिल्मी दुनिया में खुद को एक बड़े ही वर्सटाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने पर्दे पर हर तरह के किरदार अदा किए और यही वजह है कि अक्षय कुमार की अदायगी को लोग भूल नहीं पाते।

अपने लंबे करियर में कुमार ने स्टंट अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी की मेजबानी 4 सीजन तक करी। टीवी रियलिटी शो डेयर टू डांस लॉन्च किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। अक्षय कुमार सामाजिक संस्थाओं के लिए भी बढ़ चढ़कर कार्य करते रहते हैं। कुमार को उच्चतम करदाता सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया गया है। इनके अलावा अक्षय अपने फिटनेस का विशेष ध्यान रखते हैं। व्यायाम, किक बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, तैराकी, पार्कौर के संयोजन के साथ खुद को फिट रखते हैं अक्षय कुमार। भारतीय कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स टीम के मालिक भी हैं। फिल्म जगत के सुपरस्टार राजेश खन्ना और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना उनकी पत्नी हैं।

अक्षय कुमार के बेटे का नाम आरव और बेटी का नाम नितारा है। कुमार को दो फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अजनबी और गरम मसाला के लिए दिए गए। रुस्तम और एयरलिफ्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

अक्षय कुमार विंडसर विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय सिनेमा में मानद डॉक्टरेट की उपाधि और 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम श्रोताओं आज केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार पर। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर 10 बजे हाजिर हो गए हैं हम प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं आपका दोस्त संजय आपके साथ पूरे 60 मिनट। पहला गाना है आपकी पसंद पर मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, फिल्म है संघर्ष। सुनना चाहा है गढ़ी कोटाहा पंचकूला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम सानिया, मोहम्मद इलियास मुसाहिद और अक्सा आयशा उमर और समीना अंसारी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना गुरुवंश सिंह जोड़ा, पाकुड़ झारखंड के उत्तम कुमार, भगत, श्वेता, किसु, अर्णव और सत्यम, बोड़ागाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, नागलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्डा, बहेड़ी से इश्तियाक अहमद इदरीसी, रुबीना इदरीसी, दादा बाबू रोड गेड़ी झारखंड के मोहम्मद यासीन अनजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा और चाहत। नागलोई दिल्ली से उनके राजेंद्र और उनके बहुत सारे साथी, उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश के भेरूलाल बागतरिया, भोला प्रवीण, रियांश और प्रतीक बागतरिया, गांव हांडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंद्रा और सार्थक शर्मा, मुजफ्फरपुर बिहार के आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार, वारसी क्लब सिनोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, महसपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश और सिद्दीकी परिवार के सभी लोग, बराड़ा अंबाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, मन्नत, गुरुकीरत, गुरुशब्द, सादुल शहर राजस्थान के राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, बीजना मुरादाबाद के राजवीर सिंह यादव, कुणाल, हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनिस और सोफिया खान, हरहरपुर मटकली बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन

अंसारी, तस्लीम, डीजे प्रधान। ज्योतिनगर नौका राजस्थान के पुखराज बड़गुजर, कैलाश गोर्धन, फरसाराम, श्यामलाल, घनश्याम, बाबू गौरी, हसन सिक्का। तो साथियों, हम आपको गाना सुनवाएं, कुछ आपकी पसंद और हैं वो भी आपको बता देते हैं। चर डोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ के दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन और इंद्राणी, माया और साहू परिवार के सभी लोग। गांव कलमंडी खुर्द झालावाड़ राजस्थान के अनूप सिंह नाथावत और उनका समस्त परिवार। राय सिंह पाल, धर्मवीर भारती, जोगेंद्र यादव, रोमांस दिवाकर, महेंद्र पाल और अनुज पाल। ये हमारे श्रोता रहे मिर्जापुर बरेली से। नांदेड़ येताला महाराष्ट्र के शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद अर्ण और दुर्गेश्वरी राखी तृप्ति। तो लीजिए सुनिए आप सब आपकी पसंद अपने ही रेडियो सेट पर।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

प्रोग्राम आपकी पसंद का दूसरा गाना पसंद है बागपत उत्तर प्रदेश के संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया की ओर से। फिल्म जीने की राह का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और साथियों ने, साथ ही सुनना चाहे गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर बरेली से ओमपाल गंगवार, अनीता और उनके मम्मी पापा, नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महाजबी निसार, नुजत फातिमा अबरार अहमद और इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद, वसीम और पप्पू। बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ के प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु। आदर्श नगर मलोट पंजाब के राज, मीना, सौरभ, साइना और योगेश निवान, मैंडी शर्मा। पलारी छत्तीसगढ़ के नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पुनाराम और कृष्णा देवांगन। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान के रज्जाक मोहब्बत, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। दूल्हापुर मुरादाबाद के मामा फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। लोहडडा बागपत से जगमोहन प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन, अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर, रामानंद कश्यप। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापत और सुमन देवी। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के मणि रामपाल, मलखान सिंह, सुधांशु, हिमांशु। भिलाई छत्तीसगढ़ के उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंगेल। साथ में धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका और अंजलि। नागपुर महाराष्ट्र के कमल सोने, डॉक्टर हाजी अफजाल मलिक, संदीप और रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सोने और सोने परिवार के सभी लोग। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारनी सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर। रामपुर लिसनर क्लब नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शुभांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप। दूल्हापुर उत्तर प्रदेश के मुकेश कश्यप।

शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलबीर। फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार। रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार और विट्टू कुमार। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल दिशानी और निमित आहूजा। शंकरपुर पोस्ट उसावा बदायूं से सोमेंद्र, पुष्पेन, आनंद, सनोज, अमन और सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरत, श्री यादव। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर आमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। नवागांव मुड़ी ही पार, राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से सोहन लाल, रुकमणी, तेजेश्वर साहू, कुशाल। तो लीजिए पेशी खिदमत है आपकी पसंद आपके ही रेडियो सेट पर, सुने और एंजॉय करें।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दोस्तों हम अगला गीत आपकी पसंद का जरूर सुनवाएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण स्वर परीक्षा हेतु सूचना आपको बता देते हैं। आकाशवाणी बरेली करने जा रहा है अपने SINE पैनल का विस्तार। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आपकी आवाज में वो दम, वो क्रिएटिविटी जो रेडियो पर चला सके अपना जादू, तो देर किस बात की, चले आइए आकाशवाणी बरेली। आकाशवाणी बरेली अनाउंसमेंट, ट्रांसमिशन और स्पेशल ऑडियंस कार्यक्रम जैसे नारी संसार, युववाणी, ग्राम जगत, अंकुर कार्यक्रम में असाइनमेंट के आधार पर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए, युववाणी के लिए 10+2 और बाकी के लिए कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, बरेली नगर निगम में ही रहते हों ये भी जरूरी है। अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए किसी भी वर्किंग डे और वर्किंग टाइम में आकाशवाणी आकर आवेदन पत्र लेना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर है, तो किस बात का इंतजार है, चले आइए और हमसे जुड़ जाइए।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर आपकी पसंद में एक बार फिर से आपको जोड़ते हैं और हमारी और आपकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हैं। खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म का नाम है, कुमार सानू साथियों की आवाजें हैं और सुनना चाहे शाहजी नगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र के संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सबिता भाकरे, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान, आजाद रेडियो श्रोता संघ रजोखर बाजार अररिया बिहार के शरीफ आरजू गुड्डू रंगीला, सहारनपुर से राधा नामदेव अपर्णा नामदेव और अभिषेक नामदेव, नाभा पटियाला पंजाब के सोमदत्त खैरब, ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु, बेड़ी मध्य प्रदेश के हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक प्राची और तनु करमरकर, साथ में ही सुनना चाहा है इसी गीत को हीरावाली फाजिल का पंजाब के सुभाष बिमला, इंदु पार्वती, हिमांशु, गोपालगढ़ राजस्थान के धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार, गांव भगाना हिसार हरियाणा के बलवान सिंधु, बिल्लू सिंधु, दुर्राबाना भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन युवराज, मौलागढ़ नई बस्ती बरेली की तरन्नुम अंसारी, ताराना अंसारी, अजहरुद्दीन मोहम्मद हसन, दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर हनुमानगढ़ राजस्थान के प्रेम सिंह बड़वाल, सुखबीर, काजल, लखवीर, रानू कृष्णा छिंदो।

परवीन शीतल नवीन रंगीला निशान चटकू मटकू रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा सोमनाथ करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी लालू मिस्त्री अंसारी मोहम्मद मुनाजिर अबरार हुसैन अल्ताफ भाई आशिक हुसैन मेरठ कैंट के बाबूद्दीन मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के दिशा हुसैन फातिमा वकार हैदर कनीज शकीना हसीना दिशा होली चौक उत्तम नगर दिल्ली के जयराम खोरवाल सचिन अमन और दीपांशु कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज शाहीन सोनू निप्पी और मोहम्मद अफजाल मलिक भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार जावेद राहत अली जाकिर हुसैन और वकील अहमद बाटापारा छत्तीसगढ़ से के आर साहू आकाश कमलेश गन्नूलाल रचक और मुरली क्षत्रिय ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार बेनजीर खौसर मोहम्मद हसनैन पवार लंगार पंडरिया छत्तीसगढ़ के उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी और भारती बघेल मन की लोर में छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे रजनी तुषार और समीर खांडे आनंदपुर दुमका मीरगंज के जितेंद्र सिंह राजपूत प्रभा राजपूत पदमपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से मेयर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका मंदसौर मध्य प्रदेश के रामचंद्र क्षमा करिएगा रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा लाल कुर्ती रोड कैंट से राजेश मंजू निशांत कोश के दीपाली युवान और आर के राजा गिरगांव महाराष्ट्र के गजानन नादरे मारोतराव पांचाल अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के रिजवान खान आयशा सबिया अनस और रेहान गुंजाला बीड महा से नारायण देव घुगे सुनिंदा महेश निर्मला और भगवान मंगल बाजार कटिहार से रफी रहमान बेगम शमा रवि बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश के ममता संजय बेबी किट्टू शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार अमर दिलीप राजू रजन रजक संजीव बिपिन और अरुण संजय पवन यादव सुनील लालू सोना मोना हनी यस सौम्या और उनके मम्मी पापा गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र के मनोहर मगर यामिनी उदयन और अर्पिता ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत शाहनवाज सरफराज फरदीन सोहान अरजान अबान और अब्बासी परिवार के सभी लोग उगैती बदायूं के सद्दाम हुसैन सिद्दीकी साद समद सादिक सितारा पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल और नीति सुरभी अश्विन मंगलबेन शाह साथ में राजेंद्र जी शाह मालवा रोड

प्रसंग ग्राम हिंगड़ी आलोट रतलाम एमपी के जगदीश धाकर नायमा रंजूबाई युवराज सिंह शिवांगी बहड़ी से अंजुमबाई खालदा बेगम नगरिया कला बरेली से मोहम्मद अकरम अंसारी और उनके बहुत सारे परिवारी जन जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा रियाज मोहम्मद समरीन और माहिरा नूर राजकमल रेडियो संघ आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस सैयद नौमान तनवीर मसरत सैयद निजामुद्दीन राम भाऊ तांदले दोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते अनुष्का सागुते हमारे ख्याल से नाम सुनते थोड़ा सा आपको लगा होगा आप गाना होना चाहिए चलिए भेज देते हैं आपको आपकी पसंद

छलगू आज नहीं ते बच के तू निकल ले। जय माता के भक्त है वादों के सख्त है, आकाश से हम आए तन मन के हम है सच्चे मर

बहुत दूर मुझे चले जाना है। साथी ये है गाना फिल्म हीरा पन्ना। हंड्रेड पॉइंट फोर एफएम आकाशवाणी बरेली पर सुनना चाहे है हमारे श्रोताओं में वो है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, मोहली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश, बुलडांडा से दीपिका जाधव और उनका पूरा परिवार, सप्तरंग श्रोता परिवार कुमार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले सविता अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका, पुनापले पुणे से अजय सोनवने करिश्मा अविका विशाखा, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमलागंज अलोट रतलाम मध्य प्रदेश के, बलवंत कुमार राजू बाई माया शोभा राहुल ज्योति अतुल पायल प्रियांश और ऋषि वर्मा। ग्राम एचोरा मिलक रामपुर से सलीम मंसूरी

शकील, इदरास, इदरीस, तौफीक, लाइक। उजैर और जैद मंसूरी। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ के राष्ट्रपाल गजबीय राधिका। नंगलखेड़ा फागबाड़ा पंजाब के बालकृष्ण शर्मा, परवीन, राहुल और मनीष शर्मा। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र के सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा, शशांक और बुलबुल। शाहूनगर यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र के रूपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रतेश और पूरा संघ ही परिवार। नदीम, बाकी, खलीम, अलीम, अजीम, अदीम और अब्दुल अलमीर जन्नत। हमारे इन श्रोताओं ने जिनके अभी नाम हमने बोले उन्होंने अपना एड्रेस पता नहीं लिखा है, बहरहाल नाम हमने प्रसारित कर दिए हैं। साथ ही सुनना चाहे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के पी एस निहाबकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र के नारायण इंगले, सोपान, आशीष, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र के संतोष खडसे और विनोद, भांडेर दतिया मध्य प्रदेश के राहुल पाल, ज्योति, अंजना, हरिमोहन और लक्ष्य, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, स्मिता रेडियो ग्रुप भाटापारा छत्तीसगढ़ के सोहन जोशी, अर्चना, हरमिंदर सिंह चावला, वनी, लोकेश पायल और लक्ष्मी अकीता वैदेही, हनीका जोशी, जगदलपुर वस्त्र से पूनम नायडू, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र के सोपान आडोकार, पी एस न्याहकर, वसंतराव, मोहन करांगले, बिडोरा तहसील से जो कि मध्य प्रदेश के हैं लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सूर्यांश नंदनी मानवी और समस्त गुर्जर परिवार, गांधी चौक रोपड़ पंजाब के हरदेव, मीका, बलविंदा, जैतेक और मीका विरक, कटरा चांद खां, पुरान शहर बरेली के जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि मानवी, अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम, सिफान, यूसुफ, अनाबिया, अलीशा, शकील, फईम, अफान और यासीन अंसारी। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी, गोविंद, टोनी, लव, राधे, भाविक। पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा। सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल, लाडो, रजत और लव कुश, समस्त खन्ना परिवार। पटेल नगर मलोट के डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। चाईबासा झारखंड के जीवन विश्वकर्मा, मंजू,

डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। इसी गाने को सुना चाहे बोधराज खोरवाल, कमला भानु और गीतिका खोरवाल ने। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान के दाता सिंह शेखावत, संगीता तुषार, रिंकी शेखावत। ग्राम चांदूर बुलडांडा महाराष्ट्र के किशोर बानखेड़े, उषा और विशाल। राजुर मोताला महाराष्ट्र के राज गवई, राजवीर गवई। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश के राजेश राज वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन। शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित हैप्पी। दुबिया नैबता गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी प्रांजल। मुंडा टोला डोंडी लोहारा, छत्तीसगढ़ के डोमेंद्र नेताम, गंदेश्वरी, चंचल, कमेश और माहिर। कुल स्वामिनी रेडियो श्रोता संघ श्री रामपुर भोकर से हरिभा, पूजा, शिवांगी, श्रावण, अनिकेत, अनीता बिडवे। शेरवानी स्कूल गंज डोंडवारा उत्तर प्रदेश के आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, खैफ अनवरमा और साथ में है लुबना आलिया। गुन्नौर यूपी के फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। साथियों, जो नाम रिदम में होते हैं वो पढ़ने में भी आनंद आता है। और कुछ हमारी आपकी पसंद है और वो हैं बिटुआ भोर, तहसील मंगरूलपुर, जिला वाशिम, पश्चिमी विदर्भ से योगीराज मस्के, इंदुमती, कविता मोहन, विशाल कुशल, गोपाल, गोविंद और उनके सभी साथीगर। तो लीजिए, पेशे खिदमत है आपकी पसंद आपके ही रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, सुने और एंजॉय करें।

अगला गीत, फिल्म है सिर्फ तुम, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ें। सुनना चाहे गांव अरयान, जिला श्री गंगानगर राजस्थान के डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, साथ में है दीक्षा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और पूनम चालिया। आकोट से विनायक बेंडे, मंगला, विजय, शुभम, पवन जरिए, के संजीव डाबेराव, गिरीश देशमुख, सोनाली, रेणुका, जलालपुरा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के श्रवण कुमार, प्रजापत, शिवम, आर्यन, लविश, मुनीश देवी, बाकरगंज, फरीदपुर, बरेली से सर्वेश कश्यप, राज सत्यदेव, अमित, सुमित, दीपेश, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु, सागर, उमंग, आकांक्षा, माही, मनकारा मंदिर बीडे कॉलोनी बरेली के बेनी सिंह, सागर, पन्नीलाल, आशीष, अमर, हितेश, राजेश, रूबी और एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, साथ में खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति, शिवांश,

मां बमलेश्वरी रेडियो श्रोता संघ साकरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के नारायण लाल कुलवंतीन देवी दिवेंद्र प्रताप साहू नेहा देवी मिलिंद कुमार प्रणय रुद्रांश प्रताप साहू पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ के दीपेश वर्मा पूनम ज्योति और शिवांश जेल लोड दिल्ली से लाल बाबू उमा राज दिव्या बेताप रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अकरम मुस्कान और गुड़िया खातून खोखराबाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा विशाल विकास रोशनी शगुन मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से रफत सईद और उनके बहुत सारे साथी बीड शहर महाराष्ट्र के नंद किशोर घटे संगीता साक्षी जयश्री अंजलि बाला साहब करवा रामनिवास अग्रवाल धनंजय और पीबी कुलथे नई मस्जिद करेली से इंतजार हिब्जा नत्तू जाहिद नन्ने हिना सूरज मुशर्रफ और अंसारी परिवार के सभी लोग अनारकली बाजार जगराओं पंजाब के सुनील पाठक कमल दीपिका गाव्या सुच्चा सिंह विनोदपुरी जयपाल खरसावा झारखंड से सुकरा नायक मंजू जलेश्वर गौरव तो लीजिए पेश खिदमत है आपकी पसंद सुनिए और एंजॉय करिए

साथियों, आज का ये सफ़र आपको कैसा लगा हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगली बार जब हम आपकी सेवा में हाजिर हों आपकी पसंद लेकर, तो हम और भी आपके नाम कार्यक्रम को रोचक बनाने का प्रयास सभी प्रकार से आपकी

सेवा में हाजिर हूँ। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है आपका पत्र मिला bareilly@gmail.com। और अब अपने दोस्त संजय को इजाजत देंगे, ऐसी हमें आशा है।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर अब हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम सबरंग लेकर। प्रोग्राम की पहली पेशकश भूपेंद्र सिंह और साथियों की आवाजों में सुन

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIR@bareilly.cbs.gmail.com।
3: लीजिए अब सुनिए सबरंग की अगली पेशकश अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाजों में।

FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती

दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।

भूपेंद्र सिंह की गाई इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम सबरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। 11:30 होने को है। कुछ ही क्षणों में हम रिले कर रहे हैं FM रेनबो के कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आपका अपना, आपका पसंदीदा FM रेनबो 100.7 FM।
3: और ये जो अगला मैसेज है बहुत इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा इसको, दिल्ली इंद्रलोक से मैसेज किया है नाजिम राइन ने, और ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग अपने चप्पल देख लें बारिश में, क्योंकि बारिश के टाइम पे चप्पल देखना ज़रूरी, घिस गई है या तो बदल दें, क्योंकि होता ही है कि जब फिसलती है तो काफ़ी दिक्कत होती है, तो चप्पलों का भी खासा ख्याल रखें, क्योंकि आमतौर पर छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते, बस ऐसे ही पहले पहन के निकल गए, उसके बाद फिर वो एक पहली बन जाता है जब स्लिप करते हैं, है ना। तो ये खास है संदेश, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। फिलहाल 11:33 साथ में कुछ सेकंड्स से, मैं जमशेद हूँ आपके साथ, आपके संदेश हैं हमारे साथ और हमारे गीत हैं आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

और अगला मैसेज हमारे पास आया है इंद्रपाल मिश्रा का, अमृता मोहली सीतापुर से। इंद्रपाल मिश्रा ने कहा है कि नशा नाश का मूल है, कोरोना इसकी चाह कर देता है एक दिन घर परिवार तबाह। और ये गीत आपके लिए।

हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना, जुनैरा बतूल अंसारी ने मियांगंज जिला उन्नाव से कर दिया है मेल। और कई बार लोग अपने छज्जे पर खड़े होकर फोटो खींचने में ऐसे एक्शनबाजी करते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। और ऐसे शरारती बच्चों से मेरा यही बोलना है कि कई बार एक्शनबाजी में खुद नुकसान हो जाता है, खुद पर भारी पड़ जाता है। तो कोशिश करें इस तरह की गलती ना करें जिससे आपको नुकसान हो। बस यही तो है आपके संदेश जो लोगों तक पहुंचते हैं। और अगर आपके संदेश किसी का भला कर देते हैं, आपने बात की और किसी की समझ में आ गई, तो क्या कहने, कहीं ना कहीं वो मान लेगा। इतने लोग सुन रहे होंगे, कोई ना कोई तो आपकी बात मानेगा, है ना। तो बस आप भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com। और संदेश आपके, ये गीत हमारी तरफ से आपके लिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
4: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
5: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
6: ओनली 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

बिल्कुल, मेरे दिल की दास्तान भी सुनिएगा, उस नजराने को भी सुनिएगा। फिलहाल संदेश आपके हैं और गीत हमारे हैं। अहमद नवाब ने संडीला से कर दिया है मेल और लिखते हैं, आपने सुबह सुबह आकर सरप्राइज दे दिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। और ये इनका संदेश ये है कि पार्क की बेंच हो या बस की सीट या ट्रेन का शौचालय, सार्वजनिक संपत्ति किसी की नहीं है, सरकार की नहीं है, सब आपकी है और आप जैसा रखेंगे वैसा ही रहेगा। यानी इसे आप सुरक्षित रखें, साफ सुथरा रखें, जैसे आप अपने घर को रखते हैं, अपने आसपास को रखते हैं। तो बिल्कुल ये भी बेहतर बात है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं बस आए तोड़ फोड़ की और निकल गए, ऐसे नहीं। बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये संपत्तियां जो भी हैं वो आपके टैक्स का पैसा है, उसका ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आपका अपना, आपका पसंदीदा FM रेनबो 100.7 FM।

बिल्कुल, दिल भी आपका मिलेगा, मुश्किल भी कम होंगी। फिलहाल भीलीकला गोसाईगंज नवाब के शहर लखनऊ से कर दिया है मेल, नाम है बबीता राव। सर जी, आपको मॉर्निंग से सुन रही हूँ, सभी प्रोग्राम अच्छे लगे, लेकिन आपने सुगंध माटी की प्रोग्राम तो बहुत अच्छा किया, बोले तो कतई जहर, और कल का रजनीगंधा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और आपने मैसेज जो किया वो काफ़ी ज़बरदस्त है। सर जी, कुछ लोग फर्जी जॉब और प्रलोभन के चक्कर में फंस जाते हैं, फ्रॉड लोगों और से जानकारी लेते हैं, तो फ्रॉड लोगों और लोगों से जानकारी से दूर रहें, विश्वसनीय चैनल और लोगों पर भरोसा करें, आंख बंद कर सब पर भरोसा ना करें, और किसी से भी अपनी पर्सनल जानकारी साझा ना करें। बिल्कुल, क्योंकि होता यह है कि आप अगर अपनी पर्सनल चीज़ें लोगों से साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।

मुझे नहीं पता छाया है क्या नशा। और आखिरी मैसेज आप तक पहुंचा दूं, टिकैत नगर बाराबंकी से आया है और पिंकू सोनी है, लिख रहे हैं कि जैसे आप शादी ब्याह में जाते हैं लिफाफा लेकर जाते हैं, लिफाफा देते हैं, वैसे अगर आप किसी को देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह में तो आप उससे मिलने जाए तो लिफाफा या कुछ ऐसी मदद लेकर जाए जिससे उसको कुछ अच्छा लगे या उसके लिए कुछ बेहतर हो। चलिए ये भी आपका संदेश बेहतर है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है और वो हिचकते हैं कुछ कहने से कि भाई मैं कहूँगा तो लोग क्या कहेंगे। खैर अच्छा है, यही संदेश है आपको जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि फिर किसी रोज़ किसी प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी। शिल्पी रहेंगे आपके साथ, बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह इतना बड़ा परिवर्तन है कि फिनटेक की चर्चा का यूपीआई के बिना बात अधूरी रहेगी। प्रधानमंत्री के तकनीकी सशक्तिकरण के अपने मूल सिद्धांत को दोहराते हुए यूपीआई को वित्तीय समावेशन का सबसे अच्छा साधन बताया, जिसने पारंपरिक बैंकिंग मॉडलों की ओर से उपेक्षित क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक पैठ बनाई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित यह लेख आंगनबाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनबाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक वस्त्रोद्योग केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल पहचान आज की नहीं बल्कि हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में प्रदेश के वस्त्र परिधान और हस्तशिल्प निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूपी टेक मित्र पोर्टल लॉन्च करने के साथ हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में टेक्सटाइल सेंटर में 5,196 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों के एमओयू किए गए। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और वहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बहराइच में घाघरा नदी खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहां के 12 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सीतापुर के करीब 274 गांव बाढ़ से प्रभावित है। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा नदी की बाढ़ से 102 गांवों के करीब 80,000 लोग प्रभावित हैं। प्रशासन ने बाढ़ और जल भराव वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी और लोगों से मौसम विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के पालन की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
5: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
4: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंट्री फ्री। ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
6: सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आपका अपना, आपका पसंदीदा FM रेनबो।

12:06 का समय, हाय हेलो नमस्कार कहने के लिए हाजिर हो चुकी है आपकी अपनी दोस्त शिल्पी 100.7 FM रेनबो पर। दोस्तों आज का दिन भाई जो हमारे खाने पीने के शौकीन लोग हैं उनके लिए है, और जो नहीं है वो हमारी प्रोग्राम को सुनकर कुछ बनाना चाहें पकाना चाहें तो उनके लिए थोड़ा सरल हम कर देते हैं कि ऐसी रेसिपीज बताते हैं जो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और कुछ काम की बातें बताते हैं। तो बहरहाल आज हमने सोचा कि क्या बात की जाए आपसे। तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं, कुछ ऐसे फूड होते हैं जो समय के साथ धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, यानी कुछ ऐसी लॉस्ट रेसिपीज़ होती हैं जिनको समय के साथ साथ थोड़ा सा इधर उधर हो जाना पड़ता है। लेकिन आज भी जिन घरों में पुरानी दादी या फिर मम्मियां हैं वो कभी कभी उन रेसिपीज को ट्राई करती हैं और उनका स्वाद हमें बेहद अच्छा लगता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज उन्हीं कुछ व्यंजनों की बात की जाए जो अब घरों में कम बनते हैं लेकिन खाने में टेस्ट में किसी भी तरह की आप ये सोचे कि 100 में आप 99 तक नहीं दे सकते, यानी कि फुल मार्क्स वाले ये जो व्यंजन है वो हमारी जबान का स्वाद तो बढ़ाते हैं, साथ ही आप इन्हें आसानी से बना भी सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल काम नहीं होता है। तो भाई आज किन व्यंजनों की हम बात करेंगे इसके बारे में बात होगी, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत खूबसूरत ट्रैक के साथ कर देते हैं। आप एंजॉय कीजिए और बस एंजॉय कीजिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, तौल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनऊ।

100.7 FM रेनबो ने शुरू कर लखनवी अंदाज प्रोग्राम शत्रुपा आप सुन रहे हैं। शिल्पी आपके साथ है और बात हो रही है लॉस्ट रेसिपीज की। कुछ ऐसी रेसिपीज जो बहुत पहले हम लोग खाते थे लेकिन अब थोड़ा सा वो हमारे रसोई का हिस्सा थोड़ा सा कम हो गई, यानी बहुत सालों में कभी कदार बन जाता है लेकिन जैसे पहले बना करती थी चीजें। अब बात अगर मैं करूं फरे की, तो फरा एक ऐसी डिश है जो काफी लोग पसंद करते थे। नाश्ते में अगर फरा बन जाता था तो ऑटोमेटिकली लोगों का अच्छे से पेट भर जाता था, क्योंकि इसके साथ यानी फरे के साथ जब आप चटनी के साथ इसको खाते थे तो पेट काफी भरता था और स्वाद भी मजेदार लगता था। और आपको बता दें, ये नाश्ता कुछ लोग चावल के आटे के साथ और कुछ लोग गेहूं के आटे से बनाते हैं। आपको क्या करना है, चने की भीगी दाल लेनी है, इसको करीब 6-7 घंटे भीगना जरूरी होता है। ये नहीं कि आपने तुरंत लिया और तुरंत बन गया। अगर आपको बनाना है नेक्स्ट डे तो पहले दिन प्लान कर लीजिए कि आज हमें ये बनाना है, या बनाना है शाम को तो सुबह आपको ये दाल भिगो देनी। 6-7 घंटे दाल भीग जाएगी, फिर इस दाल में कुछ हरी मिर्च हींग डालकर थोड़ा सा इसे पीस लीजिए, मतलब ऐसा पीस लीजिए कि वो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट रहे, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा, और ये हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि चने की दाल हैवी होती है तो हींग जो होती है उसको ये जो बादीपन होता है उसको कम कर देता है। और उसके साथ आपको थोड़ा सा नमक ऐड करना है। इसके बाद आप आटा गूंथ के रख लीजिए और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कीजिएगा। याद रखिए कि आप चने की दाल में भी नमक डाल रहे हैं तो आटे में भी आपको इस हिसाब से नमक डालना है।

बहुत ज़्यादा ना हो जाए, यानी थोड़ा सा बैलेंस करके आपको नमक डालना होगा। फिर आपको चने की दाल इस आटे में थोड़ा सा इसको रोटी शेप से थोड़ा सा छोटा बेल लीजिए और इसमें चने की दाल भर दीजिए जो आपने पीसी हुई है, और किनारे हल्का सा पानी लगाकर इसको चिपका दीजिए। और बस एक तरफ आप पानी रख दीजिए खोलने के लिए और उसमें हल्का सा चिकना डाल दीजिए, और इसके बाद खोलते पानी में मनचाहा शेप देकर इसे आप पका लीजिए। और फिर आखिर में जब आप निकाल लेंगे इसे, चेक कर लीजिए चाकू डालकर, अगर उस पर कुछ भी नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये आपका पक गया है। और उसके बाद उसे निकाल लीजिए, और अगर रोटी के शेप में आपने इसको पकाया है तो उसको फिर आपको थोड़ा सा काटना पड़ेगा। चाकू से इसको पीसेस कर लीजिए, और उसके बाद तेल डालिए कढ़ाई में, राई डालिए, करी पत्ता डालिए, बढ़िया सा तड़का लगी गया है, और उसके बाद इसमें हल्दी मिर्च और हल्का सा नमक डालकर फ्राई कर लीजिए, और बस ये बिल्कुल हो गया है रेडी आपके लिए। यानी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत आसानी से ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। शाम के समय सबको ये चीज़ें बहुत पसंद आती थी, लेकिन अब हमारी रसोई से थोड़ी थोड़ी सी ये गायब हो गई, मानते हैं ना आप। तो चलिए, अगर आज आप इंटरेस्टेड हैं तो, या फिर कल अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कल भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आपके पास पूरा समय रहेगा। फिलहाल हमारे पास एक गाना है आपके लिए, एंजॉय कीजिए।

मुझे ये कहने में कोई उरेज नहीं कि हम लोग के समय जो है बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस नहीं होते थे जो आज बच्चों के पास मौजूद हैं, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि खाने पीने के जो ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, यानी जो पैकेट बंद फूड या फिर जो भी चीज़ें बच्चे लाते हैं वो उनकी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक होता है। तो बेटर होता है कि आप घर पर बना हुआ खाना खाइए और बच्चों को भी वही खाना खिलाने की आदत डालिए। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपको याद हो, सनई, आप जानते हैं सनई, कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन सनई के जो फूल होते हैं या उनके पत्तों से एक बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनती है। आपको करना क्या होता है, ये सनई के फूल या पत्ते लाने होते हैं, और उसके बाद इन्हें बेसन में लपेट कर, यानी बेसन में आपको मिर्च मसाला और हल्दी वगैरह सब डाल लेना है, और उसके बाद सने के फूल या पत्तों को इसमें लपेट लेना है, और इसे फ्राई करके जैसे आप फुलकियां बनाते हैं वैसे आपको बना लेनी है, और बस इसके बाद इन जो आपकी फुलकियां बन गई हैं इनको आपको मसालों की ग्रेवी में दोबारा पकाना है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि इन्हें आप यूं भी खा सकते हैं, यानी कि अगर आपको लग रहा है बहुत सूखी सूखी सी हैं तो आप इसे दाल के साथ भी खा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें ग्रेवी लगानी है तो इसे आप बढ़िया से मसाले ग्रेवी बनानी है, आपको लहसुन प्याज पीस लेना है और उसके बाद उसमें सारे मसाले यानी कि हल्दी मिर्चा धनिया और हल्का सा गर्म मसाला डालकर तब तक पकाना है जब तक इसमें से चिकनाहट लगना होने लगे। जैसे ही आपको लगे कि अब ये पक गया है मसाला, उसमें पानी लगाकर रसा लगा दीजिए, एकदम से सारी फुलकियां मत डालिएगा नहीं तो वो फूट जाएंगी, और जब वो रसा प्रिपेयर हो जाए तो बस यही वक्त है कि इसमें आपको फुलकियां डाल देनी है और मुश्किल से 5 या 7 मिनट पकाना है, ढककर उसके बाद ऐसे ही रख देना है ताकि वो रसा या वो चीज़ जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, ताकि स्वाद आपको जब खाएं तो पकौड़े के अंदर तक उसका स्वाद महसूस हो। तो ये वो रेसिपी है जो मिसिंग है। लेकिन हाँ, अगर मिसिंग है तो क्या हुआ, आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़, आपको याद आए तो आप लाइए चीज़ें और ट्राई कीजिए और फिर से पुराने दिनों को याद कीजिए।

0: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद फिफ्थ एडिशन,
1: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
0: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं FM रेनबो लखनऊ 100.7, सुरों का लखनवी एहसास।

है, और थोड़ा सा आप जो प्याज है उन्हें चॉप करके डाल दीजिए, और लहसुन और मिर्च और अदरक का मिक्सचर अच्छे से डाल दीजिए। इसके बाद इसमें टमाटर 3 काट के ऐड कर दीजिए अच्छे से, क्योंकि टमाटर से ये इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत अच्छा कलर लेती है, और कश्मीरी मिर्च डाल दीजिएगा तो कलर सब्जी का बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मसाला इसको भून लीजिए, वही हालत वही वाली बात, यानी जब चिकना अलग हो जाएगा आपको लगेगा कि हाँ हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो बस आप पानी डालकर इसकी ग्रेवी रेडी कर लीजिएगा। और जब ये ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो इसमें इन गोलियों को डालकर 10 मिनट तक पका लीजिए, बल्कि 10 मिनट से कम समय में भी पक जाती हैं, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया कि आपको इतनी देर रख कर पकाएंगे तो किसी भी तरह की कच्चेपन की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राइड हैं। और अब इसके बाद इसको थोड़ी देर ढककर रख दीजिए, और इसके बाद इसमें हरा धनिया ऊपर से काट कर सर्व कीजिए, और देखिए ये स्वादिष्ट मींजा तैयार है। स्वादिष्ट मींजा बिना सब्जी के वाला, यानी बेसन से तैयार है ये सब्जी, और इतनी स्वादिष्ट होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वाकई में सब्जी आपने ट्राई की बनाई तो कैसा लगा। और हाँ, इसके साथ कई लोग रोटी तो खाना ही चाहते हैं, पराठे भी खाना चाहते हैं, और कई लोग इसके साथ सिर्फ चावल का स्वाद लेना चाहते हैं। आप अगर इसको सर्दियों में ट्राई कीजिएगा तो इसमें मटर डाल लीजिएगा तो इसका स्वाद और कई गुना बढ़ जाता है।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
1: बारह बजकर 42 मिनट 100.7 FM रेनबो सुरों का लखनवी एहसास, शिल्पी आपके साथ एंड प्रोग्राम शत्रुपा आपका खास। बात हो रही है आज खाने पीने की, और भाई इतनी सारी नमकीन चीजें बनाने के बाद मन करता है ना मुंह मीठा किया जाए, तो बिल्कुल मीठा कराते हैं आपका मुंह। और ये भी है वो लॉस्ट रेसिपीज जिसे अब अक्सर हम लोग पूजा पाठ के दौरान ही बनाते हैं, यानी आमतौर पे यूं नहीं कुक करते भाई। पहले ऐसा होता था जब भी बर्थडे होती थी, यानी अब तो हम बर्थडे प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पहले जब सालगिरह मनाई जाती थी और आसपास के लोगों को बुलाकर मीठे में गुलगुले बनाकर खिलाए जाते थे, एंड दैट वॉज द स्वीट डिश ऑफ दैट टाइम। बनाने में बेहद सरल, सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे की जरूरत है और गुड़ की जरूरत है और कुछ बेसिक चीजों की जरूरत है जिससे कि आप इसे इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड खाने में वो स्वाद है कि आप क्या मिठाइयां खाएंगे जो मजा गुलगुले खाने में है। आपको इसके लिए चाहिए एक कप गेहूं का आटा, आधा कप गुड़ जो कि गुनगुने पानी में घुला हुआ होना चाहिए, आधा छोटी चम्मच सौंफ डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है, एंड चौथाई छोटी चम्मच आपको इलायची का बारीक पाउडर डालना है, चुटकी भर बेकिंग सोडा ताकि वो मुलायम बने, एंड तलने के लिए घी में अगर तेल है तो क्या बात है, लेकिन अगर तेल है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, उसमें भी इसको फ्राई कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि गुड़ के पानी में आटा मिलाकर गाढ़ा सा घोल आपको प्रिपेयर करना है और इसमें सौंफ और इलायची मिला दीजिए। घोल को आपको 15 से 20 मिनट ढक कर रख देना है और उसके बाद कढ़ाई में घी या तेल गरम करना है और चम्मच, जो चम्मच होता है स्पून होता है, उससे थोड़ा थोड़ा मिक्स डालकर, यानी थोड़ा थोड़ा मिक्सचर जो है वो आप उसमें डालिए और सुनहरा भूरा होने तक तल लीजिए। आज भी आपको बता दूं इसका स्वाद बेहतरीन होता है, और कई जगहों पर आज भी जब नई बहू आती है घर में तो पहली जो स्वीट डिश है उससे यही बनवाई जाती है कि बहू जरा गुलगुले बना देना। तो उसका सबसे पहला काम होता है रसोई में मीठे में गुलगुला बनाना। कई सारे लोग हैं हमारे जिनको इस रेसिपी के बारे में बिल्कुल अंदाजा होगा, वो सब जानते होंगे, लेकिन मैंने इतनी बढ़ा के इसको आराम से इसके तैयार करने के बारे में इसलिए बताया कि अगर आप नहीं जानते हैं या नहीं जानती हैं तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, एंड जब ट्राई कीजिएगा तो शिल्पी को ज़रूर याद कीजिएगा कि हाँ मैंने इस रेसिपी के बारे में आपको बताया जो कहीं ना कहीं खो गई थी या आपको नहीं पता थी। सो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो और प्रोग्राम शत्रुपा में कुछ रेसिपीज अभी और हैं।

बिल्कुल, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ देर आप हमारा प्रोग्राम नहीं सुन सके, जिसका हमें बहुत बेहद अफसोस है। लेकिन अब 12:54 हो गए, प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है। चलने से पहले आपको बता दें कि कांजीवाड़ा उत्तर प्रदेश, खासकर अवध, प्रयागराज, कानपुर में होली के समय बनने वाला एक खास पारंपरिक व्यंजन होता है। कांजी एक फर्मेंटेड ड्रिंक होता है और इसके लिए आपको 1 कप उड़द दाल, 1 लीटर पानी, 2 बड़े चम्मच पीली सरसों, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ही हल्दी का और 1 छोटा चम्मच नमक डालना चाहिए आपको, और साथ ही तलने के लिए तेल होना चाहिए। तो आप ये जो उड़द दाल है इसको भी आप 4-5 घंटे भिगोकर पीस लीजिए और फेंट कर छोटे छोटे बड़े सुनहरे होने तक तल लीजिए। पानी में आपको पीली सरसों, हल्दी और लाल मिर्च और साथ ही नमक को मिक्स करना है और इसको कांच के बर्तन में भरकर 2-3 दिन तक आपको इसे धूप में रखना है। रोज आपको एक बार उसे चला देना है और जब पानी ठंडा हो जाए तो इसमें आपको बड़े डाल देना है। बस 3-4 दिन बाद ये आपके जो हैं बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएंगे और बहुत ही

कहते हैं आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो जो हमारे यहाँ की रेसिपीज हैं उनमें कुछ ना कुछ खासियत तो है, कुछ ना कुछ खासियत ये समेटे हुए हैं जिनको आज हमने डिस्कवर करने की कोशिश की प्रोग्राम शत्रुपा में। पर फिलहाल अभी प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम है। नेक्स्ट प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में शिल्पी रहेगी एक बार फिर आपके साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर अब लेकर हाजिर है अनुरोध गीत। प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके दोस्त संजय गर्ग नमस्कार।

हम हैं लाजवाब, फिल्म का नाम है, अनवर की आवाज है। अनुरोध है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला डब्लूउल्ला परवीन आसमा। बुलंदशहर से बद्रुवली फर्जुवली फर्जीवली। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन नईमा बेगम, कासिम अली नदीम अली जुनैद अब्बासी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर जैतेग और मीका बिरक। विनेश कुमार रागनी श्रीवास्तव मुस्कान, ये हमारी श्रोता बरेड़ी कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी बरेड़ी से। पुराना शहर बरेड़ी से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी प्रकाश, रिंकी कपिल, वेदराम कैलाश, सुनील खुशबू एरोही और स्वाति। परीमहल कासगंज से आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नबील, एम असलम सैफी। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही।

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: प्रोग्राम का अगला गीत हम फिल्म से। आवाज दिए सुदेश भोसले और साथियों ने। सुनना चाहे रामप्रसाद शर्मा, फजरुद्दीन, वंदना मनोरमा, अजय, रीता, विनोद, यह हमारी श्रोता छावनी अशरफ खां होली चौक मंदिर के सामने बरेली से। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही मेरा जहां, बाटाबारा दतरेगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर दीपक झावेंद्र, मुरी गेट दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता, शिल्पा, आकाश, भूरसुदा छत्तीसगढ़ से भगवानी संतोषी सेन, चंद्र प्रकाश, नेहा, गजेंद्र चिराग, सनावद मध्य प्रदेश के दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली से हम आपको सुनवा रहे हैं अनुरोध गीत प्रोग्राम। हम तुम पे मरते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म का नाम लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज से सुना जाए निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मोहम्मद नईम मोहम्मद फहीम मोहम्मद नसीम एडवोकेट साहब। दानिश अंजान बाबर आजम बाबर अजीम अनाबिया और हमजा और उनका समस्त परिवार। ग्राम रामपुरा किसानान मजरा सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली से राम कुमार वर्मा भगवान दास वर्मा रविंद्र वर्मा सोमपाल वर्मा तेज प्रकाश वर्मा शशि कुमार वर्मा और नत्थूलाल वर्मा ननकी सिंह वर्मा। साथ में है विवेक और हिमांशी वर्मा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला और नाज अंसारी चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और अदीबा सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी आसमा खातून और गुलफराज भागलपुरी। आंवला गंज बरेली से मेहताब हुसैन खान गजाला खान आरिफ हुसैन पटियाला से मुकेश नीलम नितिन पलक करण गीतू नेहर का हार्दिक वंश पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुस्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अलतमश खत्री रमेश गौड़ और शादाब खत्री आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा मीना योगेश मेंडी सौरभ साइना और निवान चंडीगढ़ से सतीश अनेजा बिमला अनेजा। तो सुनवा रहे हैं, आप सुनिए और अपने परिवार और दोस्तों को भी सुनवाइए आपके अनुरोध पर किया गया वो गीत जो अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। आप सबके अनुरोध पर ही अगला गाना के सुनिधि चौहान की आवाज़ें, फिल्म है हमराज। सुना चाहे फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद, बीपी रंजू, अशोक सुशील, बीके पुरी, कैलाश, अनीता।

ममता मेघा पूजा गगन गुंजन लालसा राम कुणाल निधि हरीश सतीश राकेश विनोद पाली डीसीपुरी अरुण नेहा एकता शमी सुनील बीकेपुरी और आरएसपुरी ककरला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान सरफराज विकास कर्मवीर प्रवीण रावत अनिल नागर सागर बख्शी भरत यादव अमजद अंसारी और दीपक इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अक्रम डब्लू अक्रम वली अक्रम उल्लाह अक्रम राजनाथ गांव से याकूब आसमा यूसुफ इमरान इरफान जेलोट रायगढ़ से रेशमा सोनम आदिबा गंज डुंडवारा से मुनव्वर लल्ला मिर्जा नसरीन बेगम अरवाज खान शहबाज सूफिया पप्पू अफसाना महाजवी दादरी गेट भिवानी से कृष्ण कोमल किरण कपिल कुणाल कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित हैप्पी दुबिया नवेदा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल शेपो कला गाजीपुर से अवधेश प्रीति नवनी भेज रहे हैं आपके पास आपका अनुरोध किया हुआ वो गीत जिसे लिया है फिल्म हमराज से।

अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इंडियन बाबू का गीत। कुमार सानू साथियों की आवाजें हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाज़म बेगम, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि और शीतल। बीसलपुर पीलीभीत के बिमल वर्मा। गड़ैया बरेली के पास से मोहम्मद कैसर, अजीम सलीम, नवेद, रजिया। नवाबगंज बरेली से नसीम अहमद, मेराज जहां, मुस्कान बी, मोहम्मद रेहान, अशिफा मन्नत। जमशेदपुर से देवेंद्र तांती, राकेश, निशा, प्रकाश, देवेन।

हम सफर चाहिए। जी हाँ, आप सुनने वाले सभी श्रोताओं के अगले हम सफर भी आ गए। शीशपाल जी स्टूडियो में आ गए। अब हम आपको सुनवाएंगे इंतहा फिल्म का गीत उदित और साथियों की आवाजों में। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय राधिका अनिष्का तन्मय, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन कौशल्या हेमलता डिंपल, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन मिथिलेश, तारनी सूरज ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा। रोहिणी सेक्टर 17 से रामेश्वर दास राजौरा, सिंह की पिंकी, पल्लवी आकाश और आर डी चंद्रा। न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित अनीता, राजीव। अमरावती महाराष्ट्र के कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शुएब, मुस्ताबा, रायूफ और शाहिद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर।

दोस्तों आगे हैं उस गीत की ओर जो प्रोग्राम अनुरोध गीत को पहुंचाएगा अपनी मंजिल पर, और मंजिल के बाद आपकी सेवा में हाजिर होंगे शीशपाल। एनीवे सुनवा रहे हैं आपको इतिहास फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज में। करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नवेद खान। नजीमाबाद से सुनील वर्मा, और साथ में है ताहिर महमूद साहब। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। बरेली जंक्शन से गरीब भाई बिक्की भारद्वाज। लोहडड़ा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी अर्जुन, अंजलि नितिन, सुधीर नूतन। पटियाला से मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहार का हार्दिक और वंश। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ। दातागंज बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, सनोज, आनंद और अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरत, श्री यादव। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोर्ड के नंदा, हनुमान। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि। लपरी ग्राम मुंडेला से कुमारी चंदा, चांदनी, आकाश, कन्हैया, रीता देवी। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी के मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश के आजाद अली अनवर, रिजवाना, परवीन, अब्दुल्ला आजाद। सुनवा रहे हैं आपको आप सबके अनुरोध पर फिल्म इतिहास का वो गीत जो प्रोग्राम को पहुंचाएगा अपनी मंजिल पर, और इस गीत के साथ ही शुरू करने से पहले आपसे विदा लेता हूं। प्रोग्राम जैसा भी लगाओ हमें आप लिख सकते हैं, पर हाल अपने दोस्त संजय को दें इजाजत।

हम अपनी मोहब्बत का। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत संजय कुमार के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम रस रंग का। कार्यक्रम रस रंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किरण लता के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: हाँ, तो बहुत ही एक क्लासिक गीत अभी आपने सुनवाया हमें, सुनाली।
1: और हम जो है भैया धरने की बात कर रहे हैं। गाना ऐसा हो गया कि भैया ना धरो, बहुत सुंदर सा गाना हमने सुना सखियों के संग। और जैसे पारिवारिक मिलन समारोह की बात चल रही है मंदाकिनी जी, तो पारिवारिक समारोह

0: और हम जो है भैया धरने की बात कर रहे हैं। गाना ऐसा हो गया कि भैया ना धरो, बहुत सुंदर सा गाना हमने सुना सखियों के संग। और जैसे पारिवारिक मिलन समारोह की बात चल रही है मंदाकिनी जी, तो पारिवारिक समारोहों में त्योहार, लोकगीत, पारंपरिक भोजन, पूजा पद्धति, पारिवारिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इससे हमारी परंपराएं केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि अगली पीढ़ी तक जीवंत रूप से पहुंचती भी है।
1: बिल्कुल सही कहा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे सोनाली कि पारिवारिक मिलन कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में, और ये जो समारोह ये एहसास कराता है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, परिवार उसके साथ है और परिवार उसके सुख में खुशी मनाने के लिए और कठिन समय में उसका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और यही भावना परिवार को भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है।
0: और ऐसा होता है ना मंदाकिनी जी, रिश्ते केवल खून से नहीं, समय देने और साथ निभाने से मजबूत होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि साथ बैठकर बातचीत करने का समय ही कम मिलता है। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह रिश्तों में नई ऊर्जा और अपनापन भरने का सुंदर अवसर बन जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हंसना, बातें करना, साथ साथ भोजन करना, ये सभी चीजें हमें बहुत खुश कर देती हैं। और रोजमर्रा के तनाव और व्यस्तताओं से अगर कुछ समय हम निकाल लेते हैं अपने परिवार के साथ, तो एक राहत में मिलती है। और एक दूसरे की उपस्थिति से क्या होता है, व्यक्ति को या हम सभी को भावनात्मक सुरक्षा और संतोष का भी एहसास होता है।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि नौकरी के कारण किसी को, जो परिवार के सदस्य है, उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता है, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, तो कोई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह एक ऐसे अवसर होते हैं जब सभी लोग अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर परिवार के साथ सुखद समय बिताते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जब समारोह होते हैं तो हम सब बहुत ही खुशी के साथ उसमें शरीक होते हैं। और एक सफल पारिवारिक मिलन समारोह भी हमें ये संदेश देता है कि परिवार की शक्ति उसकी संख्या में नहीं, बल्कि उसके प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग से होती है। तो जब परिवार एकजुट रहता है सोनाली, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करते हैं।
0: हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं इस विषय पर। हमारे एक साथी कहते हैं, हमारे भारत में यहाँ बसे पारिवारिक समारोह यानी कि बच्चों का जन्म होना, मुंडन, शादी ब्याह, मृत्यु से लेकर ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बना रहता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार हमने देखा होगा कई परिवारों में प्रेम ज्यादा नहीं महसूस करते, हमें लगता है कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत कम मिलते जुलते हैं, आपस में कम समारोह में इकट्ठा होते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ शायद प्रेम कम हो गया है और रिश्ते कहीं कमजोर हो गए हैं। तो वो इसलिए नहीं होते कि उनमें संवाद नहीं हुआ है या एक दूसरे का साथ नहीं देते, बल्कि कहीं ना कहीं भावनात्मक दूरियां बढ़ गई हैं, विश्वास कम हो गया है, एक दूसरे को कहने सुनने की जो क्षमता है ना
0: वो
1: कम हो गई है, एक दूसरे को हम शिकायत तो कर देते हैं, समझ नहीं पाते एक दूसरे को और दूरियां बना लेते हैं।
0: और क्या कैसे होता है ना कि मंदाकिनी जी, कभी कभी ना हम कहते हैं ना जजमेंटल हो जाते हैं कि उनके प्रति हम एक धारणा बना लेते हैं कि वो तो अब जैसे उसके घर की कुछ बातें होंगी कि वो शायद दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, पर हमें ऐसे लगता है कि देखिए उन्हें तो घमंड आ गया है, वो तो हमसे मिलना नहीं चाहते। पर ऐसा नहीं होता है, किसी किसी की परिस्थिति के कारण कुछ व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करते हैं। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि परिवार के साथ पॉजिटिव रिलेशन होने से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और आप अपनी एंग्जायटी और चिंताओं को दूर कर पाते हैं और मुसीबत में होने पर आपको सही मार्गदर्शन और सलाह मिल पाती है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे घिरे होने पर आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आ सकता है और चुनौतियों से उभरने के लिए आपको एनर्जी मिल सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर लिखा है। और वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि पारिवारिक जो बंधन है उससे आप मजबूत होते हैं, बीते सालों की खूबसूरत यादों का सृजन होता है, घर के बुजुर्गों से बच्चों और युवाओं को अपने पूर्वजों से जुड़े पारिवारिक इतिहास के बारे में, उनकी जड़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और मैंने भी हमारे पिछले 7 पीढ़ियों तक का वटवृक्ष बनाकर हमारे कंप्यूटर ट्री ऐप पर डाला हुआ है, जिसमें मेरे पोते से लेकर दादा परदादा तक की सारी जानकारियां हमने साझा कर रखी हैं।
0: वही एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बिखरी हुई जड़ों को फिर से सींचने का अवसर है, जहां वर्षों से दूर रहे चेहरे एक ही आंगन में मिलते हैं तो समय जैसे थमसा जाता है। पिता की झुकी हुई पीठ में बचपन का

0: हारा दिखता है। माँ की आंखों में वही पुरानी ममता लौट आती है और भाई बहनों की हंसी फिर गूंज उठती है। ये मिलन हमें याद दिलाता है कि नौकरी, शहर और व्यस्तताओं ने हमें कितना भी दूर कर दिया हो, हमारा अस्तित्व आज भी उसी एक थाली, उसी एक कहानी, उसी एक आशीर्वाद से बंधा है, जो अगली पीढ़ी को भी सिखाता है कि परिवार वो अंतिम घर है जहाँ लौट कर आदमी फिर से पूरा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: कितने
1: बहुत
0: सुंदर,
1: सुंदर
0: बहुत
1: शब्दों में
0: सुंदर
1: कहा।
0: जी
1: काश हम सभी ऐसा समझें,
0: जी
1: सोचें और इस तरह के जो जीवनचर्या बिताएं। तो हमें लगता है कि जो आजकल एकल परिवारों की जो प्रथा चल निकली है,
0: जी
1: उसमें बहुत कमी फिर से आने लगेगी,
0: या
1: है ना?
0: उसमें उसमें जो है ना, जो सुधार हो जाएगा कि
1: हाँ
0: हम दूर दूर जाने लग गए हैं एक दूसरे से।
1: हाँ हम अकेलेपन के आदी हो गए हैं, हम अकेलेपन में रहना चाहते हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, जिस
0: जी
1: तरह की भावना हमने रख ली है, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा परिवार है, हमारे जो सास ससुर हैं, माता पिता हैं, वो भी किसी न किसी से जुड़े हुए हैं
0: जी
1: और उन्हें भी उस साथ की जरूरत है।
0: और बच्चे भी ना शेयरिंग और केयरिंग सीखते हैं, क्योंकि
1: हाँ
0: घर में आजकल एक या दो ही बच्चे होते हैं, उनका सब चीज पर्सनल होता है,
1: बिल्कुल
0: उनका खिलौना अलग, उनका बिस्तर अलग, उनका कमरा अलग, उनकी किताबें अलग है। तो जब घर में परिवार के दूसरे लोग आते हैं गेट टुगेदर के बहाने, उस वक्त वो उनकी थाली में खाएंगे, उनके खिलौने खेलेंगे,
1: अपनी
0: तो उन्हें
1: चीजों
0: भी
1: को देना सीखेंगे। जब आप
0: हाँ
1: उन्हें बताएंगे कि बेटा
0: जी
1: आप अपनी चीजें इन्हें भी दे सकते हैं, तो उनके अंदर ये भावना पनपती है कि
0: जी
1: हम मिलजुल कर रहे हैं, है ना?
0: जी
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी के कारण अक्सर लोग अपने ही परिवार के सदस्यों से दूर हो गए हैं। पारिवारिक मिलन समारोह सभी को एक जगह इकट्ठा होने का अवसर देता है। एक साथ बैठकर बातचीत करना, पुराने दिनों को याद करना, सुख दुख साझा करना, प्रेम, विश्वास, सौहार्द, ये सभी बड़ा अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे अक्सर दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा चाची, बुआ मौसी, चचेरे भाई बहनों को ठीक से नहीं जानते। ऐसे समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने परिवार के इतिहास, परंपराओं और मूल्यों को जानने का मौका मिलता है और ये बच्चों में पारिवारिक संस्कारों को विकसित करने का एक बेहतरीन मंच भी है।
0: एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह मैंने शहरों में देखा है, जहां पर हर त्योहार पर लोग एक पार्क में या किसी के घर के लॉन में मिलते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं। हमारे गांव में दिवाली के अगले दिन अक्सर सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इस त्योहार पर जो बाहर नौकरी करते हैं वे सब भी परिवार सहित छुट्टी मनाने आते हैं, तो उनसे लोग ज्यादा घुलते मिलते हैं और बच्चे इनाम भी मांगते हैं। हाँ, दूसरा मौका होली का होता है, जब होली के दिन सारा गांव एक रंग में रंगा होता है और दोपहर के बाद नए कपड़े पहनकर सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और गुजिया खाते हैं, खिलाते हैं, फाग पर तरह तरह के गीत गाते हैं, पूरा गांव मस्ती में झूमता है। अब तो लोग ऐसे कुछ उन्होंने अलग बातें भी लिखी
1: लिखी है
0: जी
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी फैमिली में चाचा चाची, उनके लड़के लड़की कुल मिला के 45 लोग हैं।
0: जी
1: हम सब हर साल समर वेकेशन में एक दिन की पिकनिक टूर पर जाते हैं, धार्मिक स्थल, दरिया का किनारा, फार्म हाउस, वहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, ग्रुप फोटोग्राफी करते हैं और उस दिन कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं होता, सब एक दूसरे की मजाक भी उड़ाते हैं, मस्ती भी करते हैं और बहुत मजा आता है। ऐसा टूर होते रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते, परिवार हमारी शक्ति है और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र है, इसके बल पर ही हम सामाजिक जीवन का सर्वोच्च प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्कृति और जीवन मूल्यों की प्राथमिक पाठशाला भी है। परिवार से ही हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होता है, किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे भारत में तो यहाँ पारिवारिक समारोह बच्चे पैदा होने में, मुंडन, शादी, विवाह, मृत्यु तक बहुत से होते हैं। कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बनता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
0: और अब गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर। हाँ तो सोनाली, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही असम की सांस्कृतिक पहचान मेखला चादर के बारे में।
2: चलते हैं असम की ओर।
0: हाँ बिल्कुल, चलिए।
2: मेखला चादर, असम के इसे मेखला चादोर भी कहते हैं। असम की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाकों में से एक है। इसकी खासियत केवल इसकी सुंदरता नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी सदियों पुरानी बुनाई कला और असम के जीवन से जुड़ी परंपराएं भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। और मेखला चादर पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये मुख्यतः दो हिस्सों से बनकर एक बड़ी सुंदर पोशाक बनती है, मेखला और चादर। तो मेखला इसका निचला हिस्सा होती है जिसे कमर के चारों ओर लपेटा जाता है और इसे विशेष ढंग से मोड़कर सामने की ओर इसकी प्लीट्स बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगती है।
2: और चादर जिसे कई बार सादोर या चादोर भी कहा जाता है, इसका ऊपरी हिस्सा है, इसे शरीर के ऊपरी भाग पर लपेटकर कंधे पर यानी कंधे पर रखा जाता है।
0: तो इस तरह दोनों हिस्से मिलकर क्या बनते हैं,
2: मेखला चादर। और मेखला चादर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हस्त बुनाई है। असम में बुनाई केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपरा भी रही है।
0: हाँ, और असम की बुनाई में प्रकृति की हमें झलक भी दिखाई देती है। इसमें फूल, पत्तियां, पक्षी, ज्यामिति आकृतियां और पारंपरिक प्रतीक इसके डिजाइनों में नजर आते हैं। इसीलिए हर सुंदर मेखला चादर अपने भीतर बुनकर की कल्पना और मेहनत की कहानी भी कहती है।
2: और मेखला चादर में असम के विभिन्न प्रकार के रेशम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मूंगा सिल्क या इसे मूंगा सिल्क भी कहते हैं। असम का मूंगा रेशम अपने प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये मजबूत और टिकाऊ भी माना जाता है और मूंगा सिल्क की मेखला चादर को बहुत प्रतिष्ठित भी माना जाता है।
0: हाँ, इसके अलावा

0: पाट रेशम मुलायम और चमकदार होता है और उससे बनी मेखला चादर विशेष अवसरों पर खूब पसंद भी की जाती है।
1: साथ ही एरी सिल्क, एरी रेशम को असम की रेशम परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसकी बनावट अपेक्षाकृत गर्म और मुलायम होती है।
0: हाँ, और मेखला चादर में रंगों का जो संयोजन है वो बहुत ही सुंदर होता है सोनाली। लाल, क्रीम, सुनहरा, हरा, सफेद और गहरे रंगों के साथ पारंपरिक बॉर्डर बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर बॉर्डर बनाए जाते हैं।
1: और इसके बॉर्डर और पल्लू जैसे हिस्सों पर पारंपरिक असमिया आकृतियाँ इसकी सुंदरता बढ़ाती है। फूल, पत्तियां, मोर, पक्षी और ज्यामितीय पैटर्न इसकी लोकप्रिय डिजाइन है।
0: हाँ बिल्कुल, और असम का जो प्रसिद्ध बिहू त्योहार है ना, मेखला चादर से गहराई से जुड़ा हुआ भी है ये त्योहार। विशेष रूप से बोहाग बिहू के अवसर पर महिलाएं जो हैं पारंपरिक मेखला चादर पहनती हैं और इस उत्सव में शामिल भी होती हैं। बिहू के गीत हैं, नृत्य हैं और पारंपरिक परिधान जब मिलकर असम की जो संस्कृति है उसकी सुंदर तस्वीर हमारे सामने एक पेश करते हैं।
1: और मेखला चादर का इस्तेमाल विवाह समारोह, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य पारंपरिक अवसरों पर भी किया जाता है। दुल्हन की मेखला चादर पर अक्सर जटिल बुनाई, सुंदर बॉर्डर और पारंपरिक रूपांकन दिखाई देते हैं।
0: हाँ, और मेखला चादर इसके आधुनिक रूप भी अब आ गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्न रूप भी आने लगे हैं जिनमें पारंपरिक बुनाई के साथ नए रंग आ गए हैं, नए डिजाइन आ गए हैं। और ये केवल पारंपरिक अवसरों तक नहीं बल्कि आम प्रोग्राम्स में या डेली रूटीन में भी वहाँ की महिलाएं जो हैं
1: पहन सकती हैं।
0: जो नौकरी में जाती हैं वो महिलाएं भी मेखला चादर पहनती हैं और वो कॉटन के बने जो मेखला चादर है वो पहनावा में है।
1: मेखला चादर को केवल एक वस्त्र कहना इसके महत्व को कम कर देना होगा। ये असम की पहचान, लोक कला, बुनकरों की मेहनत और महिलाओं की रचनात्मकता का भी प्रतीक है। इसके हर धागे में असम की प्रकृति की छाप दिखाई देती है। कहीं ब्रह्मपुत्र की विशालता, कहीं हरे भरे जंगलों की छटा और कहीं स्थानीय लोक कला की इसमें झलक दिखाई देती है।
0: बिल्कुल, और मेखला चादर असम की एक ऐसी विरासत है जिसमें पहनावे के साथ इतिहास, एक कला है, संस्कृति है। और ये केवल शरीर को सजाने के लिए कोई वस्त्र नहीं है सोनाली, बल्कि असम की पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने वाली एक जीवंत परंपरा का भी नाम है मेखला चादर। और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल
1: जी।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया, जिला जालौन।

उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है। आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी एनसीईआरटी की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओं, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे

0: मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
1: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
3: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे। तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
4: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
5: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
6: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
5: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
6: हाँ, अब बन गई रेल।
4: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
5: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
6: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
7: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
5: हाँ, हाँ दादाजी ये ठीक रहेगा।
7: चलो
4: रेल चली भाई रेल चली,
7: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली,
4: रेल चली भाई रेल चली,
7: चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
5: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
7: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
5: अच्छा
7: अच्छा, अब ये बताओ तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
6: दादाजी मैंने देखी है।
7: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
6: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
7: अच्छा तो चलो मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
5: अरे वाह,
7: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
5: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
7: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
8: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।

0: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
1: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़
0: बैठो,
1: जाओ
0: बैठो,
1: आओ, आओ।
0: जल्दी करो, जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
2: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
0: हाँ हाँ उतरो बेटी।
3: बच्चों रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
2: दादाजी यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
0: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
0: अच्छा बच्चों वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
2: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई। अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
0: हाँ बच्चों देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
2: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
0: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
2: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
0: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
2: हाँ हाँ दादाजी चलिए।
4: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु सीटी बजाती है। कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु सीटी बजाती है। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। गांव गांव और शहर शहर तक वो

छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है, छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु सीटी बजाती है, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु सीटी बजाती है, इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।
3: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIRBareilly@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIRBareilly@gmail.com।
4: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIRBareilly@gmail.com।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4 बज चुके हैं और ये समय होता है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक विषय लेते हैं और उस विषय पर बातचीत करते हैं अपने श्रोताओं से भी और उनके विचार जानते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी इससे संबंधित पोस्ट की जाती है, उस पर भी हमारे बहुत सारे श्रोता अपने विचार लिखकर भेजते हैं। साथियों, आज किसी कारणवश फोन लाइन खराब होने के कारण आपके फोन कॉल्स हम नहीं ले पाए हैं, लेकिन आपके विचार जानेंगे और आज का विषय हम आपको बताते हैं। साथियों, आज का विषय हमने रखा है क्या करें जब नकारात्मक विचार सताने लगे। आप सोच रहे होंगे ये विषय क्यों लिया, तो आपको ये भी बता देते हैं क्योंकि कल है 11 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो इस विषय को देखते हुए हमने आज का विषय रखा है अपना, क्या करें जब नकारात्मक विचार सताने लगे। और साथियों, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में बताते हैं कि हर साल ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों को सहयोग तथा आशा का संदेश देना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति की परेशानी को समझना, उसकी बात ध्यान से सुनना और उसे अकेला महसूस न होने देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथियों, इसी विषय पर आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान दीपक सिंह जी, जो मनोवैज्ञानिक हैं, और उनसे हमने इस विषय पर विस्तार से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
5: जी जी, धन्यवाद।
2: सर, आप अपना परिचय स्वयं दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए, तो हमें ज्यादा चला

0: जी बिल्कुल। नमस्कार सभी को। मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मानसिक चिकित्सालय बरेली में काउंसलर के पद पर काम कर रहा हूँ। और ये जो टेलीमानस सुविधा है, टेलीमानस नेशनल हेल्पलाइन है, उसमें मैं काउंसलर के पद पर काम करता हूँ।
1: जी सर, हमारा ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। इसमें हम एक विषय कोई लेते हैं, उस पर बात करते हैं, अपने श्रोताओं से भी कई बार बात करते हैं। और कल चूंकि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो आज हमने अपने कार्यक्रम का विषय रखा है, क्या करें जब नकारात्मक विचार सताने लगें। तो इस विषय पर आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि हमें क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों होता है।
0: देखिए, ये जो आपका आज का टॉपिक है और आज विश्व आत्महत्या को बचाने के लिए या इसको उस तरीके से लेते हैं कि इसकी अवेयरनेस
1: जी
0: कैसे फैलाएं, ये जो आपने टॉपिक लिया बहुत ही सराहनीय है।
1: जी
0: और आपका जो प्रश्न है उसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो हमें यही पहचानना आना चाहिए कि ऐसे विचार किसको आ सकते हैं, है
1: जी
0: ना।
1: जी
0: और जैसे कि हम जैसे कुछ कुछ आपने बहुत जो पहले न्यूज में आता रहता है, कुछ अभी हाल ही में कुछ ऐसी न्यूज आई है जो कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली, है ना।
1: जी
0: या एक बहुत अभी रिसेंट टॉपिक बहुत चल रहा था कि एक महाराष्ट्र में एक बच्चे ने आईफोन की वजह से
1: जी
0: जान दे दी कूद
1: जी
0: के
1: जी
0: पहाड़
1: जी
0: से, है ना। तो
1: जी
0: ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि ये जो समस्या है बहुत गंभीर है
1: जी
0: ना। और अभी जैसे कुछ गंभीर समस्याएं, जैसे अगर कुछ कारक मान के चले हम, है ना, कि क्या कारक हो सकते हैं आत्महत्या के, है
1: जी
0: ना, क्यों हम इस विचार तक पहुंचते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ किसी को बहुत गंभीर भावनात्मक विचार चल रहे हो
1: जी
0: मन में, है ना,
1: जी
0: या
1: जी
0: लगातार निराशा हो रही हो, ठीक है। और कुछ मानसिक समस्याएं होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे भी चीजें होती हैं, इसकी वजह
1: जी
0: से भी ऐसे विचार आने लगते हैं जिसको क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं,
1: जी
0: लंबे दौर तक, ठीक है। और कुछ बहुत आम समस्याएं हैं, जैसे रिश्तों में समस्या हो गई, किसी का ब्रेकअप हो गया, पारिवारिक विवाद हो गए, है
1: जी
0: ना। और जब एडल्टहुड में जब हम परेशानी से जूझ रहे होते हैं, जैसे आर्थिक परेशानी भी हो सकती है
1: जी
0: ना, नौकरी की परेशानी, कर्ज हो गया, है ना।
1: जी
0: और आज का जो बच्चा है, स्टूडेंट्स की लेवल पे बात करें तो जैसे परीक्षा, पढ़ाई है, और कैरियर को लेके बहुत आजकल बहुत स्ट्रेस रहता है बच्चों में। तो
1: जी
0: कभी कभी ऐसी भावनाओं में बच्चे या कोई भी व्यक्ति है जो उलझ जाता है, फिर वो ऐसे विचार आने
1: जी
0: लगते हैं उसके अंदर। क्यों
1: जी
0: आने लगते हैं, इसका क्या कारण, उसे ऐसा लगता है कि भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा।
1: जी
0: मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर किसी के मन में कुछ ना करने की भावना आ गई तो
1: जी
0: समझ लीजिए कि वो विचार आगे बढ़ के खत्म करने की तरफ बिल्कुल बढ़ सकता है ना।
1: जी
0: अब जैसे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे बच्चों को लेके ही बात करें, जैसे बुलिंग होने लगी है
1: जी
0: स्कूल्स में, है
1: जी
0: ना, साइबर बुलिंग हो गई आजकल बहुत कॉमन हो गया है ना, सामाजिक अपमान हो जाता है तो बच्चों को ठेस पहुंच जाता है।
1: जी
0: और रही बात बड़ों की, या अगर हम उससे बड़े एज की बात करें, एडल्टहुड के बाद की बात करें, तो घरेलू हिंसा आजकल बहुत,
1: जी
0: है ना,
1: जी
0: जो परिवार में कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: या फिर किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन,
1: जी
0: और जैसे किसी व्यक्ति का किसी मृत्यु हो गई या जान पहचान का कोई छोड़ के चला गया, तो ऐसी स्थितियों में ऐसी मनोदशा बनना कभी कभी लाजमी हो जाता है। लेकिन
1: जी
0: जरूरी नहीं है कि हर कोई अगर इस परिस्थिति से गुजर रहा है तो वो आत्महत्या की ही सोचे।
1: जी
0: कुछ लोग बहुत दृढ़ होते हैं, वो इन समस्याओं से जूझते हैं, बढ़ते हैं और आगे भी निकल जाते
1: जी
0: हैं, है ना।
1: जी
0: और कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि
1: जी
0: जैसे कुछ सुसाइड प्रिवेंशन के कुछ स्टेप्स होते हैं कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना होता है कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं
1: जी
0: आत्महत्या को, बचा कैसे होते हैं। किसी कोई इंसान आत्महत्या की तरफ जा रहा है तो हम उसको कैसे पता करें कि हाँ ऐसा हो सकता
1: जी
0: है। तो सबसे पहले तो चीज होती है कि ध्यान देना किसी
1: जी
0: चीज। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके व्यवहार में अचानक बदलाव हो गया, बहुत निराश रहने लगा, है ना, अलग थलग रह रहा है,
1: जी
0: या वो कह रहा है कि अब नहीं हो रहा है, जैसी बातें इस तरीके की करने लगा है, तो इसको ना थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए।
1: जी
0: तो पहला तो ये है कि हम नोटिस करें, ठीक है।
1: जी
0: तो दूसरा है कि हम सीधा पूछें, अगर हमें ऐसा लग रहा है नोटिस होने के बाद, तो
1: जी
0: डायरेक्ट उनसे पूछे कि भाई क्या आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या आत्महत्या के विचार आ रहे हैं,
1: जी
0: ठीक है। तो

0: हमेशा पूछने से विचार पैदा नहीं होते हैं, है ना
1: जी।
0: ये बातचीत शुरू करने में मदद जरूर करता है।
1: जी जी जी
0: और फिर हम अगले अगर स्टेप्स में जाएं तो क्या करें कि भाई सबसे पहले काम है कि उसको सुने, है ना, लिसन करना आना चाहिए बिना जज किए,
1: जी,
0: है ना, बहस ना करें उसको, और तुरंत सलाह देने की बजाय उसको शांति पूर्वक अगर हम सुन लेंगे तो काफी चीजें ये कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब ये अगर हो गया है आपने उसकी बात सुन ली है तो हमेशा उसे अकेला ना छोड़े, यानी कि उससे कनेक्टेड ना
1: जी, उनसे बातचीत ये बनाए रखें और किसी तरीके से उसको मतलब बिजी रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है कि यदि तत्काल खतरा हो रहा है यानी कि एकदम से लग रहा है कि खतरे में, तो व्यक्ति को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही छोड़े इसको,
1: जी,
0: है ना,
1: जी जी जी।
0: और फिर क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि भाई सेफ्टी हमेशा इंश्योर करनी
1: पड़ती, जी,
0: है ना, जी, एक खतरनाक जो साधन होते हैं उनसे दूरी बनाए रखें,
1: जी,
0: है ना, अगर जैसे कुछ आप जानते हैं आत्महत्या के बहुत से साधन होते हैं जिनकी वजह से, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि सबसे बड़ा जो कारण है जो रहा है वो फांसी लगा के आत्महत्या करना,
1: जी,
0: है ना, दूसरा पॉइजन ले लेना, है ना, ये दो मुख्य कारण जो एक रिपोर्ट में आए जो हमारी भारत सरकार की रिपोर्ट है,
1: जी,
0: है ना, तो इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे या कोई भी इंसान जो इस परिस्थिति से जूझ रहा है उसकी सेफ्टी हमेशा इंश्योर होनी चाहिए। ठीक है,
1: जी,
0: और जब इतना हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर हमें उसको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जोड़ना चाहिए।
1: जी,
0: जो भी मानसिक स्वास्थ्य अगर विशेषज्ञ है, कोई डॉक्टर है या नजदीकी अस्पताल है,
1: जी,
0: है, और अभी जिस हेल्पलाइन से मैं काम कर रहा हूँ ये बिल्कुल मेंटल हेल्थ क्राइसिस हेल्पलाइन है, नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 1-44-16, है ना, और तुरंत ही जब भी ऐसा हो तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही टेलीमानस को नंबर कॉल करने के लिए बोले। ठीक है, इस नंबर को बताएं क्योंकि ये नंबर 24/7 है, कभी भी कर सकते हैं और बिल्कुल गोपनीय रहता है, और यहाँ पे जितने भी काउंसलर हैं वेल क्वालिफाइड और सर्टिफाइड काउंसलर है।
1: जी,
0: ठीक है
1: जी,
0: तो ये बात होगी। और फिर एक आखिरी बात कि भाई हमें फॉलोअप लेना बहुत जरूरी होता है,
1: जी,
0: है ना, कि भाई मान लीजिए संकट तो गुजर गया, उस समय सब कुछ हो गया, है ना, लेकिन फिर भी एक संपर्क बनाए, अगर हम एक संदेश या एक कॉल कर ले तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि भाई इंश्योर हो जाते हैं कि भाई अभी इंसान ठीक है, और उस इंसान को भी ऐसा लगता है कि भाई मेरे सुनने वाला भी है या मेरा कोई ध्यान रखने वाला भी है,
1: जी,
0: तो मुझे अब इस तरीके की सोच को नहीं रखना चाहिए।
1: जी हाँ, थोड़ी हिम्मत आ जाती है फिर इंसान के अंदर।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, जी, जी, जी। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय हमें दिया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और साथियों, एक बार फिर से बता दें, हमारा आज का विषय है क्या करें जब नकारात्मक विचार सताने लगे। साथियों, इस विषय पर चलते हैं अब सोशल मीडिया की तरफ, जहां हमारे साथियों ने अपने विचार लिख भेजे हैं। ये हमारे साथी हैं ग्रामबा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली, शारुनूर अंसारी लिखते हैं, दोस्तों हर किसी की जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं जब नकारात्मक ख्याल हमारे जहन पर हावी होने लगते हैं। ऐसे वक्त में घबराने के बजाय कुछ देर खामोश बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल को समझाइए कि हर मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। अपने आप को अकेला मत समझिए, किसी भरोसेमंद इंसान से अपने दिल की बात कीजिए, अपनी पसंद का काम कीजिए और अपनी तवज्जो उन चीजों पर लगाइए जो आपको सुकून देते हैं। याद रखिए, बुरे ख्याल जिंदगी का फैसला नहीं होते, ये सिर्फ एक गुजरता हुआ दौर होते हैं। उम्मीद का दामन थामे रखिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाले की सुबह जरूर आती है।

हमारे एक और साथी हमें अपने विचार लिखकर भेजते हैं। आप हैं ग्रामा पोस्ट गोठा खंडवा से रामबाबू मिश्रा जी, और आपके बहुत सारे साथी लिखते हैं कि प्रश्न अति उत्तम है, सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों का साथ है। जब आपके विचार सद्गुणों से भरपूर होंगे तो नकारात्मक शक्ति खुद आपसे दूर हो रहेगी, लेकिन जब आप किसी चिंता में डूबे होंगे उस समय आप पर नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव जरूर डालेगी। तो यही उचित है, उस समय आप अपने किसी अजीज मित्र से जरूर सलाह लें। अपने गुरु का ध्यान देते हुए ध्यान मुद्रा में कुछ समय के लिए अपना मन लगाएं और गुरु कृपा से जो नकारात्मक ऊर्जा आप पर असर कर रही है वो बहुत जरूर दूर होगी, वो जरूर दूर होगी। और व्यायाम की भी बहुत जरूरत है, इस समय अपने पूर्वजों का ध्यान दें तो मेरा विश्वास है कि नकारात्मक शक्ति की जगह आपको सकारात्मक ऊर्जा तुरंत मिलेगी। बाकी आपके विचार क्या हैं वो आप जानें। बिल्कुल,

हमारे एक और श्रोता अपने विचार लिखकर भेजते हैं। आप हैं अनोखे लाल मौर्य जी, कटरा चांदखा, पुराना शहर बरेली से। लिखते हैं, जब निराशा, चिंता, हीन भावना और नकारात्मक सोच घेरने लगे तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद करें। कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए और अपना ध्यान उस काम पर लगाइए जिसे आप अभी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम आपको एक गीत सुनवा सकते हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और हमारा आज का विषय है, क्या करें जब नकारात्मक विचार सताने लगे। इस विषय पर हमारे एक और हमारे नियमित श्रोता हैं, उनके विचार भी जान लेते हैं। आप हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी और आपके साथी लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वाले को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। तो आदाब है लाल मोहम्मद अंसारी जी, लिखते हैं हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद। आज का विषय भी आपने लिख भेजा है, जब नकारात्मक सोच सताने लगे। आगे लिखते हैं, अक्सर जब रात को नींद नहीं आती तो व्यक्ति ऐसे माहौल में पहुंच जाता है, उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। व्यक्ति वो बातें सोचने लगता है जिनको सोच सोच कर गुस्सा आने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। हमें चाहिए जब ऐसी परिस्थिति हो, नकारात्मक सोच हमें सताने लगे, तो उठकर बैठ जाएं, थोड़ा टहल लें और अपनी जगह पर जाकर सो जाएं, नकारात्मकता को हावी ना होने दें।

हमारे एक और नियमित श्रोता हैं कृष्ण पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना और आपके साथी। आप लिखते हैं कि मन में नकारात्मकता, नकारात्मक ऊर्जा या विचार महसूस होने पर तुरंत शांत रहें, गहरी सांस लें और अपने ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित करें। मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को तुरंत खारिज ना करें बल्कि उन्हें पहचानें। ये स्वीकार करने का प्रयास करें कि आपके मन में जो विचार आ रहा है वो गलत है। मानसिक शांति और शरीर की ऊर्जा को सुधारने के लिए नियमित रूप से ध्यान करें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और हम आपको बता रहे हैं अपने श्रोताओं के विचार। विषय है क्या करें जब नकारात्मक विचार सताने लगे। हमारे एक और श्रोता हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, लिखते हैं कुछ देर गहरी और धीमी सांस लें, ध्यान किसी सकारात्मक या रोजमर्रा के काम में लगाएं, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, थोड़ी देर टहलें या खुले वातावरण में समय बिताएं, खुद से कहें यह सिर्फ एक विचार है, मुझे इस पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अगर ऐसे विचार बार बार परेशान कर रहे हों या पढ़ाई, नींद या रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही हो तो किसी भरोसेमंद बड़े या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना अच्छा कदम है।

हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने अपने विचार लिख भेजे हैं। आप हैं मौलागढ़ नई बस्ती बरेली से तरन्नुम अंसारी जी, और आपके बहुत सारे साथी भी हैं जिनके नाम लिख भेजे हैं। हमने लिखा है आगे, जब कुछ करने का मन ना हो तो माता पिता के साथ टाइम दें, सब कुछ अच्छा लगेगा। या तो अपने दोस्तों से मिलें, उन्हें अपने दिल की बात बताएं, वो आपकी आपको सलाह देंगे तो सब कुछ करने का मन करेगा। कभी गलत नहीं करें, उनके बारे में सोचें, अपने माता पिता के जिसने आपको कितनी मुसीबत से पाला है, पाल की जवानी माता पिता की ही सलामी।

0: साथियों, आज के समय में पढ़ाई, पारिवारिक समस्याओं, तनाव, अकेलेपन और अन्य कारणों से कई लोग मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे में हमें किसी का मजाक उड़ाने या उसकी भावनाओं को छोटा समझने के बजाय सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत परेशान दिखाई दे तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति, शिक्षक, माता पिता या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथियों, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का संदेश है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। हमें ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां हर व्यक्ति अपनी परेशानियों के बारे में बिना डर के बात कर सके और उसे समय पर सहायता मिल सके।
1: माझी

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बज चुके हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की।

श्रोताओं 5:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम नारी संसार, जिसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे रिश्ते ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन निभाएं। एक और विषय रहेगा चर्चा का, तनाव से बचें हौसला रखें। कार्यक्रम युववाणी लेकर आएंगे प्रज्ञा पाठक 6:00, जिसमें होगा कुछ खास है आज, प्यार की धुन और चक्रव्यूह। हमारे ग्रामीण साथियों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत प्रसारित किया जाएगा 6:30 पर, जिसमें आज चर्चा की जाएगी ग्राम पंचायतों का विकास और होगी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन का समय रहेगा 7:31 का, जिसमें आज का विषय है बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, शंकाएं और आधुनिक उपचार। कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मोहम्मद अकीक। श्रोताओं ये थे हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम, आइए एक नजर डालते हैं कल की सभा में प्रसारित बरेले होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। नमस्ते बरेली, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 8:15 पर। 8:45 पर आपको सुनवाएंगे लोकगीत। 9:00 आपको जोड़ेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 9:30 पर। सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 10:00 से। कल दिन के 11:00 का समय रहेगा कार्यक्रम सबरंग का। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम झुमका गिरारे सुनना ना भूलिएगा कल प्रातः 8:15 पर।

आपके सुंदर सुंदर पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत प्रसारित किया जाएगा कल दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम रसरंग का। तीन बजकर 30 मिनट पर आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम और कल शाम 4 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। 5 बजकर 5 मिनट पर शाम को आपको सुनवाएंगे भजन संध्या नारी संसार महिलाओं का ये प्रिय कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल शाम 5 बजकर 30 मिनट पर, जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे विश्व आत्महत्या बचाओ दिवस और मन से बने मजबूत। कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा रोज की तरह कल शाम 6 बजे का, जिसमें होगा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर चर्चा और सुनवाएंगे ओए लकी। हमारे किसान साथियों का मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6 बजकर 30 मिनट पर, जिसमें चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर और कृषक गोष्ठी में आपको सुनाएंगे खेती को लाभकारी कैसे बनाएं। प्रस्तुति होगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा कल शाम 7 बजे का, जिसमें चर्चा की जाएगी शुद्ध पेयजल का उपयोग इस विषय पर और सुनवाएंगे आपको क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। प्रस्तुति मिथिलेश श्रीवास्तव की रहेगी। अनुरोध गीत आपके पत्रों पर आधारित यह कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे कल शाम 7 बजकर 31 मिनट पर।

श्रोताओं, ये था विवरण हमारी आज की सभा की शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:05 हो चुके हैं और अब समय होता है भजन संध्या का। श्रोताओं, भजन संध्या के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हरिओम शरण के गाए इस भजन के साथ।

श्रोताओं, अभी आपने जो भजन सुना उसको स्वर दिया था नंदिनी शरण ने। श्रोताओं, स्वर परीक्षा हेतु सूचना सुनिए। आकाशवाणी बरेली करने जा रहा है अपने एसआईनी पैनल का विस्तार। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। है आपकी आवाज में वो दम, वो क्रिएटिविटी जो रेडियो पर चला सके अपना जादू, तो देर किस बात की, चले आइए आकाशवाणी बरेली। आकाशवाणी बरेली अनाउंसमेंट, ट्रांसमिशन और स्पेशल ऑडियंस कार्यक्रम जैसे नारी संसार और युववाणी, ग्राम जगत, अंकुर कार्यक्रम में असाइनमेंट के आधार पर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए, युववाणी के लिए 10+2 और बाकी के लिए कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, बरेली नगर निगम में ही रहते हों ये भी जरूरी है। अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए 1 सितंबर से किसी भी वर्किंग डे और वर्किंग टाइम में आकाशवाणी आकर आवेदन पत्र लेना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 20 सितंबर। तो किस बात का इंतजार है, चले आइए और हमसे जुड़ जाइए। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आइए अब भजन संध्या में बढ़ते हैं अगले भजन की ओर, जिसको स्वर दिया है अनूप जलोटा ने।

ईश्वर की कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ है। अब इस शरीर को गुण रूपी रत्नों से सजाना हमारा कर्तव्य है। ज्ञान, ध्यान, तपस्या, प्रेम, सेवा, ये वो रत्न हैं जिन्हें एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो सदैव साथ रहते हैं। दुनिया के अन्य रत्न शरीर छूटते ही हमें छोड़ देते हैं, तो क्यों ना उन रत्नों को प्राप्त करें जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहेंगे।

श्रोताओं, जगजीत सिंह की गाई इसी भजन के साथ भजन संध्या के कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 होने को हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार बहनों, आज आपके साथ मैं हूँ शिल्पी। और बहनों, रिश्ता शब्द है तो बहुत छोटा, लेकिन अपने अंदर सभी संबंधों को समाये हुआ है। और रिश्तों को बचाने और सुधारने के लिए आपसी संवाद, एक दूसरे का सम्मान बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ आपस में बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। मन में कोई भी गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको किसी से कोई कन्फ्यूज़न है, तो डायरेक्ट उसी से बात करके मनमुटाव को ख़त्म कर लें। सिर्फ अपनी बात ही नहीं कहें, बल्कि सामने वाले की भावनाएं और उसका नज़रिया भी समझें। प्यार से ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना। गुस्से में कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कभी भी ना करें। अगर गलती आपकी है, तो बिना संकोच किए आप सॉरी बोल दें। ऐसा करने से आपका रिश्ता टूटने से बच सकता है। इससे अहंकार टूटता है। अगर आप किसी से सॉरी बोल देते हैं, तो ईगो ख़त्म हो जाती है और रिश्ता जुड़ता है। एक दूसरे के साथ समय बिताएं, पुरानी अच्छी यादों को ताज़ा करें, और साथ में नई जो आपकी प्लानिंग्स हैं उसको भी कर सकते हैं। मतलब टाइम स्पेंड करें, चाहे वो रिश्ता किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ क्यों ना हो। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए क्या करें। ऐसे में अगर आप भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि पहल सामने की तरफ से हो, तो मत करिए ऐसा। इंतज़ार बिल्कुल भी मत करिए कि सामने वाला पहल करेगा। सब कुछ भूल कर आप पहल करें और अपने टूटते हुए रिश्तों को बचा लें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने जो रिलेटिव्स हैं, जिनके साथ आपका रिलेशन है, उनके साथ इतना सहज महसूस करें कि सारे डर, सब गलती और अपने जो भी विचार हैं, वो सब आप उनके साथ शेयर कर सकें। और आपके साथ बिना किसी झिझक के शेयर जब आप करते हैं, तो ऐसा करने से रिश्ते और जुड़ते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर ही पोस्ट ना डालें कि रिश्तों को निभाने की कोशिश ना करें। आजकल यही देखने को मिलता है, सोशल मीडिया पर बर्थडे, एनिवर्सरी विशेज हो जाती हैं, और अगर सामने कोई आता है तो हम लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और ना ही अपने बच्चों को इस फील्ड में आगे बढ़ने दें। रिश्ता निभाएं, घर पर बुलाएं अपने रिलेटिव्स को, उनके घर पर जाएं, सेलिब्रेशंस करें, और

जो जनरेशन है उनको भी अपने जो आपके पुराने संबंधी हैं उनसे ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं। आजकल बच्चों को, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, तो बहुत क्लोज रिलेशन्स जो होते हैं उनके बारे में भी वो नहीं जानते हैं। तो ऐसा ना करें, सोशल मीडिया से बाहर आके रिश्ते निभाने की कोशिश करें और एक साथ गेट टुगेदर प्लान करें जिससे एक साथ सबका मिलना हो सके। रिश्तों को रिश्तों की तरह निभाएं, सिर्फ सोशल मीडिया पर अपडेट रहकर रिश्तों का मजाक ना बनाएं। रिश्तों की अहमियत को समझें, क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं। एक बार टूटने के बाद उनका मोल चला जाता है और रिश्तों में दरार पड़ जाती है, इसलिए रिश्तों को दिल खोल कर निभाएं।

0: बहनों, आज हमारे साथ माला गुप्ता जी हैं जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से वो महिलाओं की मदद करती हैं, जो महिलाएं उनका शोषण होता है या फिर समाज में कुछ भी तरीके की परेशानी होती है। तो माला जी, आप किस तरीके से हमारी महिलाओं की हेल्प करती हैं?
1: सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारी महिलाएं हैं, हम उनको मतलब उनके पास जो जाते हैं तो वो अपनी कोई ना कोई समस्याएं हमारे पास सामने रखती हैं। और कोई मतलब हर इंसान होता है जिसकी कोई ना कोई अपनी निजी समस्या होती है, कोई खुल के कह देता है हमसे अपनी प्रॉब्लम और कुछ अपनी छुपा लेते हैं। तो हम पहले उनमें ना मतलब फ्रीली माइंड मतलब उनसे बात करते हैं, मतलब फ्रेंडली
0: जी।
1: और जैसे मान लीजिए उनके घर में कोई पैसों से रिलेटेड कोई भी अगर उनकी समस्या है, मतलब उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो पहले हम उनकी मतलब जानते हैं कि उनमें क्या मतलब उनमें क्या जो प्रतिभाएं हैं वो उनमें है। विद्यमान मान लीजिए जैसे कुछ मतलब बुनाई जानती हैं
0: जी,
1: कुछ अचार मुरब्बा बनाना जानती हैं
0: जी जी,
1: कुछ जैसे प्लांट वगैरह है उनकी देखभाल करती हैं तो वो अपनी नर्सरी टाइप से मतलब बना लेती हैं। और जो जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब प्लांट वगैरह लगाने का शौक है तो इस टाइप से भी मतलब उनसे पौधे हम खरीदवा देते हैं तो उनकी हेल्प हो जाती है इस टाइप से।
0: अच्छा, और मान लीजिए हमारी जो बहने हैं जो घरेलू काम जानती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हीं
1: जी हाँ
0: आप क्वालिटीज को पहले जान लेते हो कि उनकी हॉबीज क्या है, वो किसकी स्पेशलिटी है कि अचार मुरब्बे पापड़ बड़ी ये सब जो छोटी छोटी काम होते हैं
1: जी मैम, क्योंकि हम बाहर
0: इसी में आप मतलब वो कर देती हैं कि ठीक है अगर आप इस ये काम आपको आता है तो आप इससे भी पैसा कमा सकती हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब उन लेडीज को अगर ये है कि उनके पढ़ाई लिखाई कम की हुई है, कहीं बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकती या उनके परिवार का माहौल ऐसा है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती, तो वो घर में रहकर भी पैसा कमा सकती हैं
1: जी मैम।
0: आप कैसे उन्हें बेस कैसे देती हैं, क्या बताते हैं आप उनको कि क्या करें?
1: जी सबसे पहले तो वही है कि मैम उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखते हैं हम कि वो इतना वो कर पाते मतलब, तो हम समूह टाइप का बना देते हैं।
0: अच्छा।
1: कि अगर गांव में हमें 10 महिलाएं मिलती हैं
0: जी
1: तो 10 लोग मान लीजिए एक लेडीज तो मैम 1000 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट इतने आ रहा है तो नहीं कर सकती, लेकिन 100-100 रुपए भी अगर मान लीजिए हर मतलब लेडी ने अपने कलेक्ट करके और एक काम को कर लिया तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो उन सब में बढ़ जाता है, इस टाइप से करते हैं
0: जी। तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर पैसा नहीं भी है तो कम से कम 100 रुपए से अपना जो छोटा सा काम शुरू कर सकती हैं, इंडिपेंडेंट बन सकती हैं।
1: यस मैम,
0: ये तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, इस तरीके से और क्या करती हैं आप?
1: मैम और ये है कि जैसे वो महिलाएं हैं उनके लिए हम बाहर कभी घुमाने ले जाएं तो मतलब उनका बाहर एक दूसरे को देखेंगी आगे के लिए, और मतलब इससे हम और भी मतलब काम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मेला लगा था तो हम उन लेडीज को घुमाने ले गए थे वहाँ पर, उससे उन्हें बहुत मतलब प्रेरणा मिली कि ये सब वही लोग तो थे जो अपने घर पे बना के बाहर बेच रहे थे, तो वैसे ही अगर उनका काम अच्छे से चलेगा तो बाहर मतलब उनको सबसे मतलब मैंने कि उनको घर से बाहर निकालना, बाहर की दुनिया दिखाना कि हम इस काम को और बड़े लेवल पे अगर करना चाहें तो अच्छे उस पर हो सकता है। और इसमें मैम गवर्नमेंट भी हेल्प करती है अगर हम उससे करें तो
0: जी
1: ने मतलब।
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मतलब लेडीज के अंदर, महिलाओं के अंदर, हम सभी के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है
1: जी मैम,
0: ना बस सिर्फ जरूरत होती है कि उस जज्बे को जगाने की जो काम आप करती हैं, है ना, जो काम आप करती हैं, और इस तरीके से उनकी जो प्रतिभा है वो भी निखर के सामने आ जाती है और इसी के साथ साथ उनको पैसा भी मिलता है, मतलब पैसा भी अर्न कर सकती हैं अपना घर का जो है, अपने घर के लोगों का, परिवार का,
1: छोटी मोटी चीजें वो अपनी
0: खुद कर सकती हैं, है ना। तो बहुत अच्छी चीज है। और जैसे कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि मतलब उन्हें ये काम भी नहीं आता, तो उनके लिए कुछ कर सकती हैं आप, करती हैं क्या मतलब?
1: मैम उनके लिए तो यही है कि मैम जैसे कुछ लेडीज पढ़ी लिखी नहीं है तो हम मैं भी टीचर हूँ और भी हमारे साथ की कुछ टीचर ऐसी हैं जो उनके लिए एक घंटा हम लोग निकाल के और हम हर संडे को उनको जाके पहले हम कुछ ना कुछ जैसे मतलब छोटी छोटी चीजें उनको जैसे गणित समझा

0: देते हैं, या हिंदी के कुछ अक्षर वगैरह मिला के पढ़ना लिखना सिखा देते हैं, या मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लीजिए मोबाइल से भी हम पढ़ सकते हैं। फोन तो मैम आजकल सबके पास होता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उनको कुछ एप्लीकेशंस बता दी कि आप इस तरह से, और
1: हाँ
0: मतलब लिख नहीं सकती तो वो बोल के उसमें टाइप करके
1: जी
0: फोन में, और वो अपनी चीजें मतलब जो उनको चाहिए वो
1: जी
0: उस टाइप से अपना पढ़ाई भी कर सकती है। सुन के मैम इसको हम बोलेंगे कि सुन
1: हाँ
0: के सीखना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस तरीके से आप उनकी, अगर पढ़ी लिखी वो नहीं है तो आप उनकी
0: जी
1: पढ़ाई
0: मैम,
1: लिखाई में भी मदद करती हैं,
0: हाँ
1: और
0: जी मैम,
1: अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करने में भी आप उनकी मदद करती हैं। तो ये
0: हाँ
1: प्रेरणा
0: जी
1: आपको
0: मैम,
1: कहाँ से मिली इतना अच्छा काम करने?
0: मैम स्टार्टिंग में मैम कॉलेज में, और हमारी एक भदौरिया मैम है उनसे हमें काफी कुछ मिला सीखने
1: अच्छा
0: के लिए। वहाँ मेरी 12th तक प्रिंसिपल वही रही है, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली
1: अच्छा तो वो ऐसा काम करती होंगी जिससे सीख
0: है। यस
1: के
0: मैम,
1: सीख
0: वो तो हाँ मैम, सोशल
1: के
0: वर्क बहुत किए उन्होंने, और हम लोगों को भी वही प्रेरणा दी उन्होंने कि
1: हाँ
0: समाज में लड़कियों को तो बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, स्वावलंबी बने और
1: जी
0: आगे
1: जी
0: के लिए अपनी प्रतिभाओं को निखारना।
1: बिल्कुल। अच्छा कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि उनका घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, कुछ परेशानियां लेकर आपके सामने अगर आती हैं तब फिर आप क्या करती हैं, समझाती बुझाती हैं उन्हें, या फिर अगर
0: यस
1: कानून
0: मैम,
1: से
0: नहीं
1: कोई
0: हाँ मैम, समझाते हैं हम उनको कि मैम
1: समझाती
0: अगर, हाँ जी मैम, अगर मैम घरेलू हिंसा है तो मैम अगर वो घर में कुछ अत्याचार, अगर पहले तो हम नोट करते हैं कि मतलब उनके साथ में मैम कुछ, आजकल तो ये भी है कि कुछ लड़कियां दिखावा भी करती हैं कि हमसे ऐसा हो रहा है तो हम बाहर निकले इस टाइप से भी,
1: मतलब
0: लेकिन जो
1: झूठ बोल
0: जेन्युइन
1: के,
0: होती
1: झूठ
0: हैं, हाँ
1: बोलती
0: पहले
1: रहती
0: हम,
1: है। हाँ
0: जी, मान लीजिए अगर हमें पता चले कि कोई हमसे कुछ कह रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो
1: जी
0: पहले हम जांच पड़ताल करते हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब उनसे बोल मतलब बात करना, और उनकी जो भी अंदर की जो बातें हैं उनको निकलवाना कि क्या वो सही बोल रही हैं, आसपास में पूछना, उनके पड़ोस में,
1: जी
0: इस टाइप से, और उनसे मतलब उनका काफी वो सही बात रखें, और अच्छे लोगों में उनका मतलब उठना बैठना है या नहीं ये सब चीजें देखते हैं कि
1: हाँ
0: कहाँ
1: तब
0: मिल रहे हैं वो लोग, वो सब जानकारी लेकर तभी हम आगे के लिए उनको समझाते हैं।
1: जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो महिलाएं आपके पास आती हैं, आप उन्हें उनका सॉल्यूशन देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बहनें जो प्रोग्राम को सुन रही होंगी तो वो आपसे प्रेरणा लेंगी और बाहर निकल के अपनी जो उनका हुनर है ना, अपनी
0: जी मैम,
1: प्रतिभा को और उभारने की कोशिश करेंगी और खुद स्वावलंबी बनने में आपकी और सबकी मदद कर सकेंगी, है ना?
0: जी मैम,
1: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

बहनों, आज इस जो बिजी लाइफ में, आजकल जो बिजी लाइफ हो गई है इतनी ज़्यादा, इस समय शायद ही कोई ऐसा होगा जो स्ट्रेस फ्री हो। हमारी जो मन की स्थिति होती है और जो भी कंडीशंस होती हैं उनके बीच में जो भी डिसबैलेंस हो जाता है, उसी की वजह से स्ट्रेस या फिर तनाव पैदा होता है। और बहुत बार हमें अपने वर्किंग प्लेस पर जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो हर पल यही स्ट्रेस दिमाग में बनता रहता है। ज़रा सी गलती पर बॉस हमें नौकरी से ना निकाल दे, अगर हमारे वर्किंग प्लेस का स्टाफ अच्छा नहीं है, तो कॉपरेशन नहीं है, तो भी हमें बहुत टेंशन हो जाती है। मतलब टेंशन चाहे घर में रहें या बाहर रहें, किसी ना किसी रूप में हमारे दिमाग में सारी बातें चलती रहती हैं और जो स्ट्रेस का रूप ले लेती हैं। इसलिए अपने वर्किंग प्लेस पर भी आप अगर अपना काम परफेक्ट रखते हैं, तो फिर आपको स्ट्रेस या टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बॉस को भी मालूम रहता है कि कौन चापलूसी में लगा रहता है और कौन अपने काम में ध्यान लगाता है। इसलिए इस तरीके के टेंशन से, तनाव से बिल्कुल मुक्त रहें। और बहुत बार हमें टेंशन, स्ट्रेस ऑफिस की वजह से नहीं, बल्कि घर के कलह क्लेश से भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। आत्मविश्वास की कमी, खुद के बारे में नेगेटिव थॉट्स और किसी से हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसलिए बिल्कुल भी आप टेंशन में ना रहें, परेशानी में ना रहें, क्योंकि अगर आप परेशान रहते हैं तो जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो घटने के बजाय बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा शांत मन से कोई भी काम करें और स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि अगर स्ट्रेस हमारे अंदर है तो बहुत सारी बीमारियों का भी कारण बनता है। और सबसे बड़ी चीज़ है हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी तरीके की टेंशन है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए टेंशन फ्री होकर काम करें और अपनी लाइफ को एन्जॉय करें।

बहनों, बारिश के मौसम में इन्फेक्शन और बीमारियों से बचने के लिए साफ़ सफाई, खान पान और मच्छरों से बचाव का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा साफ़ या उबालकर ठंडा किया हुआ पानी ही पिएं ताकि पेट के इन्फेक्शन और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। सड़क के किनारे मिलने वाले या स्ट्रीट फूड से बचें। जंक फूड, कटे हुए फल, इन सभी को अवॉइड करें। हमेशा ताज़ा, हल्का और गर्म खाना खाएं। बासी या खुले में रखा हुआ खाना बिल्कुल भी ना खाएं और अपनी डाइट में अदरक, हल्दी, तुलसी गिलोय और विटामिन सी से भरपूर

फल नींबू संतरा ज़रूर खाएं, और खाने से पहले और बाहर से आने के बाद साबुन से अच्छी तरीके से हाथ ज़रूर धोएं। घर को सूखा और साफ रखें, गीले कपड़ों को तुरंत सुखाएं और ज़रूरत पड़ने पर आयरन कर सकते हैं आप उन्हें। आप घर के आसपास गमलों, टायर या कूलर में पानी इकट्ठा बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि यहाँ अगर पानी इकट्ठा होता है तो मच्छर पनपते हैं और वो डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ाते हैं। सोते समय आप मच्छरदानी लगाकर सोएं और मच्छरों को बाय बाय ज़रूर बोलें। और अब समय है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए शिल्पी चौधरी को इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार 100.4 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजे हैं और अब समय होता है कार्यक्रम युववाणी का।

नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार, आप सभी का स्वागत करती है आपकी दोस्त प्रज्ञा पाठक आपका आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? कहीं पढ़ाई का टेंशन, कहीं नौकरी की तैयारी का टेंशन, कहीं किसी को अपने सपनों की चिंता, और कहीं कोई चुपचाप किसी के मैसेज का इंतजार कर रहा है। लेकिन आज आधे घंटे के लिए सारी टेंशन को थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये वक्त हो गया है आपका और हमारा। लेकर आए हैं हम आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आप बताइए आज का दिन आपका कैसा जा रहा है? देखिए, मौसम भी आजकल अपना मूड बिल्कुल युवाओं जैसा कर रहा है। कभी धूप हो जा रही है, कभी बादल और कभी बारिश। लगता है कि मौसम भी कह रहा है भाई मैं भी कंफ्यूज हूँ। लेकिन दोस्तों, मौसम चाहे जैसा भी हो, अपना मूड अच्छा रखना हमारे हाथ में है। ये तो देखिए हम सभी के हाथ में है कि हम अपना जो मूड है उसको हमेशा अच्छा रखें, अपने आप को खुश रखिए। और कभी अगर किसी वजह से आप सैड भी हो तो जाके अच्छी अच्छी बातें सुनिए, क्यों जाना है हमारा प्रोग्राम सुन लीजिए, आपका मूड कर देंगे ना एकदम बढ़िया सा, और टेंशन हो जाएगी एकदम चूमंतर। चेहरे पे मुस्कान रखिए, दिल में अरमान रखिए, जिंदगी छोटी सी है दोस्तों, इसे खुलकर जीने का सामान रखिए। तो दोस्तों, अब आ रहा है आपके लिए आज के प्रोग्राम का ये प्यारा सा सॉन्ग। सुनते रहिएगा साथियों युववाणी।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: तो दोस्तों वापस आ गए हम, अब बात थोड़ी दिल की होगी। देखिए युवा होना सिर्फ एक उम्र का नाम नहीं है, युवा होना मतलब कुछ नया सोचने की हिम्मत, गिरकर फिर उठने की ताकत और अपने सपनों पर भरोसा रखना। कई बार हमें लगता है कि हमारे दोस्त हमसे आगे निकल गए हैं, किसी की नौकरी लग गई है, किसी का एडमिशन हो गया है, किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, हम सोचते हैं मैं कहाँ रह गया। आज बस एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी कोई रेस नहीं है, आपका रास्ता आपका है। किसी और की स्पीड को देखकर अपनी मंजिल पर शक मत कीजिए। देर से सही मगर मंजिल मिलेगी जरूर, देर से सही मगर

मंजिल मिलेगी जरूर, तू अपने हौसलों को कम मत होने देना। और हाँ, असफलता से डरना नहीं है, क्योंकि असफलता ये नहीं कहती कि आप खत्म हो गए, वो सिर्फ इतना कहती है एक बार और कोशिश करो, इस बार कुछ नया सीख कर। तो अगर आज कोई युवा मेरी आवाज सुन रहा है और सोच रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तो मैं उससे यही कहूंगी, एक बार खुद से कहिए, होगा, बिल्कुल होगा, और मैं ये करके दिखाऊंगा। जैसे हम करके दिखाएंगे, आपका एंटरटेनमेंट आ रहा है अभी प्यार की धुन से, एक और प्यारा सा सॉन्ग।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट

0: बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
1: चलिए युवा साथियों, आज हमारे साथ एक और युवा साथी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिन्होंने अपने करियर में काफी कुछ अचीव किया है। इनसे बात जानना चाहेंगे। पहले मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी थी स्पोर्ट्स में, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स की टीचर है और खेल की अनुदेशक है, बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाती है। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि कहाँ से है और कौन से स्कूल में सिखाती है ये। क्या नाम है आपका?
2: मैम, मेरा नाम सुनीता सिंह है और मैं।
1: नमस्कार आपको।
2: नमस्ते।
1: हाँ, तो अब आप बताएंगे कौन से स्कूल में?
2: मैं इस समय चुराई जलपतपुर वीरगंज बरेली में कार्यरत हूँ और यहाँ अपने विद्यालय के सभी बच्चों के लिए खेल के साथ साथ मार्शल आर्ट भी सिखाती हूँ।
1: आप बच्चों को स्पोर्ट्स सिखा रहे थे, तभी मैंने सोचा कि आपसे बातचीत की जाए। जी
2: जी, बताइए। हाँ जी, तो इस सरकार के द्वारा कार्यक्रम चल रहा है आत्मरक्षा प्रशिक्षण का, क्योंकि बालिकाओं पर और हमारी बहन बेटियों पर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, जो भी इनका शोषण हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे योगी जी ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण कंपलसरी कर दिया है बालिकाओं के लिए। तो सभी जूनियर विद्यालय की जितनी 6th-7th की जो बालिकाएं हैं, उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसमें मैं अपने विद्यालय के साथ साथ ब्लॉक के अन्य विद्यालयों में जाकर भी बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का भी कार्य करती हूँ।
1: अच्छा, आप उन लोगों को भी ट्रेनिंग देती हैं किसी और स्कूल में जाके? अच्छा,
2: और स्कूलों में।
1: सुनीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जैसे स्पोर्ट्स में अनुदेशक हैं, तो आपने क्या किया है स्पोर्ट्स में जाने के लिए? कई सारे लोगों की काफी रुचि होती है स्पोर्ट्स में जाने के लिए, तो क्या आप हमें प्लीज बताना चाहेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है?
2: हाँ जी, हाँ जी मैम, क्यों नहीं। मैंने वैसे तो हिंदी और संस्कृत से मास्टर डिग्री की है, किंतु मेरी फिजिकल में रुचि थी इसलिए मैंने बाद में BPED किया है।
1: अच्छा।
2: बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन से मैंने BPED की डिग्री हासिल की है।
1: सुनीता जी, ये डिग्री आप 12th के बाद भी ले सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी ले सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद? ये क्या, इसका क्या क्राइटेरिया है?
2: ये हम ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हैं।
1: अच्छा, ठीक है। तो ये एक तरह की, मतलब जिनको भी स्पोर्ट्स में जाना है, समझ लीजिए ग्रेजुएट हो जाएंगे आप।
2: जिस तरह से हम, जैसे पहले BEd चलता था, अब DLED चल रहा है, इसी तरह BPED डिग्री होता है गेम्स के लिए।
1: अच्छा, तो इसके लिए आपको किसी, मतलब कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको एंट्रेंस फॉर्म डालना है और आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा।
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: बिल्कुल, जैसे और चीजों का प्रोसेस होता है वैसे ही सेम इसका प्रोसेस।
2: जी जी जी
1: जी जी,
2: हाँ जी मैम।
1: फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जॉब मिल गई?
2: जी, वैकेंसी निकली थी, इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया है, लाठियां भी खाई हैं।
1: सही बात है, संघर्ष हमेशा रहता है।
2: हाँ जी मैम, काफी संघर्षों के बाद
1: जी
2: हम यहाँ तक पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार भी रहे।
1: नहीं सुनीता जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने या किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए उसके पीछे का संघर्ष बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सब लोग ये तो देख लेते हैं कि उसने वो मुकाम हासिल कर लिया, पर उस मुकाम में कितने पत्थर आए, कितने कांटे आए, वो सिर्फ उसी को पता होता है। उसकी मेहनत रंग लाती है आखिरकार। ठीक है सुनीता जी, आज आपसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं हमारे सारे ही युवा साथियों को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद आपका।
2: ओके, थैंक यू।
1: थैंक यू।
3: रास्ते मुश्किल हैं तो क्या, हौसले तो अपने पास हैं। आज थोड़ा कम सही, कल अपने सपने खास हैं। वेलकम बैक दोस्तों, अब चलते हैं हमारे आज के सबसे मजेदार और खास सेगमेंट पर, जहां दिमाग भी चलेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, हम चलते हैं चक्रव्यूह की तरफ और आज के जो सवाल हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इतने आसान भी नहीं है। जवाब देने होंगे आपको और जो जवाब देगा हम उसका नाम प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। पहला सवाल चक्रव्यूह से आ रहा है, 2026 में भारत में खेलो क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बजट में घोषित प्रमुख मिशन का नाम क्या है? अगला सवाल आपसे किया जाएगा, 2026 में सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या कितनी हुई है? अगला क्वेश्चन है, 2026 में भारत का पहला बुलेट चेस चैंपियनशिप जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बना? तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा। देखिए 2026 चल रहा है और हमारे युवा साथी जितने अपडेट रहते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथियों को

जरूर पता होगा। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, जोजिला टनल किन दो क्षेत्रों के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर आपको बताना है। अगर आपको पता है कि जोजिला टनल है कहाँ पर, पहले तो ये भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और किन किन दो क्षेत्रों के बीच में संपर्क मजबूत करता है। अगला प्रश्न है, 2026 में भारत के किस बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास में हिस्सा लिया? अगला सवाल है, भारत का साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है इसका जो आंसर है वो सभी को पता होना चाहिए। आजकल इतना क्राइम बढ़ गया है, साइबर को लेकर ऑनलाइन क्राइम इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है और जिसपे आप तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रव्यूह से 2026 में विश्व जूनियर स्क्वैश खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी बनी? अगर आपने इतने ज्यादातर सवालों के जवाब सही दिए हैं तो मानना पड़ेगा आपका दिमाग चक्रव्यूह में फंसता नहीं, चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है। तो साथियों, आपके सवालों के साथ साथ हम लेकर आए हैं हमारे पुराने प्रश्नों के उत्तर भी, जो हमने अपने से पिछले सेगमेंट में पूछे थे, और जिसमें पहला सवाल है हमारा, IUCN प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? जिसका उत्तर है 1948 में। उपन्यास कपाल कुंडला किसके द्वारा लिखा गया था? जिसका उत्तर है वंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न आपसे किया गया था, कैलाश मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? उत्तर है आगरा। ज्ञानेश्वरी देवी किस खेल से जुड़ी है? उत्तर है बॉक्सिंग। अगला सवाल आपसे किया गया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर है मनीला। अगला सवाल आपसे किया गया था, शेखा झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया वो यूपी के किस जिले में है? उत्तर है अलीगढ़। अगला सवाल किया गया है आपसे, हाल ही में एप्पल के नए CEO कौन बने? उत्तर है जॉन टर्नर्स। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे पुराने सेगमेंट में पूछे जाने वाले सवाल। अब चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ, क्योंकि दोस्तों अब माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाए, क्योंकि आ रहा है आपके लिए प्यार की धुन से ये प्यारा सा सॉन्ग। और प्यार सिर्फ किसी खास इंसान से नहीं होता, दोस्तों से भी होता है प्यार, अपने सपनों से भी होता है, अपने परिवार से भी होता है, अपने दोस्तों से भी होता है, और सबसे जरूरी खुद से भी होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है तो दुनिया की बहुत सी छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगती हैं। एक शायरी मैं बोलना चाहूंगी ये सॉन्ग स्टार्ट करने से पहले, कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ एहसास अल्फाज के मोहताज नहीं होते। दिल से निभाए जाए जो रिश्ते, दिल से निभाए जाए जो रिश्ते, वो कभी भी किसी मौसम के मोहताज नहीं होते। सुनेंगे आप ये प्यारा संगीत।

तो सो अब चलते हैं आज के सवाल पर, जहां हमने आपसे पूछा था कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है। इसका सही जवाब है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। और हमारे किन किन श्रोताओं ने आज के सवाल का सही उत्तर दिया है, धनौजी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, दिनेश कुमार वर्मा रंगीनी छत्तीसगढ़ से, नाज रेडियो क्लब करेली से, निसार अहमद अंसारी नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नवानकर, हीरामणि वर्मा दतरंगी बाटापारा से, राजवीर सिंह यादव, राजेश वर्मा, प्रवीण चौहान, नवी हसन अब्बासी मरहबा दरवाजा एटा से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, अनोखेलाल मौर्य, गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी से, सुदर्शन शाह पद्मा टॉकेज नेपानगर से, धर्मेंद्र झिम्पा राजस्थान से, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्केन ने, जमुना प्रसाद मौर्य पुराना शहर बरेली से, लाल मोहम्मद अंसारी ने। दोस्तों ये तो थे हमारे वो सभी श्रोता जिन्होंने आज के सवाल का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। दोस्तों देखिए अब वक्त हो चुका है आपसे आज के प्रोग्राम से विदा लेने का, लेकिन याद रखिएगा ख्वाब वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो नींद भी उड़ा देते हैं। अपने सपनों को छोटा मत होने दीजिए, गिरिए संभलिए और फिर चलिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी बाकी है। और अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम नहीं कर सकते तो मुस्कुराकर कहना देखते रहिए अभी कहानी बाकी है। इसी प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं प्रज्ञा पाठक आपसे लेती हूँ इजाजत। जाते जाते आपसे एक बात कहूंगी, उम्मीदों के दीप जलाए रखना अपने

सपनों को सजाए रखना, रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हो बस खुद पर विश्वास बनाए रखना। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सपनों के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे इसी आवाज में, इसी अपनापन के साथ। नमस्कार साथियों।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हुए हैं और कार्यक्रम ग्राम जगत लेकर हाजिर हैं स्टूडियो में हेडल पाल और किशन पाल।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में सब भैया बहन को अपने भैया हेडलपाल सिंह
1: और कन्हैया की ओर से
0: राम राम। सुनाओ कन्हैया, कैसे हालचाल है आपकी और खेती बाड़ी की?
1: देखो भैया, हालचाल बढ़िया है। और वहीं अगर खेती बाड़ी की बात करी जाए तो हक्कू भैया, इस समय देख रहे हो बारिश कितनी हुई है,
0: बहुत हुई है भैया।
1: और जब बारिश में हमारी गन्ना की, धान की बहुत सारी फसलें इस समय खेतन में खड़ी हुई है, उनको सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं समस्या पैदा हुई है।
0: बिल्कुल सही बात है। और
1: क्योंकि जो खलबट की फसलें हैं उनको ज्यादातर समस्या आ रही है। उपराले की जो फसलें हैं उनमें तो भैया पानी लगभग निकासी हो चुकी है, लेकिन जहां नीचे की फसलें हैं वहां पर दिक्कत हो रही है।
0: बिल्कुल सही बात है। अब सब फसलें कुछ खरार चहा रही हैं
1: जी,
0: कुछ उजनू हो जाए तो उनको अच्छी बढ़वार करने को मौका मिल जाएगा। करिए भैया, देखो आज कल आप जानते ही हैं कि हमारे देश की जो अधिकांश जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: है ना। तो इसीलिए हमारी सरकार ने भी बहुत सारी योजना चला रखी है अपने ग्रामीण विकास के लिए। उन्हीं में से एक मुख्य योजना है ग्राम पंचायत विकास योजना।
1: अच्छा, जामका का होता भैया?
0: इसमें गांव के विकास और इसमें गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बनाई जाती है योजनाएं बहुत सारी, जो वार्षिक और समावेशी योजना है।
1: भैया जहां आपने सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करी तो वहीं पर हमारे बहुत सारे ग्रामीण श्रोता हैं जो अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। सामाजिक से मतलब क्या है भैया, बता बच्चन? जो हमारे समाज की जरूरतें होती हैं
0: जी,
1: उनको सरकार के माध्यम से पूरा करने के लिए बड़ो हमारे ग्रामीण श्रोतन को सहयोग करो जा, और सहयोग करने के साथ साथ में भैया जो कुछ योजनाएं ऐसी भी होती हैं कि जिनमें बहुत सारी मदद हमारे ग्रामीण श्रोतन को मिल जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। ये योजना जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करती है
1: जी,
0: और इसमें ग्राम सभा के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होती है। खास तौर से इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। इसे सरपंच, पंच और ग्रामीण मिलकर तैयार करते हैं ताकि स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके
1: जी।
0: इसमें महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाता है।
1: भैया जहां पर सरपंच की बात आई तो गांव क्षेत्र में हमारे सभी ग्रामीण मिलकर एक अपनो मुखिया चुनते हैं जिसे सरपंच या ग्राम प्रधान कहते हैं।
0: बिल्कुल सही बात।
1: बाकी अध्यक्षता में सरकार ने अब जो नियम लागू कर दो है कि एक मासिक बैठक होती है, बामे गांव के जो खास खास लोग होते हैं और गांव की जो जरूरतें होती हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करी जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और इसके जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जोड़ा जाता है
1: जी।
0: आप जन योजना अभियान के माध्यम से इसकी पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और भैया जहां गांव पंचायत की आपने बात करी तो बहुत सारे जो हमारे ग्रामीण श्रोता हैं और आबादी बहुत सारी जो है वो गांव में निवास कर रही है, और आजकल देख रहे हो बारिश बहुत हो रही है।
0: बिल्कुल भैया। और बारिश लगभग देखो अब है तो समाप्ति की ओर, लेकिन कनागत बरस जाए तो बारिश कुछ लंबू समय हो जाएगा, लेकिन फिर भी भैया आजकल आप देख रहे हैं 2-3 दिन है गए बारिश कम है गई है। ऐसे में जो बीमारियां है ना बहुत ज्यादा पनपते हैं, संक्रामक रोग।
1: अच्छा, तो जब संक्रामक रोग की जहां बात आई गई है तो आपने, हम बात कर रहे हैं ग्रामीण विकास में जो योजनाएं होती हैं गांव पंचायत की बागे संगत में, लेकिन जो संक्रामक रोग की बात आपने कहां से कर दी?
0: अरे भैया बरसात समय आज हम वहां अस्पताल गए ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां इतने मरीज है कि भैया मोटरसाइकिल खड़ी करने को जगह ना मिल रही।
1: तो काउ से बात करी इस संबंध में आपने?
0: बिल्कुल बात करी हमने। संक्रामक रोगों की असली वजह है क्या?
1: अच्छा,
0: संबंध में

0: डॉक्टर राहुल कुमार मिल गए हमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मजगवा बरेली में।
1: अच्छा, जब हम आए तो भाई बातचीत चल रही
0: है। हाँ, हाँ,
1: तो भैया देर ना करते भाई, अब राहुल कुमार ने जो हमारे क्षेत्र में संक्रामक रोग होते हैं उनके बारे में बताइए, अपने श्रोताओं को सुनवाई दो।
0: बिल्कुल,
2: श्रोताओ, प्रतिदिन क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत से अवगत कराते हैं और आज भी हम पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मजगवां बरेली में। और यहां पर जानते हैं कि इस समय बरसात के बाद आप और हम सब ये जानते हैं कि बहुत सारी जो संक्रामक रोग हैं उससे सभी लोग ग्रसित होते हैं, तो क्या कारण रहता है इन दिनों में संक्रामक रोगों के फैलने का और किस तरीके से हम उन संक्रामक रोगों से बचाव करने के हम क्या उपाय कर सकते हैं और किस तरीके से इन संक्रामक रोगों से बच सकते हैं, इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका शुभ नाम?
3: डॉक्टर राहुल सिंह।
2: डॉक्टर राहुल सिंह जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इन्हीं दिनों में ये जो संक्रामक रोग हैं सबसे ज्यादा क्यों फैलते हैं?
3: जैसे कि आप लोग जानते हैं बरेली में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है इस समय
2: जी,
3: तो संक्रामक रोग इसी वजह से ज्यादा फैलते हैं जब बारिश ज्यादा होती है
2: जी,
3: क्योंकि जो गीले मौसम में मच्छर कोई भी कीटाणु वगैरह जो हैं वो ज्यादा पैदा होते हैं
2: जी,
3: और उनकी तादाद भी बढ़ती है इसी वजह से, क्योंकि वो नमी वाली जगहों पर रहते हैं
2: जी,
3: जहां पानी इकट्ठा होता है, जैसे मच्छरों से बीमारियां जितनी होती हैं वो सब भी इसी वजह से, क्योंकि इसी मौसम में सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा इस समय होता है
2: जी,
3: तो संक्रामक रोग फैलने का यही कारण होता है कि पानी सब जगह है, सब लोग पीते हैं, खाते हैं, हर घर में होता है पानी, स्टोर भी होता है कई जगह, जैसे हम लोग स्टोर होता है हम लोगों को पता भी नहीं होता है घर में
2: जी,
3: कि हम लोग जानकारी भी देते हैं इसीलिए कि आपके फ्रिज, जैसे घर में फ्रिज है, मतलब आप ग्रामीण इलाकों में भी अवेलेबल है ये चीजें, तो फ्रिज है, फ्रिज के पीछे पानी भरा पड़ता है आपका, उस पानी में मच्छर के लार्वा पैदा होते हैं।
2: अच्छा,
3: हम लोगों ने गाँव में देखा भी है, जैसे हम लोग संचारी वगैरह चलता है, संचारी चलता है तो उस अभियान में हम लोग देखते भी हैं ये चीजें, चेक हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं हम, ये चीजें हमें यही है कि हमें इस टाइम पे यही से चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि मच्छरों से जितना हो सके उतना बचें
2: जी। देखने में आता है कि सभी जगह एक तो खरपतवार भी बहुत ज्यादा उगते हैं
3: जी,
2: और पानी भी, जल भराव भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसी कारण से जो बहुत सारे कीटाणु हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं और भी अन्य विषैले कीट पतंगे हैं जो बहुत ज्यादा पनपते हैं और इन्हीं के काट लेने से अधिकतर संक्रामक रोग वो बहुत ज्यादा फैलते हैं। तो इस समय किस तरीके के जो मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य केंद्र में सबसे अधिक आ रहे हैं?
3: इस समय सबसे ज्यादा मरीज बुखार
2: जी,
3: खांसी, जुखाम और डायरिया, लाइक लूज मोशन, दस्त वगैरह जैसे होते हैं ना
2: जी,
3: क्योंकि गंदा पानी होता है इस समय
2: जी,
3: पानी की गंदगी की वजह से ये लूज मोशन के केसेस भी सबसे ज्यादा आते हैं इस समय, पेट दर्द होता है अचानक से उस वजह से, खाने में जो इन्फेक्शन फैलता है पानी की वजह से उससे ये बीमारियां ज्यादा फैलती हैं
2: जी,
3: तो इस समय सबसे ज्यादा मरीज उन्हीं केसेस है, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, इसी के हैं सबसे ज्यादा।
2: डॉक्टर राहुल जी, हम एक बात जानना चाहेंगे कि इस समय एक सुनने में और भी आ रहा है कि एक जो वायरस है जिसको N1 और H1 के नाम से जानते हैं, इसका प्रकोप भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये किस तरीके का वायरस है और किस तरीके से ये मनुष्यों में पहुंचता है और क्या इसके लक्षण होते हैं?
3: H1N1 अभी हमें थोड़े दिन पहले इसके बारे में बताया भी गया था
2: जी,
3: मीटिंग भी हुई थी हमें, मतलब ट्रेनिंग हुई थी एक इसके लिए ही
2: जी,
3: तो उसमें हमें बताया भी गया था कि ये H1N1 की सारी जानकारी दी गई थी उस समय, तो H1N1 ये अभी फैलना शुरू हुआ है, जैसे कि देश में धीमे धीमे केस बढ़ भी रहे हैं इसके
2: जी,
3: तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें पहचानना है हमें कि
2: अच्छा,
3: कैसे हम पहचानेंगे कि H1N1 है, क्योंकि हमें बुखार वगैरह जनरली इस समय सबसे ज्यादा केसेस उसी के आते हैं, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, तो इसमें मरीजों को पहचानने का तरीका यही है कि अगर किसी मरीज को 102 डिग्री, मतलब 100 से ऊपर मान लीजिए आप, लगभग 102 डिग्री के आसपास 10 दिन तक लगातार कंटिन्यूअस फीवर रहता है, नाप के चेक करके तब
2: जी,
3: ऐसा नहीं 3-4 दिन हुआ फिर बंद हो गया, ये नहीं, विदाउट गैप, बिना गैप के 10 दिन तक लगभग बीमारी ये बुखार रहे 102 डिग्री, तो उसको हम कहेंगे कि ये H1N1 का केस है, मैक्सिमम यही वो मानते हैं कि इस केस के लिए हमें सबसे ज्यादा यही लक्षण देखना है
2: जी।
3: वैसे तो खांसी, जुकाम, बुखार और सांस फूलना भी होता है, लेकिन वो धीरे धीरे धीरे बढ़ता है, 10 दिन के बाद बढ़ना शुरू होता है वो
2: जी।
3: तो ये चीजें हमें नोट करनी है हमेशा कि अगर कोई लंबे समय तक बुखार का कोई मरीज है आपके आसपास भी घर में भी, तो उसको तुरंत आपने पास में जो अस्पताल पड़ रहा है उसमें जाके जांच कराएं उसकी
2: अच्छा,
3: और चेकअप कराएं, और क्या कहते हैं ये फैलता है एक दूसरे से, खांसी
2: अच्छा,
3: जुकाम की जैसे हमारा कोविड था ना, कोविड वायरस वैसे ही फैलता है बिल्कुल खांसी जुकाम से, तो इसलिए जैसे ही H1N1 के कोई मरीज मिलता है हमको
2: जी,
3: उसको हम पहले अलग करेंगे उसको बिल्कुल परिवार से,
2: स्वस्थ लोगों से।

0: बाकी स्वस्थ लोगों से, परिवार के सभी स्वस्थ लोगों से अलग करेंगे और जो बाकी परिवार के लोग उसके साथ थे उनका भी चेकअप कराएंगे
1: जी।
0: इस चेकअप के लिए हमारे यहाँ अब सुविधा उपलब्ध हो गई है, डिस्ट्रिक्ट पे इस समय चेकअप हो रहे हैं।
1: अच्छा।
0: जो भी केस हम लोगों को डाउटफुल लगता है तो हम यहाँ से वहाँ के लिए रेफर करते हैं, चेकअप वहीं होता है
1: जी।
0: चेकअप वैसे ही होता है जैसे कोविड में होता था, वो हम मुंह का वो लेते हैं स्वैब, माउथ स्वैब और नेजल स्वैब दोनों लेते हैं हम लोग, वो हम लोग भेजते हैं अभी भी
1: जी।
0: तो उसकी जांच यही है
1: जी। इस समय ऐसे लोगों के लिए H1N1 और H1 वायरस से जो प्रभावित हैं, ऐसे लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ऐसे में जो किसी को ना फैले?
0: जैसे हम कहते हैं कि जो आसपास से फैलती हैं वो बीमारियां, उनके लिए हमें ये नोटिस करना चाहिए कि एक तो भीड़ वाली जगह पर ना इकट्ठे हम लोग, कोशिश ये करें कि सेपरेट जगह पे जाएं, और अगर भीड़ वाली जगह पे जा भी रहे हैं तो मुंह को ढकने की कोशिश करें, मास्क का जैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं तो ये वही दूरियां रखनी हमें, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना दूरी बना के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा इस चीज के लिए, यही सावधानी हमें रखनी है इस समय।
1: कन्हैया भैया, आपके मन में अभी कोई ऐसा विचार आ रहा है, कोई प्रश्न आ रहा है जो इस समय डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं?
2: बहुत सारी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे ग्रामीण श्रोताओं को दी है, लेकिन जानकारी के अभाव में, चूंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारी आबादी जो है वो गाँव में निवास करती है, वहीं पर उनकी सुविधा के लिए हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है हर ब्लॉक स्तर पर अब हैं और पूरी सारी टीम वहाँ पर रहती है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के उपचार के लिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि H1 और वो किस तरीके से प्रभावशाली होता है और कहाँ पर उनको सजगता बरतनी है, वहीं पर अगर किसी को हो जाता है तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा वो कितने समय तक आपके पास आ सकता है और उसके जो विधि आपने बताई है उपचार की वो उसको कितने समय में जल्द से जल्द लेनी चाहिए?
0: मैं यही बता रहा हूँ कि उसमें जब जैसे ही आपको लगता है कि हाँ 10 दिन से ऊपर बुखार को हो गया है मुझे
1: जी,
0: तुरंत चेकअप कराएं, तुरंत आके डॉक्टर को दिखाएं, सबसे पहले वहाँ लोकल डॉक्टरों को दिखाने से अच्छा आप तुरंत आके डॉक्टर को दिखाएं, वेल एजुकेटेड मतलब MBBS डॉक्टर को दिखाएं कम से कम जाके, वहाँ पे लोकल में ना दिखाएं, लोकल में दिखा के क्या लोग अपनी हालत बिगाड़ लेते हैं इसी चक्कर में, तो तुरंत जाके अपने पास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, आपके सब सेंटर है, अब आपके पास हर गांव में सब सेंटर है, वहाँ CHO उपलब्ध है, आप उनको दिखाएं, आपको अगर ये प्रॉब्लम लगती है वो हमारे पास भेजेंगे, CHC पे भेजेंगे, PHC पे भेजेंगे, जहाँ भी भेजेंगे, CHC पे 24 घंटे उपलब्ध है यहाँ पे डॉक्टर आपके पास, तो आप किसी भी टाइम भेजें उसको, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि हाँ इसको बुखार को इतने दिन हो गए हैं आप तुरंत हमारे पास भेजें, हम उसको चेक करेंगे, चेकअप करेंगे, भर्ती की जरूरत होगी तो हम उसे भर्ती भी करेंगे, रेफर की जरूरत होगी तो हम उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर भी करेंगे
1: जी। कन्हैया जी, देखिए आपने भी बहुत अच्छा प्रश्न किया और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों के लिए, तो ये जो सावधानियां यदि हम बरतेंगे तो संक्रामक रोगों से भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने जो परिवार है वो भी स्वस्थ रहेगा, तो बहुत सारी अच्छी जानकारी आज कार्यक्रम के माध्यम से पहुंची है श्रोताओं तक। डॉक्टर साहब, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।
3: हक्कू भैया, देखो अभी जो डॉक्टर राहुल कुमार है इनने बहुत अच्छी तरीका से हमारे ग्रामीण श्रोतन को बताओ हो कि जो संक्रामक बीमारियां हैं उनसे कैसे बच सकते हैं और खासकर H1N1 के लिए भी क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं और कितने समय तक जो बुखार रहा है तब हम संभावना कर सकते हैं कि H1 और N1 से हम संक्रमित हो चुके हैं।
1: बिल्कुल भैया, और करिए भैया अब कार्यक्रम में थोड़ा सा गीत संगीत की बात हो जाए।
3: गीत संगीत की बात जहाँ आपने करी तो हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, वे भैया सोच रहे होंगे कि अब कुछ गौण ही बजनी हो जाती।
1: बिल्कुल, तो सुन लेते हैं जे समूह स्वर में मधुर लोकगीत। इसके लिए कुछ सोशल मीडिया संदेश भी मिले हैं हमको।
3: आप हैं लिख के भेज रहे हैं भैया?
1: आप हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से। आप हैं ग्रामबा पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, ऋचा यादव, शिखा यादव, साथ में हैं राजेश कुमार।
3: और आप हैं नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी, लक्ष्मी देवी और जोगेशपुरी, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।
1: आप हैं ग्राम दूरीनगर जिला बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, विभु, आदर्श, आदित्य, कुमकुम, निव्या, सरता और अंतिमा।
3: ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से हमें लिख करके भेज रहे हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव और इनके समस्त परिवारीगण। तो इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुन लेते हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हकू भैया, जहाँ पर गौनी बजने की बात कर ली, बात है पहले हमने बड़े लोगों की जो संक्रामक बीमारियां हैं उसके संबंध में अपने श्रोतन को जानकारी दिलवाई। देखो, ग्रामीण परिवेश में बड़े लोगों के साथ साथ में छोटे जो हमारी नन्नी मुन्नी फुलवारी है, जिन्हें हम छोटे मोटे बच्चा कहते हैं, उनकी सुरक्षा की बात न करी का उसे काज?
2: बिल्कुल करिए भैया। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा की भी बात करी है, जो धात्री महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा की भी बात करी है, जो नन्नी मुन्नी फुलवारी आप कह रहे हो इसकी भी आज हमने बातचीत की है। कहाँ पता है आपको
1: कहाँ करी?
2: वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा बरेली में।
1: अच्छा,
2: वहाँ बाल विकास परियोजना अधिकारी मिली हमें।
1: अच्छा, मीनू जी।
2: हाँ,
1: उनसे आपकी बातचीत जाई संबंध में चल रही ही।
2: हाँ,
1: तो कोई बात नहीं, देखो थोड़े से मौको हमें मिलेगा तो कुछ बात हमने उनसे पूछी जब। अच्छा? आपकी बातचीत चल रही ही वहाँ, तो अब अपने श्रोता को सुनवा दे।
2: बिल्कुल।
3: क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं, हम आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी कार्यक्रम में लेकर के आते हैं, और आज भी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। कन्हैया भैया, इस समय आज हम पहुंचे हैं बाल विकास कार्यालय
4: जी
3: परियोजना अधिकारी महोदय जी के यहाँ। जानते हैं आज विस्तार से कि इस समय बरसात के बाद बहुत सारी संक्रामक बीमारियां भी फैलती हैं, और अपने जो परिवार में किलकार मारती हुई जो फुलवारी होती है, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनको किस तरीके से अधिक स्वस्थ रख सकते हैं, और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी किस तरीके से देखरेख की जा सकती है। तो मैडम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आप यहाँ पर क्या हैं?
5: मैं यहाँ पे बाल विकास परियोजना अधिकारी हूँ
3: जी। आपका शुभ नाम?
5: मेरा नाम मीनू सिंह है
3: जी। इस समय हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय क्या क्या अभियान चल रहा है आपके कार्यालय के माध्यम से, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और किस तरीके से उनकी मदद की जा रही है?
5: अभी तो पिछले 3 महीने से 1 जुलाई से सितंबर तक हमारा संभव अभियान चल रहा है
3: जी।
5: तो इसमें हमने देखा था, जब जुलाई में शुरुआत हुई थी तो उस समय हमने मातृत्व पोषण पे विशेष ध्यान दिया था
3: जी।
5: मातृत्व पोषण में, क्योंकि कहते हैं ना कि जब माँ ही स्वस्थ होगी तभी वो स्वस्थ शिशु को जन्म दे पाएगी।
3: सही बात।
5: क्योंकि बच्चे का विकास माँ के गर्भकाल में ही शुरू हो जाता है। तो अभी अभी हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ, जो माननीय सीएम मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो पुष्टाहार पहले हमारे यहाँ आता था वो यही दाल और दलिया
3: जी।
5: और ये रिफाइंड, मतलब फैट के लिए रिफाइंड देते थे, तो उन्होंने अभी ये सब चेंज कर दिया है।
3: अच्छा।
5: अभी रेसिपी आधारित दिया है, इसमें मतलब पौष्टिक, बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है।
3: अच्छा।
5: अगर उसमें रेसिपी भी लिखी हुई है उस तरह से, अगर गर्भवती माएं उसको बना करके खाएंगी, अपने बच्चों को खिलाएंगी, तो कुपोषण जो उन्होंने बताया 2047 तक खत्म करना है, तो कुपोषण मुक्त भारत
3: जी,
5: हमारा कुपोषण मुक्त भारत हो जाएगा
3: जी। अभी आपने जो रेसिपी बताई है कि वो दी जा रही है, उसमें कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं विद्यमान?
5: इसमें हमारी ये 7 तरह के लाभार्थी रखे हैं और 10 तरह की रेसिपी रखी है।
3: अच्छा।
5: तो वो उसमें मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगी। इसमें लाभार्थी है, जो पहला लाभार्थी है वो गर्भवती एवं धात्री माताएं।
3: अच्छा।
5: गर्भवती महिला और धात्री माताएं, इनको हम देते हैं आटा बेसन सोया बर्फी, जो कि स्वाद में मीठा होता है। उसके अलावा मूंग दाल खिचड़ी देते हैं जो नमकीन होता है। तो ये जो आटा बेसन बर्फी है, जो प्रतिमाह 2 पैकेट देते हैं।
3: अच्छा।
5: और जो मूंग दाल खिचड़ी है वो भी प्रतिमाह 2 पैकेट देते हैं।
3: अच्छा।
5: और इसकी रेसिपी भी उसी जो पैकेट आता है उसी पैकेट पे पूरी लिखी हुई होती है
3: जी।
5: उसको उसी अनुसार बनाएंगे तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, जो पुराना हमारा पोषाहार आता था उससे काफी ज्यादा स्वादिष्ट है और पोषण युक्त है। अगर गर्भवती माताएं उसको 9 महीने तक लेती हैं

0: तो उनका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पैदा होगा
1: जी, उनको
0: स्वयं भी स्वस्थ रहेंगी। फिर जब वो धात्री में आती हैं, 6 महीने तक बच्चों को दुग्धपान कराती हैं, तब भी 6 महीने तक उनको लेना होता है।
1: अच्छा।
0: जिससे कि वो माता अपना स्तनपान कराती है बच्चे को, तो वो भी कुपोषण मुक्त होता है और माता को भी किसी तरह का कुपोषण नहीं होता है। तो लेना चाहिए, मेरी तो यही राय है आप सभी होने वाली नई माताओं से। और जो माताएं
1: ये जो नई माताएं
0: अभी बनने वाली हैं, उन सबसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि वो इस रेसिपी को जरूर लें
1: जी।
0: जिस तरह से बताया गया है, पैकेट पे दर्शाया गया है, उसी अनुसार वो उसका सेवन करें
1: जी।
0: जिससे वो स्वस्थ रहें और स्वस्थ उनका मतलब शिशु भी उनका स्वस्थ रहे
1: जी। अधिकतर देखने में आता है कि जो माताएं होती हैं, शिशु का जन्म होने के बाद स्तनपान नहीं कराती हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है स्तनपान कराना बच्चे के लिए?
0: देखिए, स्तनपान तो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। जो जन्म के 1 घंटे के भीतर गाढ़ा पीला दूध निकलता है माँ का, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो तो बच्चे को पहला टीका होता है। वो तो बिल्कुल ही मिस नहीं होना चाहिए। जन्म के 1 घंटे के भीतर गाढ़ा पीला दूध हर माता को अपने बच्चे को पिलाना चाहिए, जिससे उस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और 6 माह तक बच्चे को केवल स्तनपान ही कराएं
1: जी।
0: उसके अतिरिक्त बच्चे को पानी भी ना दें
1: जी। किस तरीके से आपकी जो टीम है वो गांव में कार्य करती है, जो गर्भवती महिलाएं उनकी किस तरीके से पहचान करती है और किस तरीके से उनकी देखरेख गांव में की जाती है?
0: ग्रामीण स्तर पर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें होती हैं और उनकी सहायता के लिए सहायिका बहनें होती हैं। तो वो उनका काम रहता है कि वो घर घर जाती हैं।
1: अच्छा।
0: वो चिन्हांकन करती हैं कि कौन सी महिला मतलब गर्भवती हुई है, तो उसका एक पोषण ट्रैकर एक ऐप आता है, एप्लीकेशन आती है
1: जी।
0: तो एप्लीकेशन के माध्यम से वो उसका रजिस्ट्रेशन करती हैं, फेस कैप्चर करती हैं, हर माह फिर उनको पोषाहार देती हैं। माह में एक बार दिया जाता है, हर माह उनका उनको पोषाहार देती हैं। और ANC जांचें होती हैं जो 3-3 महीने पे होती हैं। स्टार्टिंग में तो 1-1 महीने के बाद होती है, फिर उसके बाद 3-3 महीने पे होती है। उनकी 4 ANC जांचें भी करवाती हैं, जिसमें उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है, उसको भी पोषण ट्रैकर पे फीड किया जाता है। और उनको जब तक वो गर्भवती रहती हैं 9 महीने, तब तक उनको पोषाहार दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही वो धात्री में प्रवेश करती हैं, तब भी उनको 6 माह तक पोषाहार दिया जाता है
1: जी। करिए भैया, आपके मन में अभी कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है जो इस समय मीनू जी से पूछ सकते हैं?
2: जी, अभी मैडम ने हमने बातचीत शुरू की थी, तब मैडम ने बताया था कि कोई बीमारी जो कि जुलाई से ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी नन्नी मुन्नी फुलवारी है उसकी सुरक्षा के लिए 1 सितंबर तक चलाई जाएगी। अगर उसकी गाँव क्षेत्र में जानकारी के लिए प्रचार प्रसार का क्या संसाधन है, किसके माध्यम से गांव के लोग जो होते हैं कम जागरूक होते हैं, तो किस माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनकी बीमारी के लिए? अभी समय है, सितंबर तक चलना है, तो जो लोग उस जानकारी से जागरूक हो चुके हैं और जो अभी भी नहीं है, तो उनको जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है आपके माध्यम से, मैं ये जानना चाहता हूँ अपने श्रोताओं के लिए।
0: हमारे माध्यम से यही प्रयास किया जा रहा। हमने शुरुआत में ही जुलाई के महीने में ही अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों और सहायिका बहनों को ट्रेनिंग दी थी कि वो घर घर जाएंगी और संभव अभियान के बारे में बताएंगी जाके
1: जी।
0: तो उसमें जुलाई में तो हमने गर्भवती माताओं पे विशेष मात्रा तो पोषण पे विशेष ध्यान दिया था
1: जी, जी।
0: उसके बाद अगस्त में हमने 0 से 6 माह वाले जो बच्चे हैं उन पे विशेष ध्यान दिया कि उनको हम चिन्हांकन करते हैं उनका। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो हमारी एक रणनीति है 6 माह में 7 बार, तो 6 माह में 7 बार रणनीति ये होती है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और वहाँ की जो आशा बहन जी हैं वो दोनों मिलकर उस बच्चे के यहाँ जाएंगी, उनका वजन लेंगी और मतलब देखती हैं अगर बच्चा कुपोषित है
1: जी।
0: तब तो पहले तो 6 माह 7 बार रणनीति में ये आता है कि पहले वो जाएंगी बच्चे को पहले हफ्ते में चेक करेंगी जाके, फिर उसके बाद जाती हैं, जन्म लेती हैं बच्चे का, उसमें फीड करती हैं, फिर उसके बाद जाती हैं 15 दिन का, जब बच्चा 2 हफ्ते का हो जाता है तब जाती हैं, वो बच्चे का जन्म लेती हैं और उसको बताती हैं, माँ को उसकी जो सही सलाह देती हैं बच्चे को किस तरह से स्तनपान कराना है वजन के अनुसार। उसके बाद 1.5 महीने पे जिस तरह से Penta-3 के टीके लगते हैं, 1.5 महीने पे लगता है और 1.5 महीने पे लगता है, 1.5 महीने पे लगता है, तो 3रा भ्रमण हो जाता है उनका 1.5 महीने पे, 4था भ्रमण हो जाता है 2.5 महीने पे और 5वां भ्रमण हो जाता है 3.5 महीने पे, और उसके बाद जो 6ठा भ्रमण है वो हो जाता है 4 महीने पे। ये हमने बनाई है 6 माह में 7 बार रणनीति। तो उस रणनीति के दौरान अगर कोई बच्चा कुपोषित मिलता है तो वहीं गांव में हमारी ANC

0: बहन जी के माध्यम से टीकाकरण का आयोजन होता है, महीने में एक बार होता है, कभी कभी जैसे तो वैसे तो पहले बुधवार पहले शनिवार को होता है। अगर छूट जाता है किसी कारणवश, कोई एनएम बहन जी छुट्टी पे होती है, नहीं पहुंच पाती है कोई असुविधा की वजह से, तो फिर वो चौथे बुधवार या चौथे शनिवार को होता है। तो हमारी आंगनबाड़ी बहन जी और ये आशा बहन जी मिलके ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करती हैं, उनको वहीं बीएचएस चंडी सत्र पे लाती हैं, छह प्रकार की दवाइयां आती हैं तो उनको वो दवाइयां दी जाती हैं और हर महीने उनका फॉलो अप लिया जाता है, फीड किया जाता है दवाइयां देने के बाद। अगर बच्चे में सुधार हो रहा है तो ठीक है, वो देखती हैं वही मतलब छह महीने में सात बार गणित में। अगर बच्चे में सुधार नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एनआरसी केंद्र है, पुनर्वास केंद्र, तो बच्चे को वहां भर्ती करवाया जाता है। वहां 14 दिन का कोर्स होता है, उस दौरान बच्चे को पूर्णतया स्वस्थ किया जाता है, बच्चे को जिस बीमारी से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाता है, उसके खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहां पे सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से। अगर जो भी हम अपने ग्रामीण भाई बहनों को यही सलाह देने चाहेंगे कि वो कुछ लोग डरते हैं कि हम वहां बच्चे को भर्ती नहीं करवाएंगे, उससे कोई समस्या हो सकती है,
1: और बहुत तरीके से भ्रामक बातें करते हैं, तरह तरह से उनको बहलाने का काम करते हैं कि आप ये यहाँ भर्ती कर देंगे तो सही नहीं होगा, या फिर वहाँ देख रेख कम होती है, इस तरीके की बातें करते हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस संबंध में?
0: नहीं, ये सब एक भ्रामक है, एक मिथ्या है। मतलब आप भी जहाँ जाएं, मैं भी ये कहना चाहूंगी इसके माध्यम से कि आप इन सब भ्रामक बातों में ना पड़ें, आप खुद का एक्सपीरियंस, खुद का अनुभव, मैं अपने खुद का अनुभव बता रही हूँ। मैं आए दिन कई बच्चों को लेके जाती हूँ यहाँ से, भर्ती करवाती हूँ आंगनबाड़ी बहन के माध्यम से, तो बच्चा कभी ऐसा नहीं होता कि 14 दिन तक रोकना पड़े, 8 से 10 दिन में बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। और खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है, बच्चे को जिस टाइम भी दूध की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे की डाइट का चार्ट बन जाता है वहाँ पे, उसी बच्चे की आयु और वजन के हिसाब से वो डाइट चार्ट बना देते हैं। तो समय समय पे बच्चे को क्या देना चाहिए आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे वो स्टाफ है वो समय से सारी चीजें देता है, बच्चे को दूध का खाने पीने दलिया लाइक वगैरह जो भी होता है सब समय से मिलता है। तो मेरी तो आपसे सबसे यही निवेदन रहेगा कि आप इधर उधर के डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे आपको भारी पैसा भरना पड़ता है और ये एकदम निशुल्क है।
2: मीनू जी, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ग्रामीण वासियों के लिए?
0: हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि गर्भवती माताओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ गर्भ में ही स्वस्थ शिशु का विकास होता है। तो अगर माता स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। उसके साथ साथ अगर कोई आसपास इस तरह से कुपोषित बच्चा होता है जो माँ बाप पैसे की वजह से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो उस गाँव की हमारी आंगनवाड़ी या आशा बहन जी से मिलकर संपर्क करें, वो आपको संबंधित ब्लॉक के सीएससी केंद्र पर लाएंगी, जहाँ से आपको रेफर कर दिया जाएगा बरेली एनआरसी केंद्र पर, जहाँ आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा बच्चे का खाने पीने का, बच्चे के साथ एक माँ भी रहती है, उसके भी खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो वहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा।
2: जी मीनू जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे ग्रामीण वासियों के लिए, इस तरीके से हमारे जो ग्रामीण भाई हैं वो अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: हक्कू भैया, बाल विकास परियोजना अधिकारी मीनू जी ने बहुत अच्छी तरीका से बताओ कि जो संभव अभियान है उसके अंतर्गत गाँव क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, एएनएम बहन जी है और आशा बहन जी है, किस तरीका से गाँव की जो हमारी नन्नी मुन्नी फुलवारी है, छोटे मोटे जो बच्चा है गर्भ से लेकर के धात्री तक और जो कुपोषित बच्चा होता है उनकी कितनी मदद करती हैं, और खासकर उन्होंने बताई ही कि किसो भ्रम मनाए पर सीधे अगर कुपोषित बच्चा है तो हमारी जो आशा बहन जी हैं, आंगनवाड़ी बहन जी हैं, उनसे संपर्क करें और मुफ्त इलाज वहाँ को बड़ी आसानी से हो जाता है,
2: बिल्कुल
3: कोई समस्या ना है। तो हमारे श्रोतन को उम्मीद है कि यह जानकारी बहुत ही लाभप्रद साबित होगी।
2: और कन्हैया भैया, देखो कार्यक्रम में आगे एक लोकगीत और है अपने भैया बहनों को सुनवाने के लिए, कुछ सोशल मीडिया संदेश भी हैं उनको शामिल कर लें।
3: बिल्कुल,
2: आप हैं पश्चिमी सिंहभूमि चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश शर्मा और साथ में हैं करुणा वर्मा। आप हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हमारे साथी हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा।
3: और भैया, अन्य श्रोताओं ने भी हमारे लिए ये कमेंट्स लिखकर के भेजे हैं। दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से

0: हमें अपने सब परिवार सहित लेकर के भेज रहे हैं कि हमें एक अपनी पसंद का कोई लोकगीत सुनवा दें। और साथ ही साथ मैं धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी, आयान, बाबू और ये सुनना चाह रहे हैं हमें भटवारा छत्तीसगढ़ से ही हिमेश कुमार साहू, करण राहुल, चंपा साहू और गांव फारसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार और चरडोंगी पिपरिया जिला काशी जिला
1: कबीरधाम।
0: कबीरधाम छत्तीसगढ़ से हमें लिख रहे हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन, श्रीमती कुमारी साहू और इनके समस्त परिवारीगण।
1: करिए भाई अच्छे बताओ, आज भौजी से कैसी नोकझोंक हो गई?
0: अरे भैया नोक झोंक की बात मत करो, क्योंकि आप देख रहे हो बारिश हो रही है
1: अच्छा
0: और बारिश में अब ज्यादा ही बारिश भैया, तो हमारे भैया घर के पंखा जो भी हो गए खराब।
1: अच्छा फोन आओ आज भौजी को,
0: अच्छा
1: बता रहे अपने कन्हैया भैया समझा लियो, तो कछु ज्यादा बातचीत बढ़ गई आगे।
0: अरे भैया बातचीत कोई नहीं बढ़ेगी, देखो बात कर रहे हैं अपने शोतन की मनोरंजन की। हाँ तुम हमारे घर पर कैसे पहुंच गए?
1: आज के समय जमानो जो मोबाइल को है, भौजी ने फोन करके खुद बताई।
0: अच्छा तो देखो भैया अब तुम्हें तो हमारे घर की रार की पता लग गई, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं उनके घर में जा रार ना हो जाके ले कुछ संदेश है का?
1: बिल्कुल है, जेल का कह रही है मुन्नी देवी, आप जान लेते।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: संदेश से पहले सुनो आपने मुनि देवी को संदेश लोकगीत के माध्यम से।
3: हक्कू भैया देखो, लोकगीत के माध्यम से संदेश का सुनो। अब हम तो अपने घर की रार के लिए भैया पंखा लाएंगे, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं उन्होंने से कहेंगे भैया जब घर की जो जरूरतें हैं, आवश्यक जरूरतें हैं, उनको भैया अवश्य पूरा करें। अगर घर की रार बंद करनी है तो
2: बात सही है आपकी। और देखो भैया, गर्मी तो आप देख रहे हो बहुत ज्यादा, दो दिन है गए धूप निकलते भाई, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि वास्तव में परेशानी है। तभी तो मुन्नी देवी ने ऐसो लोकगीत में कही बात।
3: और भैया देखो, साथ साथ मौसमों लोग का छुपी खेल लो, कब बारिश आ जाती है, कब धूप खिल निकलती है, तो जो धूप से उमस बनती है फिर जब बूंदे पड़ती है तो और ज्यादा गर्मी बन जाती है।
2: जब हम और आप स्टूडियो के लिए आ रहे तो देखो रास्ता में तो थोड़ी बूंदाबांदी हो गई,
3: बिल्कुल,
2: तो सड़क पर कितनी गर्मी लग रही।
3: हाँ देखो, ऐसे ही उमस से बचने के लिए जो जरूरतें हैं उनको पूरा करके रखें। और साथ ही साथ हक्कू भैया एक बात और हुआ है, जो हमारे गांव पंचायत में बैठकें होती हैं उनके माध्यम से जो प्रस्ताव जाते हैं और गांव विकास के लिए जो योजनाएं तैयार करी जाती हैं, लेकिन भैया भी होती छोटे छोटे काम की हैं लेकिन होती बड़ी जरूरत की हैं।
2: बिल्कुल सही बात है। अब जो पंखा है ना वो होता तो छोटो ही है, लेकिन बाकी जो जरूरत है ना वो बहुत बड़ी है।
3: बिल्कुल। और साथ ही साथ में जरूरत की जहां आपने बात करी, तो इस समय आप देख रहे हो लगातार बारिश हो रही है और अब धूप खिल निकली है, तो जो गांव की विकास में जहां पर जैसे नालियां हैं गांव में, इस समय अभी लगभग 1.25 महीना बारिश को बीत चुको है पिछले, तो साफ सफाई नहीं हो पाई है, तो आगे कार्य योजना बनावे गांव के लोग बैठ करके।
2: बिल्कुल सही बात है,
3: साफ सफाई करें। और साथ ही साथ में जहां हमने जानकारी दिलवाई संक्रामक रोगन की, तो अगर इन रोगों से बचने हैं बाहु के लिए तो भैया जरूरी है।
2: देखो इस समय सबसे बड़ी मुख्य बात ध्यान में रखने की ये है कि अपने घर की जो आसपास की नालियां हैं उनको साफ सुथरा रखें। खरपतवार इन दिनों में बहुत ज्यादा उगत होंगे नालियों के किनारे में या फिर घर के बाहर, उनको साफ सफाई करते रहें। साथ ही साथ कोई आसपास में गड्ढा है वहां में जल भराव ना होने दें, और जल भराव यदि है भी तो जल निकास की उचित व्यवस्था करके जल निकास कर दें, अन्यथा फिर वही होएगा जैसे आज जो जानकारी जुटाई है, तमाम संक्रामक रोग इस समय प्रकोप हो रहा है, अनेक कीट पतंगा हैं वो वहां में पनपेंगे और हमको बीमार करेंगे।
3: तो भैया जिस सबसे बचने हैं तो साफ सफाई तो रखनी है, और संग ही संग भैया जो हमारे गांव क्षेत्र आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्हों को प्रेरित करने हैं।
2: बिल्कुल। अगर कोई भैया हमारे गांव मेहमान आवे हो और यहाँ की साफ सफाई देखे हो तो जरूर वहां पर चर्चा करे वो अपने यहाँ।

0: बिल्कुल। और भैया देखो सामने दीवार में लगी घड़ी का कह रही है।
1: वो टिक टिक करके शाहरुख करने लगी है कि अनुमति लेने की बेल आ चुकी है।
0: तो अब यहीं पर कार्यक्रम ग्राम जगत से अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया कन्हैया
1: और अपने भैया हेडलपाल सिंह को देव अनुमति और करो स्वीकार हम दोनों की। राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। फुरकान अली पुत्र मुख्तियार अहमद निवासी ग्राम बमियाना थाना भमोरा जिला बरेली से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री सीमा 23 जुलाई 2026 से लापता है, जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट, शरीर की बनावट सामान्य, रंग गोरा, चेहरा गोल, आंखें काली भूरी, बाल काले, ये हरे रंग का सूट सलवार पहने हैं। यदि किसी को इसके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली।

0: खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक अन्य सूचना। मुरावपुरा थाना किला जनपद बरेली से नसरीन सूचित करती हैं कि उनके पति मेहताब मियां 13 अगस्त 2026 से लापता हैं, जिनकी आयु लगभग 42 वर्ष, ऊंचाई लगभग 160 सेंटीमीटर, शरीर की बनावट सामान्य, रंग साफ गेहुआ, चेहरा गोल, आंखें काली, चेहरे पर सफेद रंग की दाढ़ी व सर पर सफेद व काले रंग के बाल। ये सफेद कुर्ता पजामा, हरा लोअर, चश्मा और दो बद्दी की चप्पल पहने हैं। यदि किसी को इनके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली। सूचना समाप्त हुई।
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हां, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की ओर, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के 7 सबसे ज्यादा यातायात वाले रेलवे नेटवर्क होंगे 4 लेन। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। लखनऊ कानपुर समेत प्रदेश के 10 स्टेशन परियोजना में शामिल। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का वाराणसी में शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9.5 साल में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला नया स्वरूप। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में देश के दूसरे बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र का किया शिलान्यास। कहा, हर राज्य के किसानों को मिलेगा लाभ। और यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा के मूल्यांकन में बदलाव। विज्ञान और गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा खुद लेगा बोर्ड। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ज्यादा यातायात वाले 7 रेलवे नेटवर्क को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी। इनमें दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली की परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें दिल्ली से हावड़ा रूट, उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन को कवर करेगा। वहीं दिल्ली से मुंबई रूट में मथुरा, दिल्ली से गुवाहाटी रूट में मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, जबकि दिल्ली से चेन्नई मार्ग पर आगरा और झांसी स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन 7 कॉरिडोर पर रेलवे का लगभग 40% ट्रैफिक होता है और लगभग 2000 किलोमीटर का 4 लेन का काम पहले ही पूरा हो चुका है।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
1: कैबिनेट ने कुल 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। वाराणसी में आज 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। इस अवसर पर प्रदेश की महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और अन्य मंत्री भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9.5 साल में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को नया स्वरूप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष की थीम मेरी आंगनबाड़ी मेरी जिम्मेदारी को जन भागीदारी से जोड़ते हुए कहा कि आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के साथ ग्राम पंचायत, परिवार और पूरा समुदाय अपनी जिम्मेदारी समझे, तभी इसका वास्तविक असर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का बचपन स्वस्थ, सक्षम और शिक्षित होगा।
3: आत्मनिर्भर विकसित भारत दिल्ली में बनाने से नहीं, गांव और गलियों से होकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की आधारशिला यहां से प्रारंभ होती है। आंगनबाड़ी केंद्र और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल इसके प्रारंभिक केंद्र बनेंगे और ये शुरुआत हुई है एक समर्थ और शिक्षित भारत के लिए, स्वस्थ और सशक्त भारत के लिए, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र। और उसकी थीम इसीलिए इस वर्ष रखी गई है कि मेरी आंगनबाड़ी मेरी जिम्मेदारी।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है।
4: सुपोषित बचपन, स्वस्थ मातृत्व और समृद्ध परिवार ही विकसित भारत 2047 के संकल्प की सबसे मजबूत नींव है। हर वर्ष यह आयोजन हमें प्रेरित करता है कि हम पोषण के प्रति निरंतर जागरूक रहें और इसे अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत में 15 करोड़ रुपए की लागत से खोले गए

0: वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र और प्रदर्शन फार्म का शिलान्यास किया। मेरठ के बाद ये देश का दूसरा बासमती और जैविक प्रशिक्षण व निर्यात केंद्र होगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस केंद्र का लाभ पीलीभीत ही नहीं देश के दूसरे राज्यों के किसान भी उठाएंगे।
1: जनपद के किसान, हमारे नौजवान, हमारे उद्योग जगत के लोग इस केंद्र का फायदा उठाएंगे और जो इस सरकार का डबल इंजन मोदी जी और योगी जी का प्रण है कि किसानों की आमदनी दुगनी करने, किसानों की आय बढ़ाने और इस क्षेत्र के लोगों का, किसानों का और हम लोग कैसे दायरा बढ़ा सके, वो ये केंद्र साकार करके देगा।
0: कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि एपीडा के इस केंद्र का लाभ प्रदेश के 29 जिलों को किसानों को भी मिलेगा जिन्हें बासमती उत्पादन में जीआई टैग मिला है। उन्होंने इस केंद्र को किसानों की आमदनी दोगुनी करने की एक खास कड़ी बताया। लोकसभा में नेता विपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही श्री गांधी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव किया है। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि विज्ञान, गृह विज्ञान में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बोर्ड खुद 30 नंबर की प्रैक्टिकल की परीक्षा लेगा जबकि अन्य विषयों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, यानी मार्कशीट में ग्रेड के साथ प्रैक्टिकल के नंबर भी दिखेंगे। पहले मूल्यांकन 5 पॉइंट स्केल ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर होता था जिसे अंक पत्र में ग्रेड के रूप में दर्ज किया जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के पुनर्नियोजन की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सरकार ने यह फैसला जनहित में लिया है जिससे मरीजों को सीनियर और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के अनुभव का फायदा मिल सके।
2: चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो चिकित्सकों की उम्र है वो चिकित्सीय कार्य के लिए 70 वर्ष तक कर दी गई है, यानी अपने 70वें वर्ष तक उम्र के वो सरकारी अस्पतालों में सभी चिकित्सीय कार्य कर सकेंगे। जो चिकित्सकों की कमी है, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उन्होंने इतना लंबा अनुभव हमारे अस्पतालों में प्राप्त किया है और ये निर्णय जनहित में लिया गया कि मरीजों को उनके अनुभव का लाभ मिल सके।
0: अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 500 निसंवर्गीय पदों के सापेक्ष पीएमएचएस संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों का पुनर्नियोजन किया जाएगा। मेरा युवा भारत उत्तर प्रदेश राज्य के निदेशक गोपेश पांडे ने आज लखनऊ में बताया कि भारत की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ने तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रैंड नेशनल कार्यक्रम 10 से 12 जनवरी 2027 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन लगातार निगरानी करते हुए राहत और बचाव कार्यों को संचालित कर रहा है। अब तक 21,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। बदायूं, फर्रुखाबाद, बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी, अयोध्या व बलिया के तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 7 सबसे ज्यादा यातायात वाले रेलवे नेटवर्क होंगे 4 लेन। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। लखनऊ, कानपुर समेत प्रदेश के 10 स्टेशन परियोजना में शामिल। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का वाराणसी में शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9.5 साल में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला नया स्वरूप। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने

0: पीलीभीत में देश के दूसरे बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र का किया शिलान्यास, कहा हर राज्य के किसानों को मिलेगा लाभ। और यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा के मूल्यांकन में बदलाव, विज्ञान और गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा खुद लेगा बोर्ड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, लीजिए आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, जिसमें आज का विषय है बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, शंकाएं और आधुनिक उपचार। कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहम्मद अकीक, और इनसे बातचीत कर रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
4: रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
5: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
6: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
7: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
8: महिलाओं के बांझपन और जठरानी की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
7: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
8: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
7: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
9: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ मिथिलेश श्रीवास्तव, और आज रेडियो हेल्पलाइन का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा विषय है, ऐसी बीमारी है जिससे शायद ही कोई बचा होगा। जी हाँ, वायरल फीवर। वायरल फीवर बारिश के दिनों में खास तौर पे एकदम आम हो जाता है। हर किसी को खांसी हो रही है, किसी को हल्का बुखार हो रहा है, कोई छींक रहा है, किसी के नाक बह रही है। तो इसी सिलसिले में क्या है वायरल फीवर, कितने तरह का होता है और कैसे होता है, कैसे बच सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं, और वायरल फीवर और कैसे अलग होता है बैक्टीरिया वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे, पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ जो इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद अकीक साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
10: जी नमस्कार सबका।
9: और मैं श्रोताओं को बता दें कि आप MD मेडिसिन हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं गंगाचरण आर्यवर्धन हॉस्पिटल में। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले तो यही बताइए हमारे श्रोताओं को कि वायरल फीवर दरअसल होता क्या है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं और वायरल फीवर होते ही बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए सीधे एंटीबायोटिक लेने शुरू कर देते हैं।
10: जी बहुत बढ़िया कि पूछा आपने कि वायरल फीवर होता क्या है। यही श्रोताओं को जानने की जरूरत है कि वायरल फीवर क्या होता है। तो वायरल फीवर वायरस से होता है, ना कि बैक्टीरिया से। तो वायरस से जो फीवर होता है, वायरल फीवर, ये ज्यादातर 3 से 5 दिन तक, अगर माइल्ड फीवर है 3 से 5 दिन तक रहता है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा जाता है तो 3 से 7 दिन तक रहता है और ठीक हो जाता है अपने आप। इसके लिए कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। जैसे फीवर आता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमें एंटीबायोटिक ही चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल फीवर्स के लिए है और ये वायरल फीवर है, तो वायरस के लिए कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। तो आजकल के सीजन में बहुत कॉमन है वायरल फीवर, लगभग हर कोई ग्रसित है। तो कैसे पहचाने कि हमको वायरल फीवर है?
9: जी,
10: तो वायरल फीवर के लिए क्या होता है, ये अचानक से आता है। 2 घंटे 3 घंटे बाद आदमी घर पे बैठा कर, अरे मुझे तो फीवर आ गया। सडन ऑनसेट होता है, इसका ऑनसेट सडन होता है, अचानक से आता है। और फीवर आने के बाद साथ साथ उसको कुछ सिम्टम्स आते हैं, हम आगे इससे बात करेंगे।
9: जी जी, और फीवर जो आता है वो फिर हल्का होता है या अचानक से तेज होता है?
10: जी, फीवर वायरल फीवर जो होता है हाई ग्रेड का होता है, माइल्ड ग्रेड भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर अभी जो आ रहा है हाई ग्रेड होता है और चिल्स के साथ, मतलब ठंड लगने के साथ
9: ठंड लगने के साथ।
10: तो वायरल फीवर तेज आएगा, अचानक आएगा और ठंड के साथ है।
9: मतलब वो सेल्सियस में कितना होगा, टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, 100 पार या नीचे?
10: 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, 100.4 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा अगर फीवर है तो ये वायरल फीवर ही होगा। और इससे आगे भी हो सकता है, 102 हो सकता है, 104 हो सकता है, 104 से भी ज्यादा हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है सीवियरिटी की, तो उस हिसाब से हम इसको फिर ट्रीटमेंट करते हैं।
9: अब इसमें सवाल ये है कि किसी को फीवर आए तो क्या उसी समय उसको मान लिया जाए कि हाँ ये वायरल फीवर है, साथ में और कौन कौन से लक्षण अगर हों तभी वो वायरल फीवर होगा?
10: जी बिल्कुल सही पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन।

0: वायरल फीवर जो होता है कि मैंने जैसे तीन पहचान बताई कि सडन होगा, अचानक से आएगा, और हाई ग्रेड चिल्स के साथ, मतलब ठंड लगने के साथ साथ बुखार आएगा, इसके साथ साथ कैसे और पहचाने कि ये वायरल फीवर ही है, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? बहुत कमजोरी लगेगी, मैजी हम लोग बोलते हैं,
1: अच्छा,
0: मसल एक बोलते हैं, एक एक मसल पेन करती है, तो
1: सर से लेके पांव तक,
0: सर से लेके पैर तक मसल वीक रहती है, तो आदमी को वीकनेस बहुत लगती है, और उसको ऐसे बोलते हैं सिम्टम की डॉक्टर साहब बिल्कुल चला नहीं जा रहा, एकदम बस लेटे रहे हैं चुपचाप, ऐसा लगता है। उसके साथ साथ हेडेक होता है, क्योंकि फीवर होता है तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है, डिहाइड्रेट होती है तो उसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से हेडेक बहुत होता है। सीवियर हेडेक बताएंगे, फीवर बताएंगे और कमजोरी बताएंगे। इसके साथ साथ अगर कई तरह के वायरस होते हैं, अगर रेस्पिरेटरी वायरस है तो उसमें पेशेंट कैसे बोलेगा कि हमें फीवर के साथ नाक बह रही है,
1: अच्छा,
0: गले में खराश हो रही है, खांसी आ रही है, छींके आ रही हैं। तो ये अगर रेस्पिरेटरी वायरस अगर होता है, जिसमें दो तरह के ज्यादातर होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, फ्लू जिसको हम लोग बोलते हैं, अरे कॉमन फ्लू हो गया, और कोल्ड वायरस होता है, तो एक टाइम तक ही कोविड भी था, तो कोविड भी रेस्पिरेटरी वायरस था, तो वो भी वायरल फीवर में आता है। कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो उसमें, जैसे कि रोटा वायरस है, तो वो आंतों का वायरस है,
1: अच्छा,
0: तो आंतों का वायरस बुखार के साथ साथ उसको डायरिया आ जाएगा, लक्षण हो सकता है कि डॉक्टर
1: अच्छा,
0: साहब पेट में दर्द हुआ, बुखार आया, पेट में दर्द हुआ और लेटीने भी, हमको लूज मोशन लग गए, तो ये भी एक तरह का वायरल फीवर है। और भी होते हैं, जैसे कॉमन है डेंगू फीवर, बहुत कॉमन, कि
1: डेंगू
0: मच्छर के काटने से जो फैलता है, एडीज मच्छर से,
1: तो वो भी तो
0: तो
1: वायरस
0: वो
1: ही
0: भी
1: होता है।
0: वायरल फीवर है, वो बस मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो ऐसे ही कई तरह के वायरल फीवर होते हैं, तो लक्षणों के आधार पे हम लोग पहचानते हैं किस तरह का, रेस्पिरेटरी वायरस है कि जीआई वायरस है, या फिर डेंगू, और या फिर कोई मॉस्किटो से फैलने वाला चिकनगुनिया है, ये तरह के वायरस है।
1: मतलब जो भी वायरस से फैलता हो वो सारे वायरल फीवर हैं,
0: जी,
1: लेकिन अब वो उस तरह तरह के वायरस हैं
0: तरह
1: उनके
0: तरह के
1: आधार
0: लक्षण।
1: पे। अब इसमें कई बार क्या करते हैं लोग, सबसे पहला काम करते हैं, हल्का सा फीवर आया तो उन्होंने पैरासीटामोल ले लिया, तो क्या ये सही है बिना किसी डॉक्टर को दिखाए?
0: जी, इसके लिए एक समझने की जरूरत है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। वायरल फीवर जब भी होता है किसी को, तो शरीर में वायरस जाता है, एंट्री
1: जाता है।
0: करता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी एक्ट करती है, हमारी जो है शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता जो है वो उसको मारने की कोशिश करते
1: कोशिश
0: हैं।
1: करती
0: तो
1: है।
0: मारने के लिए क्या करती है, बॉडी इन्वायरमेंट बनाती है कि टेम्परेचर को बढ़ाती है, जो हमको फीवर के फॉर्म में पता चलता है, तो वो टेम्परेचर वायरस के लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होता है, अनफेवरेबल टेम्परेचर क्रिएट करते हैं कि वायरस मर जाए, वायरस कुछ कर
1: हाँ,
0: ना पाए, तो फीवर उस लिए आता है। तो फीवर एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे,
1: प्रोटेक्टिव है
0: तो अगर
1: और
0: आप उसको कम कर देंगे पैरासीटामोल लेके, तो आपको
1: वायरस
0: वही इन्फेक्शन काफी देर तक परसिस्ट कर सकता है, और वायरस
1: बिल्कुल।
0: को मारने में देरी हो सकती है।
1: तो इसमें कहा जाए कि तुरंत जो है पैरासीटामोल लेना या बुखार की कोई भी दवा लेना
0: जी
1: सही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, अगर वायरल फीवर है तो वो नॉर्मली माइल्ड वायरल फीवर जो होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट, उसमें 3 से 5 दिन में वो ठीक हो जाएगा। आपको सिर्फ रेस्ट करने की जरूरत है और अपने बॉडी को हाइड्रेट करने की जरूरत है,
1: हाइड्रेट रखने की
0: बॉडी खुद
1: जरूरत
0: से ही उसको मार देगी
1: है।
0: और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, और आपको कोई कमजोरी, कोई फीचर नहीं आएगा।
1: कई बार क्या करते हैं लोग, या होता भी है, वायरल फीवर या कोई भी इस तरह का फीवर हुआ, एक तो ये बुखार की दवा, दूसरे खान पान में क्रेविंग भी होती है, समोसा खाने की क्रेविंग, कुछ भी चटपटा खाने की क्रेविंग होती है, तो आपके माध्यम से हम श्रोताओं को जागरूक करना चाहेंगे ये कितना सही है।
0: देखिए, वायरल फीवर में कोशिश करना चाहिए ये चटपटे, तले भुने और मिर्च मसाले वाले पदार्थों को ना लें, ये हमारी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं। कोशिश करना चाहिए ऐसे चीजें लें जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएं, क्योंकि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो रखा है, हमारा लीवर जो है और ये सब चीजें जो है उसको कि डाइजेशन में ही हम लग जाएंगे, डाइजेस्ट करने में, तो कैसे अपने को प्रोटेक्ट करेंगे? तो तरल पदार्थ लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए और ऐसे जूसेस लेने चाहिए जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करें।
1: जी, अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं
0: जी,
1: कि अरे बुखार हुआ है, ठंडी चीजें अवॉइड करो, तो जैसे आप कह रहे हैं फ्रूट जूस लेने को, तो ये भी भ्रांति दूर कर दीजिए
0: जी
1: लोगों की।
0: जी अगर कोल्ड वायरस किसी को हुआ है, कोल्ड वायरस जैसे छींके आ रही है, खांसी आ रही है, सोर थ्रोट हो रखा है, तो वहां पे हम लोग कोशिश करते हैं कि ठंडी चीजें अवॉइड ना करें। लेकिन हाँ, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई मरीज ठंडा ले लेता है, ठंडा पानी पी रहा है, ठंडा जूस पी रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सोर थ्रोट नहीं बढ़ रहा है, तो वो ले सकता है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी वायरस का इन्फेक्शन है, तो कोशिश करना चाहिए कि जो कोल्ड वायरस इन्फेक्शन है उसमें ठंडी चीजें ना लें।
1: ना ले
0: जी
1: तो ये तो है कि ठंडी चीजें अवॉइड कर सकते हैं, करना
0: जी
1: भी चाहिए,
0: जी
1: क्योंकि अगर थ्रोट में
0: हाँ
1: इन्फेक्शन अगर थ्रोट का है तो फिर तो
0: जी
1: दिक्कत कर
0: जी
1: ही
0: जी
1: जाएगा। और दूसरी चीज

0: फिर घरेलू नुस्खे शुरू कर देते हैं घर लोग,
1: जी
0: काढ़ा है ना,
1: जी
0: तो ये सब कहाँ तक कारगर है?
1: काढ़ा और भी अलग अलग तरह की चीज़ें हम लोग, हमारे पास आते हैं मरीज के, डॉक्टर साहब बुखार आया तो ये ले लिया हमने, ये ले लिया इसके लिए, स्टीम ले लिया, तो वो कोशिश करनी चाहिए कि अपने बॉडी को हाइड्रेट करना है। हाइड्रेट करने के लिए आप तरल पदार्थों का यूज करें और जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करें, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हम वायरस से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर बनी रहेगी। जब प्रेटरी वायरस होता है, जब कोल्ड वायरस किसी को सोर थ्रोट हो गया, तो वहाँ पे काढ़ा और ये सब यूज करते हैं, तो मैं कोशिश ये करनी चाहिए हमको तरल पदार्थ लें और ऐसी चीजें लें जो अगर थ्रोट पेन हो रहा है तो पेन को रिलीफ करने के लिए अगर काढ़ा फायदेमंद है तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
0: थ्रोट रिलीव के लिए
1: जी
0: तो, और थ्रोट रिलीव के लिए और क्या क्या कर सकते हैं इसमें,
1: थ्रोट
0: या फिर जो
1: रिलीफ,
0: नाक बहने लगती है, छींके आने लगती
1: जी
0: हैं?
1: जी थ्रोट रिलीफ के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जैसे कि लोजेंजेस आती हैं, तो वो अगर हम उनको लेते हैं, उनको चूसना रहता है और उसका जो रस निकलता है, तो
0: जी
1: वो लोकल फेरेंजाइटिस हो गई किसी को, ज़्यादातर उसी में थ्रोट पेन होता है और सोर थ्रोट होता है, तो लोकल फेरेंजाइटिस में वो पर्टिकुलर उसी एरिया पे जाके वर्क करती हैं और वायरस को मारती हैं, तो वो बहुत ईजिली रिलीफ हो सकता है।
0: जी, तो मतलब ये है कि रूट कॉज
1: रूट कॉज, यस
0: पे हमला करें,
1: जी
0: हमारा शरीर जो है खुद ही उस वायरस को मारने की कोशिश करता है, तो उसको आप ये समझते हैं कि नहीं, बुखार हो गया, बीमारी बुखार है, और बुखार दूर करने के लिए दवाएं खा लेते हैं, या फिर कई बार अगर किसी को तेज बुखार हो जाता है तो वो गीली पट्टियां करते हैं कि बुखार कम हो जाए, जबकि असल रूट कॉज तो वो वायरस है जो गले में है या फिर साइनस में है, तो इसको दूर करने के लिए एक तो हम हाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा रहें,
1: रेस्ट
0: दूसरे
1: करें
0: रेस्ट करें।
1: जी, और ऐसे खाद्य पदार्थ हम यूज करें जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए,
0: इजी,
1: तो
0: जैसे
1: तरल पदार्थ वगैरह
0: खिचड़ी हो
1: यूज करें।
0: गया
1: हाँ,
0: या
1: खिचड़ी,
0: फिर दाल हो गई,
1: दाल हो
0: इस
1: गया,
0: तरह
1: तो
0: की
1: जो
0: चीजें।
1: इजीली दलिया हो गया, तो ये सारे पदार्थ हम जो है तले भुने ना हो, इनको ना डाइजेस्ट करने में हमको बहुत इजीली हम डाइजेस्ट कर लें, तो ऐसे पदार्थ लेने चाहिए।
0: जी, अब एक कॉल भी ले लेते हैं, एक श्रोता ने कॉल किया है। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम चल रहा है। जी, बरेली आकाशवाणी से बोल रहे हैं और इस समय रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम चल रहा है और आज का विषय है वायरल फीवर।
2: सर, मेरे को ये पूछना था कि मैं परसों बारिश में भीग गई थी।
0: बारिश में भीग गई थी, अच्छा।
2: हाँ, तो वायरल फीवर होता है, तो मेरे को ये कैसे पता करना है ये वायरल फीवर है या सिंपल फीवर है?
0: वायरल फीवर है या सिंपल फीवर है
1: जी
0: ये?
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर अकीक हूँ। मैं यही, हम लोग शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि कैसे पहचाने कि हमको वायरल फीवर है या कोई और दूसरा बुखार है। तो वायरल फीवर की पहचान हम लोगों ने बताई थी कि जो है वायरल फीवर अचानक से आएगा, बहुत तेज आएगा, ठंड लग के आएगा। अगर रेस्पिरेटरी वायरस है जो सांस की नली में होता है, जैसे आप बता रही हैं कि बारिश में भीग गई, तो उसमें रनिंग नोज होता है, नाक बहने लगती है और गले में खराश होती है, गले में दर्द होता है, तो ये सारे लक्षण रेस्पिरेटरी वायरस के ही होते हैं। और इसमें तेज बुखार आएगा और ठंड लग के आएगा, और ये 3 से 5 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है और तरल पदार्थ लें, एनर्जी ड्रिंक्स लें और ये ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी बुखार नहीं उतरता है, बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, 104 या उससे ज़्यादा, तो आप पैरासीटामॉल का यूज कर सकती हैं, और फिर भी नहीं ठीक होता है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें।
0: जी जी मैडम, आपको जवाब मिल गया।
2: यस सर,
0: जी, थैंक यू कॉल करने के लिए। तो
1: धन्यवाद।
0: जैसे इन्होंने कहा बारिश में भीगने से,
1: जी,
0: तो बारिश में भीगने से क्या-क्या हो सकता है?
1: हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने जैसे बताया कि बारिश में भीग गए या ऐसे, तो कैसे फैलता है वायरस, वायरस को कैसे फैलता है? तो ज्यादातर जो रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं ये हमारे छींकने से, कोई छींक रहा है इन्वायरमेंट, तो उसने जिसको वायरस से पहले से इन्फेक्शन हो रखा है वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा इन्फेक्शन आता है,
0: चला
1: तो हम लोगों को
0: जाता
1: पता भी नहीं चलता और वो हमने वायरस ले लिया।
0: है। जी
1: या कोविड आया था तो हम लोगों ने कितना कि अरे यहाँ टच नहीं करना, वहां टच नहीं करना, छू लेंगे, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं,
0: बिल्कुल, वो तो
1: तो
0: अदृश्य।
1: जी, तो ऐसे ही वायरस अदृश्य है, पहचानते नहीं, तो वायरस का इन्फेक्शन ऐसे भी लगता है कि जो है हम बारिश में भीग रहे हैं, किसी का नहा रहे हैं, किसी को इन्फेक्शन था, तो उससे जो है वायरस पानी के रास्ते या छींकने के रास्ते या छूने की वजह से ऐसे फैल जाता है वायरस।
0: तो मतलब सबसे पहले अगर इससे बचना है तो हम अपने आसपास थोड़ा सतर्क रहें।
1: बिल्कुल सतर्क रहें, कोई छींक रहा है तो अपना, अगर वो छींक रहा है तो कोशिश पहले वो करे कि वो अपना मास्क पहन ले या फिर
0: मास्क
1: हाथ
0: पहन
1: लगा
0: ले,
1: ले
0: चाहे
1: या रुमाल
0: रुमाल
1: लगा
0: लगा
1: ले,
0: ले,
1: और हम
0: बिल्कुल।
1: भी अगर चाहें तो हम भी जब वो सामने वाला छींक रहा तो उससे थोड़ा सा अपना रुमाल लगा लें और उससे थोड़ा सा साइड में हो जाएं, या उसने जो भी चीज़ों को टच किया है उसको हम टच ना करें, जिससे कि वहाँ का इन्फेक्शन हमको ना लगे।
0: जी, अब इसमें वायरल फीवर में जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात हो रही थी, कई लोग जो बुखार की दवा के साथ साथ, जो बुखार की दवा खा लिए तब भी बुखार थोड़ा सा उतर गया, फिर

0: घंटे 8 घंटे बाद फिर चढ़ गया,
1: जी
0: तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक खा लेते हैं।
1: जी एंटीबायोटिक तो बिल्कुल, वायरल फीवर में एंटीबायोटिक की क्या जरूरत है, तो एटियोलॉजी अलग है, कारण ही अलग है। वायरस है तो एंटीवायरल कोई ड्रग अगर होगी तो बहुत बड़ा भ्रम है कि हम एंटीबायोटिक खा लें वो ठीक हो जाएगा, खाते भी ठीक भी नहीं होते। मैंने कई बार देखते वो लोग बोलते हैं मैं ये एंटीबायोटिक खा के आ रहा हूँ, बेसिकली वो बुखार तो पैरासिटामॉल से उतर रहा होता है, क्योंकि बुखार उतारने की दवा पैरासिटामॉल है तो उससे उतर रहा है, उनको लगता है ठीक होगा, इसीलिए उनका चला जाता है कि 3 से 5 दिन में ठीक होना चाहिए, लेकिन 7 दिनों का नहीं ठीक हो रहा, 7 दिन से भी ज्यादा हो गया नहीं ठीक हो रहा है, और वो कॉम्प्लिकेट करता है। क्या कॉम्प्लिकेट करता है, उसमें फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। जब हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तब हमको एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, उसके लिए ब्लड रिपोर्ट कराएगा, पता लगाएगा इनको सेकेंडरी इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तब तो आपको वायरल फीवर में एंटीबायोटिक का यूज करना है, अदरवाइज एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना है। आपको रेस्ट और हाइड्रेशन मेंटेन करें, आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा 3 से 5 दिन में। जी
0: अब इसमें जैसे आपने बताया, या कोई भी डॉक्टर मुझे लगता है यही सलाह देंगे कि वायरल फीवर हुआ तो आप 4-5 दिन रेस्ट करिए, लेकिन आज के समय में 4-5 दिन रेस्ट करना बड़ा मुश्किल है।
1: जी,
0: हर किसी की हेक्टिक लाइफ है, ऑफिस जाना है, और कई बार जो प्राइवेट ऑफिस हैं उनमें छुट्टी भी नहीं मिलती है।
1: जी, जी।
0: तो ऐसे में क्या
1: किया? ऐसे में हम लोग एडवाइज करते हैं कि इसीलिए हम लोग पूछते हैं कि ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब आप काम क्या करते
0: काम
1: हैं, तो वायरल फीवर के साथ अगर कोई ऐसे काम है जहाँ पे हमें जाना है तो हम लोग बोलते हैं कि आप ऐसा काम करें जहाँ पे एनर्जी आपका लॉस कम हो, एनर्जी लॉस कम हो, आपको बैठ के काम करें, आपको रेस्ट लेके जो है काम कर सकते हैं, कंप्यूटर बैठ के काम कर सकते हैं, या अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो ये भी आपका एक अच्छा ऑप्शन होता है। और साथ में आपको जो हाइड्रेट कर रहे हैं उसमें हाइड्रेशन के टाइम पे एनर्जी ड्रिंक यूज करें, जिससे हमको हाइड्रेशन भी मिलता रहे और एनर्जी भी मिलती रहे,
0: एनर्जी
1: हम वर्क एनर्जी वेस्ट करें उतनी एनर्जी हमको मिलती है,
0: जैसे कि ग्लूकोज हुआ या नींबू पानी हुआ, इस तरह की
1: ग्लूकोज है, नींबू पानी है, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं जो वायरल फीवर के टाइम पे एनर्जी कैसे कितनी देनी, क्या अमीनो एसिड लेना, पूरा एक फॉर्मूला की तरह तैयार किया गया है, वो लेते हैं तो बहुत फायदा रहता है। तो हम इसमें रेस्ट भी नहीं करना पड़ता है और 3 से 5 दिन हम लोग निकाल लेते हैं और बुखार भी ठीक हो जाता है,
0: बुखार भी ठीक हो जाता है। तो जिन लोगों ने देर से ट्यून किया है उनको हम बता दें कि कार्यक्रम चल रहा है रेडियो हेल्पलाइन, और आज का विषय है वायरल फीवर, और इस विषय पे जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अकीक साहब, जो MD मेडिसिन हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं गंगाचरण आर्यवर्धन हॉस्पिटल बरेली में, और हमने कई सारी बातें की हैं वायरल फीवर के शुरुआती लक्षण और कैसे हम अलग करेंगे कि दूसरे बुखार से अलग है, और भी लक्षण हमने जाने अब, और ये भी जाना कि हम साफ सफाई रख के इसको कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को वायरल फीवर हो ही जाता है, आपने कहा सिर्फ और सिर्फ आराम ही उपाय है, लेकिन फिर भी वो मजबूरी है कहीं जाना ही है, पर आपने कहा कि हल्का काम करें, नहीं उनको पूरा टाइट शेड्यूल है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
1: जी बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर हमको काम करना ही है, क्योंकि आजकल ऐसी लाइफ है कि छुट्टी नहीं मिलती, बहुत छुट्टी
0: और वो
1: दे रहे हैं, काम करना है
0: बिल्कुल, और डॉक्टर से कहते हैं मुझे एकदम खड़ा कर दो, सही कर दो,
1: तो ऐसे लोगों का हमारी एडवाइज है कि जब भी उनको फीवर आता है तो अगर बहुत माइल्ड फीवर है तो अवॉइड करें और ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर 102-103 ऐसे फीवर आता है तो पैरासिटामॉल का इस्तेमाल करें, पैरासिटामॉल लें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कितनी डोज चाहिए, कितना लेना है, तो पैरासिटामॉल से फीवर उतर जाएगा। और जो बॉडी एक होता है, लोगों को बहुत एक सिम्टम कॉमन होता है, सर बहुत दर्द करता है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तो वो भी उसको जो है पैरासिटामॉल लेने से बॉडी एक भी कम हो जाएगा, तो पैरासिटामॉल का यूज करके अपना वर्क कर सकते,
0: काम चला सकते हैं। बाकी जो कई सारी ऐसी दवाएं होती हैं आजकल मार्केट में चल भी गई हैं, और जैसे कि जो छींके आती हैं, नाक बहती है, उसके लिए एंटी एलर्जिक दवाएं यूज की जाती हैं, और वो भी कई सारे लोग बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ले लेते हैं।
1: जी ज्यादातर रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें छींके आती हैं और गले में खराश होता है, नाक बहने लगती है, तो ऐसे केसेस में अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं और नाक बराबर बह रही है तो काम करने में बड़ी डिफिकल्टी होती
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: तो वहां के लिए हम लोग एडवाइज करते हैं कोई एंटी हिस्टामिनिक लें जो नाक बहने को कम कर दे, जिससे हम अपना जो ऑफिस का वर्क है उसको पूरा कर लें, तो कुछ सिलेक्टेड पेशेंट में हम लोग एंटी हिस्टामिनिक एडवाइज करते हैं और वो ले सकते हैं
0: ले सकते हैं। और लेकिन इनका क्या दुष्प्रभाव है? मान लीजिए
1: वायरल फीवर में अगर बचना है तो एक बहुत

0: इम्पॉर्टेंट हम लोग बोलते हैं कि कंट्रा इंडिकेटेड जैसी चीज मतलब लेनी ही नहीं है। अगर आपको शरीर में दर्द है तो एस्पिरिन नहीं लेना है कोई
1: एस्पिरिन नहीं
0: भी।
1: लेना है।
0: हाँ,
1: अच्छा
0: ऐसी
1: अच्छा
0: एस्पिरिन लेने से क्या हो तो आपको दुष्प्रभाव डाल सकती है, और ऐसा दुष्प्रभाव कि आपकी जान भी जा सकती है।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो अवॉइड करनी है वायरल फीवर में। बुखार आ रहा है, पैरासीटामॉल से बेस्ट मेडिसिन कोई नहीं है, पैरासीटामॉल यूज करें। और एक
1: नहीं, जैसे ये एंटी हिस्टामिन जो आपने बताया,
0: जी
1: तो जैसे जो कंपोजिशन होता है वो मोंटेलुकास्ट
0: मोंटेलुकास्ट और
1: और
0: कोई
1: बेलिस्टिन
0: ड्यूसिटाजिन, ब्लास्टीन या फेक्सोफेनाडिन, कई सारी हैं। तो इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं
1: साइड
0: है।
1: इफेक्ट नहीं है।
0: नहीं
1: लेकिन जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है,
0: जी
1: कई सारे लोगों में भी मैंने देखा है कि ये दवाएं लेने से नींद बहुत आती है,
0: जी
1: थक जैसे लगेगा कि, और ऐसे लोगों को फिर वो
0: जी
1: ड्राइविंग करने से ही मना किया जाता है।
0: तो ये एंटी हिस्टामिन, जैसे आपने बताया कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो लेने से हमें नींद आती है, तो अभी मार्केट में वो ऐसी दवाइयाँ आ गई जिसमें सेडेशन ना के बराबर या जीरो कह सकते हैं
1: अच्छा
0: सेडेशन आ
1: अच्छा
0: रही है। तो हम लोग एडवाइज करते हैं कि वो मोंटेलुकास के साथ जीरो सेडेशन वाली, जैसे कि ब्लास्टीन बहुत अच्छा है, तो वो ब्लास्टीन अगर हम यूज़ करते हैं मोंटेलुकास के साथ तो उसमें नींद नहीं आती है।
1: नींद नहीं
0: तो
1: आती।
0: उससे हम अपना वर्क भी कर सकते हैं और ये दवाई खा के अपना रनिंग नोज जो है उसको भी रोक सकते हैं। पहले लेकिन हम लोग एडवाइज करते थे कि अगर आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं एंटी हिस्टामिनिक जिसमें सिडेशन है तो आप गाड़ी मत चलाएं, आप कोई ऐसा कार्य ना करें जहाँ पे आपको जान का खतरा है, सो जाते हैं अचानक से, तो वो सारे काम ना करें
1: ना
0: सिर्फ।
1: करें। बार बार किसी को ये वायरल फीवर होता हो, मतलब जैसे अगस्त का महीना आया है ना,
0: जी
1: बारिश के मौसम में वायरल फीवर हो जाता है, और ये हर साल होता है, या जब भी मौसम बदलता है, मान लीजिए अक्टूबर के महीने में, या फिर आपका मार्च या अप्रैल के महीने में, हर बार ये वायरल फीवर होता है या छींकें ज़्यादा आती हैं, तो ये किसी को ये होता है और हर बार उसको यही सारी दवाएं, एंटीहिस्टामिन और पैरासीटामोल, ये सब दवाएं लेनी पड़े हैं, तो क्या ये लेना चाहिए पहले तो, और दूसरा इसका क्या दूरगामी दुष्परिणाम हो सकता है?
0: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये सब तो क्या होता है कि वायरल के अगेंस्ट जो हमारी शारीरिक क्षमता है, इम्यूनिटी जो है, तो वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए जो भी वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी और एंटीजन ये सब रिएक्शंस होती हैं, तो एंटीबॉडीज बनती हैं। वो एंटीबॉडीज की एक लाइफ होती है,
1: अच्छा
0: उसकी एक लाइफ होती है कि 3 महीने लाइफ है या 4 महीने लाइफ है या 2 महीने लाइफ है, तो फिर उसके बाद वो डिजॉल्व हो जाती है।
1: अच्छा
0: जैसे हम
1: अच्छा
0: लोग कुछ कोई लड़ाई हो गई देश पे तो हम लोग अपनी फोर्स सेना तैयार करते हैं
1: तैयार कर लिया।
0: कि इस सेना को तैयार कर लिया, 4 महीने तक सेना वहां खड़ी रहेगी, अगर कोई कुछ लड़ाई झगड़ा दोबारा कुछ हुआ तो हम कर लेंगे, लेकिन देखा कोई नहीं कुछ आ रहा है तो हम वो 4 महीने बाद अपनी विड्रॉ कर लिया
1: विड्रॉ कर
0: कि भाई
1: लिया।
0: वहां से सेना हटा लो, अब
1: हाँ
0: कोई नहीं। लेकिन जैसे फिर आया तो फिर, तो ऐसे ही बॉडी तैयारी करती है। तो वो बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती है, और एंटीबॉडी 3 महीने तक रही शरीर के अंदर, उसके बाद वो उसका कोई काम नहीं रह गया तो वो खत्म होगी
1: फिर मोर्चे से
0: एंटीबॉडी।
1: हट गई, मोर्चे से
0: हाँ,
1: हटते ही
0: तो
1: दुश्मन ने
0: जैसे
1: फिर
0: ही,
1: आक्रमण कर
0: हाँ,
1: दिया।
0: फिर जब वायरस का इन्फेक्शन होगा तो फिर वो एंटी, तो ऐसी कई सारी बीमारियां और भी होती हैं। जैसे हम आपको बताएं चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स की जो इम्यूनिटी होती है हमारी लाइफ लॉन्ग बोलते हैं हम लोग, मतलब एक बार चिकन पॉक्स हो गया फिर दोबारा नहीं होगा,
1: दोबारा नहीं
0: तो
1: होगा।
0: उसके लिए बॉडी ने क्या किया, जो इम्यूनिटी एंटीबॉडी बनाई थी वो लाइफ लॉन्ग के लिए बना दी। लेकिन जो इस वायरस के लिए होती है कोल्ड वायरस और ये जो नॉर्मल वायरल फीवर होता है, ये 2 से 3 महीने तक ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी रहती है, इसीलिए बार बार होता रहता है,
1: इसीलिए बार
0: तो
1: बार होता
0: इसलिए हमको ये लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, आपने एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा कि ये दवाई हर बार हम लेते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं क्या नहीं। नॉर्मली अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेते हैं तो सारी दवाइयाँ जो भी आती हैं एक बहुत सारे उनके उससे रिसर्चेस से गुजरती हैं कि किस शरीर को कितने अमाउंट में चाहिए,
1: जी जी
0: कितना
1: जी
0: लें तो नुकसान नहीं हो, कितने ड्यूरेशन तक लें तो नुकसान नहीं होगा, या हम इसको 1 साल खाएंगे उसके बाद खाएंगे तो नुकसान होने लगेंगे, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहते हैं। तो अगर डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो दूरगामी परिणाम नहीं होंगे, क्योंकि वो पता है उसको कि ये इतने समय तक ही लेनी है, इतनी अमाउंट लेनी है, आपके
1: जी
0: शरीर के हिसाब से उसको इतनी ज़रूरत है, तब तो नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर की सलाह के बिना लेंगे तो बहुत बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उसको लीवर की बीमारी हो सकती है, उसको किडनी की बीमारी हो सकती है, इन सारी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है।
1: ये जो शुरुआत में अपने मन से पैरासीटामोल, मान लीजिए फीवर ज्यादा
0: जी
1: हो गया, पैरासीटामोल ऐसी दवा है जो हर किसी के पास रहती है और
0: जी
1: ऐसे ही खा लेते हैं,
0: जी
1: है ना? पावर कितना होना चाहिए लेकिन इसका?
0: पैरासीटामॉल की डोज जो होती है वो हम लोग एडवाइज करते हैं एडल्ट में 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार ले सकते हैं, मैक्सिमम डोज 2 ग्राम होती है कि 2 ग्राम हमको 24 घंटे में पैरासिटामॉल लेना है, लेकिन वो मैक्सिमम लेनी है
1: मैक्सिमम।
0: लेकिन हम लोग कोशिश करना चाहिए कि अगर 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार दे तो 1.5 ग्राम ही गई, तो

0: को बहुत सीवियर है तो हम 2 ग्राम तक जाते हैं, तो
1: जी
0: ये
1: जी
0: इस तरह से डोज होती है।
1: जैसे वायरल फीवर के बाद, जैसे आपने बताया, बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है कई बार, इसे कफ जकड़ जाता है,
0: जी
1: तो ऐसे में आप लोग भी एंटीबायोटिक खाने को बताते हैं। लेकिन इसमें कई बार होता है, लोग डॉक्टर के पास गए, आपके पास आए, आपने बता दिया हाँ भाई ये एंटीबायोटिक ले लो, और जो उसका कोर्स होता है वो पूरा नहीं करते हैं लोग। ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारी पूरी दुनिया के लिए, ये भी आज बता दीजिए।
0: जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने
1: जी
0: कि एंटीबायोटिक जब हम लोग देखते हैं किसी को बलगम आ रहा है, खांसी आने लगी, तो इसका मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक एडवाइज की जाती है। तो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, जो कि हमारी सबसे बड़ी चिंता, सारे डॉक्टरों की सबसे बड़ी चिंता यही है
1: जी
0: कि वो सोचता है एंटीबायोटिक को कैसे बचा लें, क्योंकि एंटीबायोटिक ही नहीं रहेगी हमारे पास तो हम कैसे लड़ेंगे बाकी
1: कैसे
0: बीमारियों
1: लड़ेंगे,
0: से।
1: बिल्कुल।
0: एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है कि ये 3 दिन खानी है, ये 5 दिन खानी है, ये 7 दिन खानी है ना। तो अगर वो कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो रेजिस्टेंस पैदा होने के चांसेस होते हैं। तो जो लोग ये लापरवाही करते हैं कि डॉक्टर ने 3 दिन लिखा, अरे हम तो 2 ही दिन में ठीक हो गए, फिर छोड़ दिया दवाई, तो ऐसे लोगों में रेजिस्टेंस आता है। फिर अगली बार जब उनको कभी ऐसा सेकेंडरी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होता है, वही दवाई उन पर काम नहीं करती
1: नहीं
0: है, तब
1: करती।
0: वो डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर साहब पहले हमने तो दवाई ली थी तो इसी दवाई से फायदा हो गया था हमको, अब तो डॉक्टर साहब ये दवाई हम 3 दिन खा गए, 4 दिन खा गए लेकिन फायदा नहीं, और आप तो बोले थे 3 दिन में फायदा कर देगी या 5 दिन में फायदा कर देगी।
1: जी जी
0: तो वो दवाई जब, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, अब वो जो डॉक्टर बताता ना इसका कोर्स 3 दिन का है या 5 दिन का, आप कितना भी उसका कोर्स कर लें वो तो फायदा नहीं करेगी ना, तो हमको फिर दूसरी एंटीबायोटिक पे जाना पड़ता है। तो सारे श्रोताओं से ये विनम्र अनुरोध है कि एंटीबायोटिक को खुद से ना लें, पहली चीज
1: पहली चीज,
0: लें तो डॉक्टर की सलाह से लें, और डॉक्टर ने जितने दिन की सलाह दी उतने दिन जरूर लें,
1: भले ही
0: जैसे
1: आप
0: आप
1: ठीक हो
0: फिर
1: जाएं।
0: जी भले ही आप ठीक हो जाएं, तो जिससे क्या होगा एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, आप अपने लिए नहीं बाकी दुनिया के लिए भी उसको बचा के रखें, क्योंकि आप, आपके अगर रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो वो बैक्टीरिया तो पहचान गया कि ये ऐसे ये दवाई आएगी, ये करनी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो म्यूटेशन होते रहते हैं ना। तो
1: बिल्कुल,
0: देखते हैं
1: मतलब
0: आजकल
1: पहले से और खतरनाक बैक्टीरिया आएगा,
0: जी, और
1: वो
0: खतरनाक
1: तैयार
0: वो तैयार
1: रहेगा,
0: होके आएगा,
1: तैयार
0: तो
1: होके
0: इसीलिए वो
1: आएगा।
0: उससे नहीं, और वो क्या होगा आपके ही नहीं बाकी सारों के लिए भी रेजिस्टेंस पैदा करके आएगा, तो
1: जी
0: बाकी लोगों को भी वो दवाई नहीं काम करेगी।
1: बिल्कुल, ये बात है, और इसके प्रति हमें बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहने की बात है। और इसमें जैसा आपने बताया अभी तक पूरे प्रोग्राम में, कि अगर वायरल फीवर होता है पहले तो उसकी पहचान कर लें,
0: जी
1: है ना, वो पूरे शरीर में दर्द भी होता है
0: जी
1: और थोड़ी बहुत कपकपी भी हो सकती
0: कपकपी
1: है,
0: होती
1: और अचानक से होता है,
0: अचानक से
1: तीन
0: आएगा
1: चीज़ें होती हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, आराम करना है,
0: जी,
1: बस 3 अक्षरों का शब्द आराम, और कुछ नहीं
0: आराम
1: करना है, और तरल पदार्थ लेते रहें।
0: जी
1: तो तमाम आप श्रोताओं से अनुरोध है कि वायरल फीवर के बारे में जानकारी हमने दे ही दी
0: जी
1: आप डॉक्टर साहब के माध्यम से, तो जानकार बनिए, सतर्क रहिए, और खुद डॉक्टर मत बनिए,
0: जी
1: तो हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे।
0: जी जी
1: तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी श्रोताओं से कि आप लोग जरूर सतर्क रहेंगे और वायरल फीवर से बच के भी रहेंगे, और हो भी जाता है तो 3-4 दिन कैसे निकल जाएंगे पता
0: जी
1: भी नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।
0: धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
3: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
4: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
2: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
5: महिलाओं के बांझपन और जसकाने की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
2: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
5: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
2: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। कार्यक्रम में विशेषज्ञ थे डॉक्टर मोहम्मद अकीक, और इनसे बातचीत कर रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव। 100.4 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम।

0: मिनट से शाम 7:20 तक हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए आज का हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं सुरेंद्र अग्निहोत्री की वार्ता, संतुलन और प्रगति का मार्ग है साहित्य।
1: साहित्य को संतुलन और प्रगति का राजमार्ग कहा जाता है, क्योंकि यह मानव समाज को वैचारिक मजबूती और संतुलन देने के साथ साथ उसे प्रगति के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। साहित्य केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि यह समाज का दर्पण और मार्गदर्शक दोनों है। साहित्य किस प्रकार संतुलन और प्रगति का राजमार्ग है, इसे हम वैचारिक और सामाजिक संतुलन के माध्यम से समझ सकते हैं। साहित्य हमें हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से जोड़ता है। यह पुरानी पीढ़ियों के अनुभव और आधुनिक विचारों के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है, जिससे समाज में संतुलन बना रहता है। साहित्य मानवीय संवेदनाओं, सुख दुख, प्रेम और करुणा को अभिव्यक्त करके साहित्य मनुष्य को मानसिक और भावनात्मक रूप से सुदृढ़ बनाता है। यह विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखने की सीख देता है, विविधता का सम्मान कराता है। साहित्य समाज के हर वर्ग, जाति और संप्रदाय की वेदना और वैभव को समेटता है। यह पाठकों के बीच सहानुभूति और सहिष्णुता की भावना जगाता है, जिससे सामाजिक समरसता और संतुलन स्थापित होता है। निरंतर विकास और प्रगति के साथ कुरीतियों पर भी प्रहार करता है। साहित्य ने हमेशा समाज में फैली कुप्रथाओं, अंधविश्वास और असमानताओं पर तीखा प्रहार किया। कबीर, प्रेमचंद और निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे रचनाकारों का साहित्य समाज को रूढ़िवादिता से मुक्ति दिलाकर प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज में बदलाव की आवश्यकता हुई, साहित्यकारों की कलम ने मसाल का काम किया है। आजादी के आंदोलन में माखनलाल चतुर्वेदी से लेकर अनेक बड़े बड़े साहित्यकारों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रचित अपने गीतों से और कहानियों से साहित्य के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और देश को आजादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नवीन विचारों के द्वारा प्रगतिशील साहित्य ने मनुष्य को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की है और तार्किक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया है। साहित्य ने हमें नई नई तकनीकों, विचारों और जीवन मूल्यों को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान की है। साहित्य हमारे जीवन में संतुलन और प्रगति का राजमार्ग सिद्ध करने के लिए प्रसिद्ध कवि और विचारकों की पंक्तियां यहाँ उद्धरण करना समाचीन है। साहित्य समाज का दर्पण है और मार्गदर्शक ही। साहित्य समाज को दिशा दिखलाता है और उसमें संतुलन रखता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में साहित्य मानव समाज की भावात्मक स्थिति और गतिशील चेतन की अभिव्यक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ज्ञान राशि से संचित कोष का नाम साहित्य है। मुंशी प्रेमचंद साहित्य और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई को साहित्य मानते हैं। कुरीतियों पर प्रहार करने वाला साहित्य के प्रति कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसी तरह महान कवि रामधारी सिंह दिनकर शोषकों के खिलाफ जिस तरह से पूंजीवादी वर्ग अपना अधिपत्य जमा रहा है, उनमें चेतना लाने के लिए एक गीत गुनगुनाते हैं, स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिबक ठिठुर, जाड़ों की रात बिताते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको आमंत्रण। वहीं दूसरी ओर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रगति और नवनिर्माण के प्रति अपने गीतों के माध्यम से स्वर देते हैं, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मृद रव, नव नव के नव भृंग बंद को नव पर नव स्वर दे। आज हम कह सकते हैं कि साहित्य हमारे चेतना को जगा रहा है। साहित्य के प्रति, शब्दों के प्रति जो बात कही जाती है कि कलम की शक्ति या शब्दों की शक्ति तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है, जो समाज को बिना

विनाश के प्रगति की ओर ले जाती है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रसिद्ध कविता है, मेरी कविता युद्ध का मैदान नहीं शांति का संदेश है, यह पराजय की कालिक नहीं विजय का जय घोष है। राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के महान क्रांतिकारी गजलकार जो व्यवस्था के बदलाव के लिए अपनी गजल का यह शेर कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण है, इसलिए केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त की ये पंक्तियां साहित्य के वास्तविक ध्येय को रेखांकित करती हैं। साहित्य केवल शब्दों का विलास या कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि यह शाश्वत ऊर्जा है जो मानव समाज को मर्यादा की परिधि में बांधकर वैचारिक संतुलन प्रदान करता है और साथ ही उसे विकास के पथ पर आगे बढ़ने की चेतना देता है। इतिहास गवाह है, जब जब समाज रूढ़ियों के बोझ से असंतुलित हुआ है या जड़ता का शिकार हुआ है, तब तब साहित्य ने एक राजमार्ग की तरह समाज का मार्गदर्शन किया है। यह मनुष्य को उसकी जड़ें संस्कृति से जोड़कर संतुलित रखता है और उसे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के पंख देता है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य ने जगत में जो कुछ सत्य और सुंदर पाया है और आ रहा है, वही साहित्य है। आज हम साहित्य के संतुलन और प्रगति के राजमार्ग पर विचार करते हैं तो हमें समझना होगा, राजमार्ग का काम भटके हुए मुसाफिरों को बिना किसी दुर्घटना के उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। साहित्य भी मानव सभ्यता के लिए यही भूमिका निभाता है। एक तरह मानवीय संवेदनाओं, करुणा और नैतिकता को बचाकर समाज में मानसिक और सामाजिक संतुलन स्थापित करता है, तो दूसरी तरफ अपनी क्रांतिकारी वैचारिक शक्तियों से कुरीतियों को ध्वस्त कर निरंतर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह वह पथ है जिस पर चलकर समाज कभी दिशाहीन नहीं होता है। साहित्य से जुड़ने के लिए हमें अपना कीमती समय किताबों को पढ़ने में लगाना चाहिए। इससे आपको वह सब जानने में आसानी हो जाएगी जो इन किताबों को लिखने वाले बड़े मुश्किल से जान पाए थे। विद्या की संपदा ही मनुष्य की अक्षय विभूति और शाश्वत संपत्ति है। श्री रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा विनयशील भक्त अपने को सर्वथा अक्षम और असमर्थ पाता है। उनका कहना है कि मेरा भाग छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने पाया है। इसीलिए कहा है कि कविता करके तुलसीदास जी धन हुए, बल्कि कविता तुलसीदास जी की कला को पाकर धन हो गई है। विद्वता मनुष्य को विनम्र और उदार बनाती है। किसी भी जीवंत समाज की पहचान उसकी भौतिक संपन्नता से नहीं बल्कि उसकी सांस्कृतिक और वैचारिक समृद्धि से होती है। साहित्य इसी समृद्धि का मुख्य स्रोत है। वर्तमान तकनीकी युग में जहां मानसिक तनाव सामाजिक बिखराव बढ़ रहा है, वहां साहित्य मनुष्य को भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है। इसके साथ ही यह रूढ़िवादिता पर प्रहार कर तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से हमें सोचने के लिए आगे बढ़ाता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार भी वैज्ञानिक सोच ही होती है। छिपा रहे मेरे मन के भीतर उस पीड़ा का स्वर है आंसू, विपदाओं के आंखों से भी कहने का अवसर है आंसू, उद्वेलित होकर कहता है बिना शब्द के सारी पीड़ा, कुंठा हो या प्रीत जताना भाषा से बेहतर है आंसू। हृदयगत भावनाओं का तरल रूपांतरण ही तो है यह आंखों से बहती हुई वह जलधारा के रूप में संवेदनशील मनुष्य की सशक्त मौन अभिव्यक्ति है। वास्तव में मनुष्य की बिन बोली हुई व्यथा की मजबूत अभिव्यक्ति है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य जीवन के राजमार्ग में संतुलन और प्रगति का बायस बनता है। और इसीलिए साहित्य के प्रति जब हम बात करते हैं तो साहित्य में एक बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि साहित्य में एक नाटक भी उस विधा के रूप में ललित कलाओं के रूप में समावेश होता है, जहां साहित्य नाटक हमारे लिए जीवन के विभिन्न घटनाक्रमों को मंचित करने के साथ साथ हमारे लिए उस राजमार्ग की ओर ले जाता है जहां हमारी दुख को, पीड़ाओं को और हमारे मन में चल रहे विचारों को एक रास्ता बताता है। इस रास्ते के माध्यम से जीवन में जो उथल पुथल होती है, कोलाहल होता है और जिसके कारण व्यक्ति विचलित होकर कुछ गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है, उन कदमों को दूर करने के लिए साहित्य हमारे अपने सृजन के माध्यम से मनुष्य के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जहां व्यक्ति समाज के लिए एक उपयोगी
व्यक्ति के तौर पर खरा उतरता है और व्यक्ति जो कुरीतियों के अंदर जा रहा होता है उसके लिए रोकने में साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

0: साहित्य के लिए अगर विस्तृत रूप से देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से भीखु हो या गोदान हो या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाए, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब अंग्रेजों का शासन था, उस दौर में ये स्थिति हो गई थी कि हमारा साहित्य ही हमारे जो भारत के नागरिक थे जो लगातार प्रतंत्रता में जीते जीते अपने आप को निरीह मानने लगे थे, हर कठिनाई और दुर्दशा को सहने को मजबूर थे, लेकिन साहित्य ने एक रोशनदान के रूप में, एक दीपक के रूप में उनके मन में एक ऐसी लौ जगाई जिसके कारण पूरे देश में आजादी का शंखनाद हो सका। साहित्य हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है और राजमार्ग के रूप में दिशा प्रदान करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे संतुलन और प्रगति का मार्ग है साहित्य, इस विषय पर सुरेंद्र अग्निहोत्री की वार्ता। इसके साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:10 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका चतुर्वेदी के स्वर में कुछ गीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं गोपाल दास नीरज की इस रचना के साथ।

सितेश आलोक की इस रचना के बाद आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के आखिर में अब आपको सुनवाते हैं डॉक्टर शक्ति जैन की रचना अलका चतुर्वेदी के स्वर में।

कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे डॉक्टर शांति जैन की ये रचना। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना अलका चतुर्वेदी के स्वर में गीत। संगत करने वाले कलाकार थे तबले पर सुमित कुमार मल्लिक, हारमोनियम पर साथ दिया था गिरिजेश शर्मा ने, बांसुरी पर अलका सिंह और मैंडोलिन पर राकेश कुमार ने। इसके साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार को शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान। इसके प्रायोजक हैं IFFCO, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को शाम 6:50 से शाम 7:20 तक। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब समय है श्रोताओं रात्रि के 8:30 के साथ फिल्म संगीत का। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का कुमार सानू की आवाज में आशिकी फिल्म के इस गीत के साथ।

बादशाह फिल्म का एक गीत आप सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडकर और नितिन मुकेश की आवाज में, चांदनी फिल्म से।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: 8 रेलवे मल्टी टैंकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बनी। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के साथ

0: हर एक जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
3: आज मेरी हेज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने को कंट्रीब्यूट करेगी।
2: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
2: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए एक्सपर्ट।

0: @AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UKMTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
1: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
3: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए गीत से, जिसे लिखा है कैफी आजमी ने, धुन बनाई है खयाम ने। फिल्म का नाम आखिरी खत।

ये थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर फिल्म अभिमान में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी एसटी बर्मन ने। अब सुनिए प्रेम पर्वत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल लिखे हैं जानिसार अख्तर ने, संगीत जयदेव का।

भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, वेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया वासना फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

चंबल की कसम। अब सुनिए इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया है खयाम ने, और आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके लिए यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। नमस्कार।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार।

0: आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और निर्माता अक्षय कुमार पर। भारतीय सिनेमा हर दौर में बदलता आया है और हर दौर की उसकी एक कहानी है। 90 का दशक वो दौर था जब सिनेमा ने रुपहले पर्दे के नए सितारों, उनके एक्टिंग और उनके फन से लोगों को रूबरू कराया। अभिनेता अक्षय कुमार इसी दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। ऊंची कदकाठी, असरदार डायलॉग डिलीवरी,
1: निकर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, परांठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6, तुहाडे सामने लैके आया एक रोमांचक गाना, सुनने वाले नु 101 रुपए इनाम। सुनो,

0: de bankë e sin bashka bashkap të uqa osa qa bashka.
1: फिल्मों में आए इस नए एक्टर को लोगों ने शुरुआत से ही खूब प्यार दिया। अपने स्टंट के लिए जाने जाने वाले अक्षय कुमार दिल्ली के रहने वाले थे। यहीं चांदनी चौक में जन्म हुआ उनका और पले बढ़े। इनके पिता का नाम हरिओम भाटिया और माता का नाम अरुणा भाटिया है। पिता पेशे से भारतीय सेना में अधिकारी थे। अक्षय के पिता को कुश्ती में भी रुचि थी और अक्षय कुमार भी खेलों में खूब रुचि रखा करते थे।
2: From China.

कुछ समय बाद अक्षय कुमार के पिता अपने परिवार को लेकर मुंबई के कोलीवाड़ा आ गए। यहाँ माटुंगा के स्कूल से कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए बम्बई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बॉक्सिंग से खासा लगाव होने की वजह से पिता को मनाया, बैंकॉक गए और यहाँ थाई बॉक्सिंग और यहीं मार्शल आर्ट भी सीखी।

भारत लौटने के बाद कोलकाता, ढाका और दिल्ली में भी थोड़े दिन तक अलग अलग काम करने के बाद वापस जब उनका मुंबई आना हुआ तो यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया।

अक्षय कुमार के मार्शल आर्ट के क्लासेस में एक छात्र के पिता ने उन्हें मॉडलिंग के लिए सुझाया और कुमार ने अपना पहला पोर्टफोलियो बनाने के लिए 18 महीने तक फोटोग्राफर जयेश सेठ के सहायक के रूप में काम किया। जरूरत के मुताबिक फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम करते रहे, जो उनका पैशन भी था। सिलसिला आगे बढ़ा और 1987 में फिल्म आज में कराटे प्रशिक्षक के रूप में कुमार ने अपनी पहली स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की और बाद में अक्षय कुमार ये मंच नाम अपनाया। एक ऐसी ही सुबह विज्ञापन शूट के लिए अक्षय कुमार को बेंगलुरु जाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई। फ्लाइट तो मिस हो गई, लेकिन इसी शाम एक फिल्म स्टूडियो में निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती से उनकी मुलाकात हुई। अक्षय कुमार की कदकाठी और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें फिल्म दीदार में बतौर लीड एक्टर साइन कर लिया, जिसमें अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर के साथ अनुपम खेर भी नजर आए।

इस फिल्म ने अक्षय कुमार के शुरुआती करियर को आगे बढ़ाया। कुमार की एक्टिंग को पसंद किया गया और फिल्म सौगंध में बतौर मुख्य अभिनेता उन्हें चुन लिया गया। इसी वर्ष अक्षय कुमार की फिल्म डांसर भी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास करिश्मा न कर सकी। बाद में अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार के लिए सफल रही और उनकी भूमिका को भी सराहा गया। इस फिल्म में उनकी को स्टार थी आयशा जुल्का।

इसी दरमियान राष्ट्रीय द्वारा निर्देशित फिल्म मिस्टर बॉन्ड, जो जेम्स बॉन्ड पर आधारित थी, रिलीज हुई। 1993 में केशवराम द्वारा निर्देशित फिल्म अशांत में अक्षय कुमार, डी आर विष्णुवर्धन और अश्विनी भावे के साथ नजर आए। फिल्म दिल की बाजी, कायदा कानून और सैनिक व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन फिल्म वक्त हमारा है कुछ हद तक कामयाब भी रही। समीर मलकान की फिल्म में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव रॉय की मोहरा, इन दोनों ही फिल्मों ने 1994 में अच्छा प्रदर्शन किया और सफल रही। फिल्म मोहरा में इंस्पेक्टर अमर सक्सेना के किरदार को एक नई पहचान तो जरूर मिली। रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा ने एक तरह से अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया और अक्षय कुमार का करियर ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा।

यश चोपड़ा की फिल्म ये दिल लगी में अभिनेत्री काजोल के साथ उन्हें अभिनय का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता ने फिल्मी गलियारों में अक्षय कुमार को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर पहचान दिलाई जिस पर फिल्म के चलने का भरोसा किया जा सकता था। फिल्म सुहाग और ऐलान जैसी कम बजट वाली एक्शन फिल्में भी अक्षय कुमार ने इसी दौरान की और इन्हें भी सफलता मिली। इन फिल्मों ने अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में शुमार कर दिया। 1995 में सबसे बड़ा खिलाड़ी और 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में उन्होंने की। दोनों का ही निर्देशन उमेश मेहरा ने किया। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार का स्क्रीन अपीयरेंस बहुत अलग था। पोनीटेल, लंबे कोट और खूंखार अंडरटेकर से कुश्ती कर उन्होंने फिल्म में खूब शोहरत पाई।

1997 में यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल तो पागल है डेविड धवन की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जो खिलाड़ी श्रृंखला की पांचवी फिल्म थी। इसमें कुमार की जोड़ी जूही चावला के साथ भी पसंद की गई। कमाई के नजरिए से ये फिल्म औसत थी। दोहरी भूमिका वाली फिल्म अफलातून ने एक बार फिर कुमार को सफलता दिलाई। कुछ कमोबेश प्रदर्शन के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में अभिनय किया। प्रीति जिंटा के साथ फिल्म संघर्ष और करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जानवर को बॉक्स ऑफिस पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली।

सन 2000 में रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक फिल्म हेरा फेरी, जो प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म थी, कुमार के साथ साथ सुनील शेट्टी के करियर में भी एक महत्वपूर्ण

मोड़ साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। सन 2000 में आई फिल्म धड़कन, 2003 में अंदाज जो रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, इसमें लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार ने अभिनय किया। 2004 में एतराज और मुझसे शादी करोगी। इन फिल्मों के अलावा राजकुमार संतोषी की एक्शन ड्रामा फिल्म खाकी में अक्षय कुमार की जोड़ी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्या रॉय के साथ एक तरह से कहें तो सफल रही, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई। अमरीश पुरी, रवीना टंडन और राज बब्बर के साथ क्राइम फिल्म पुलिस फोर्स एन इनसाइड स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर चर्चित रही। सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी अच्छी कमाई वाली फिल्म साबित हुई।

2006 में फिर हेरा फेरी, सिंह स्किंग, 2007 में नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार की अन्य फिल्में भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर सफल रही एक तरह से। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव एक मनोरोग विशेषज्ञ का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता था। उनके साथ फिल्म में थी विद्या बालन। फिल्म में अक्षय कुमार के मजाहिया किरदार को पसंद किया गया। ये कॉमेडी हॉरर फिल्म कल्ट फिल्मों में शुमार है श्रोताओं, जिसे लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म के गीत संगीत को भी खूब पसंद किया गया।

खिलाड़ी 420 में अक्षय कुमार ने दोहरी भूमिका निभाते हुए खतरनाक स्टंट्स किए, जो हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए विमान पर थे। इनके अलावा भी कुछ और स्टंट्स के लिए फिल्म में उन्हें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म अजनबी में कुमार नकारात्मक भूमिका में नजर आए। 2005 में आई फिल्म गर्म मसाला के लिए उन्होंने हास्य भूमिका अदा की और फिल्म फेयर पुरस्कार को अपने नाम किया। वर्ष 2007 की अगर बात करें तो उनकी चार फिल्में लगातार हिट रहीं। 2009 में रोहन सिप्पी के बैनर तले बनी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना दीपिका पादुकोण के साथ आई।

वैसे इस दौरान अक्षय कुमार की फिल्में व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव वाली रहीं। 2012 राउडी राठौर, 2014 में फिल्म हॉलीडे, 2012 में ही आई फिल्म ओ माय गॉड, 2015 में बेबी, 2016 एयरलिफ्ट, 2017 में जॉली एलएलबी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अभिनय की काफी सराहना हुई। 2016 में रिलीज क्राइम थ्रिलर रुस्तम, जिसके निर्देशक थे टीनू सुरेश देसाई, पटकथा विपुल के रावल ने लिखी। अक्षय कुमार ने कमांडर रुस्तम का किरदार अदा किया। इलियाना डिक्रूज ने रुस्तम की पत्नी का किरदार अदा किया। नौसेना अधिकारी रुस्तम पावरी की भूमिका को काफी सराहना मिली और अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार 2017 में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आए।

ये फिल्म स्वच्छता और खुले में शौच उन्मूलन पर विशेष ध्यान आकर्षित करती थी। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो अक्षय कुमार की स्वयं निर्मित फिल्म थी। इसके साथ फिल्म पैडमैन भी चर्चाओं में रही। 2019 में केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4, गुड न्यूज और 2021 में एक्शन फिल्म सूर्यवंशी ने मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के साथ व्यवसाय किया। 2021 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ भी थीं। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी काम किया। एटीएस प्रमुख डीसीपी वी सूर्यवंशी यानी अक्षय कुमार मुख्य किरदार की भूमिका में थे। 2023 में ओ माई गॉड 2।

अक्षय कुमार की कुछ और फिल्में जैसे भागम भाग, एनिमेटेड फिल्म जंबो, दे दनादन, कमबख्त इश्क, प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म खट्टा मीठा, फराह खान द्वारा निर्देशित फिल्म तीस मार खान, फिल्म पटियाला हाउस, देसी बॉय, सिंग इज ब्लिंग, इन सभी फिल्मों में अक्षय कुमार ने बड़े ही अलग अलग किरदार निभाए। अक्षय कुमार की फिल्मों को देखें तो आज भी उनके द्वारा निभाए गए तमाम किरदार ऐसे हैं जो लोगों के दिलों में जगह पाते हैं। कुमार ने फिल्मी दुनिया में खुद को एक बड़े ही वर्सेटाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने पर्दे पर हर तरह के किरदार अदा किए और यही वजह है कि अक्षय कुमार की अदायगी को लोग भूल नहीं पाते।

अपने लंबे करियर में कुमार ने स्टंट अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी की मेजबानी 4 सीजन तक करी। टीवी रियलिटी शो डेयर टू डांस लॉन्च किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। अक्षय कुमार सामाजिक संस्थाओं के लिए भी बढ़ चढ़कर कार्य करते रहते हैं। कुमार को उच्चतम करदाता सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया गया है। इनके अलावा अक्षय अपने फिटनेस का विशेष ध्यान रखते हैं। व्यायाम, किक बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, तैराकी, पार्कौर के संयोजन के साथ खुद को फिट रखते हैं अक्षय। कुमार भारतीय कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स टीम के मालिक भी हैं। फिल्म जगत के सुपरस्टार राजेश खन्ना और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया

अक्षय कुमार के बेटे का नाम आरव और बेटी का नाम नितारा है। कुमार को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अजनबी और गरम मसाला के लिए दिए गए। रुस्तम और एयरलिफ्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।

अक्षय कुमार विंडसर विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय सिनेमा में मानद डॉक्टरेट की उपाधि और 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम श्रोताओ आज केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार पर। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। आप दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।
2: यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप से अपने स्मार्टफोन और DTH पर आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज गए हैं। ये समय है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड का। तो चलिए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का और आपको सुनवाते हैं पहला गीत फिल्म आन मिलो सजना से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में रोटी फिल्म का आप ये गीत सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म आया सावन झूमके से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

मुकेश और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में कभी कभी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक नजर फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत।

पत्थर के सनम इस फिल्म के इस गीत के साथ ही, जिसमें आवाज थी मुकेश की, पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए आज का कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित राजखुशी राम का पखावज वादन, जिसमें आज आप सुनेंगे चौताल।

प्रस्तुत है हनुमत बीज कवच परन। ये परन हमारे गुरुदेव मृदंग महर्षि स्वामी पागलदास जी द्वारा रचित है। इसको उन्होंने बीज परन के लिए नाम दिया है। हमने इसको हनुमत बीज कवच परन के नाम से इसको बजाया है। प्रस्तुत है हनुमत बीज कवच परन। पहले पढ़ंत देंता त्रिकद गदि गलधा त्रिकद गदि गलधा त्रिकद गदि हुं हुं हुं हनुमत हुंकार करत जब दमक धरा दम दम कति ठहर तिगहर हनु हनु हनु हन धागिर तक धुमगिर तक धेत्ता कृदेत्ता हं हं हं हं हाक देत कपि कुंजर काटत प्रेत पितर बाधा धाता धा धा ता उं घ्रां घ्रीं घ्रूं घ्रैं घ्रूं घ्र हनुमते नमः धा उं घ्रां घ्रीं घ्रूं घ्रैं घ्रूं घ्र हनुमते नमः धा उं घ्रां घ्रीं घ्रूं घ्रैं घ्रूं घ्र हनुमते नमः तथा। एक चीज ध्यान देने की है, इसमें हनुमान जी के समस्त बीज मंत्रों का प्रयोग किया गया है।

धागे तिट की परन मृदंग की विशेष परन कहलाती है और जो बहुत आवश्यक परन है। मृदंग या पखावज दोनों एक ही नाम है। लोगों को भ्रम है कि मृदंग अलग है और पखावज अलग है, लेकिन हम दोनों ही नाम एक है। हाँ, मृदंगम जरूर अलग है, वो दक्षिण भारतीय वाद्य है। ये चर्चा हम लोग किस कभी करेंगे। आज हम मृदंग की पर्णों की बात कर रहे हैं, पखावज के पर्णों की बात कर रहे हैं। टिट एक परंपरागत पर्ण है, लेकिन थोड़ा अलग हटके है। बिंता टिट कत गदी ग धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट

एक बड़ी बड़ी परने तो भगतिट की बहुत मिलती हैं, जब ये अभी हमने भी बजाई है, लेकिन एक आवर्तन में ये गुरु कृपा से हमारी जिद्दत है, एक आवर्तन में आएगी। तीन परने हैं छोटी छोटी फुलझड़ी की टाइप की, तो तीन परनों में एक पहली धात संपर्क मतलब एक धा की तिहाई, फिर दूसरी धा दो धा की तिहाई और फिर तीन धा की तिहाई और एक आवर्तन प्रस्तुत है छोटी परने।

साईं बाबा, थोड़ा विवाद विवाद जरूर हो गया है उनके लिए, लेकिन हमारी दृष्टि में जो संत हैं उनके अतीत को न देखिए। अतीत तो सबका है, वाल्मीकि जी का भी अलग था, तुलसीदास जी का भी अलग था, लेकिन जो वर्तमान था उनका और जो भविष्य था उस पर निगाह करके हमने श्री साईं बाबा की परण बनाई है। और ये परण प्रस्तुत है, साईं बाबा परण, ये गुरु कृपा से हमसे बन गई है, आपके सामने प्रस्तुत है। पहले पढ़न से, जय जय शिरडी साईं नाथ प्रभु, जयति जयति जय जय गंगाधर घिंद्रगिरतक नात्रगिरतक त्रिगिरतक त्रिगिरतकता त्रिगिरतक त्रिगिरतकता त्रिगिरतक त्रिगिरतकता शंकर अभयंकर प्रलयंकर धड़न्न तड़न्न धा कृधान धा धा शिव ही कृपा मैं साई नाथ प्रभु, कष्ट हरन सुख करन भवतरन श्रद्धा और सबूरी मंत्र प्रदाता राज विधाता, जय जय जय श्री साई नाथ बाबा बाबा बाबा, जय जय जय श्री साई नाथ बाबा बाबा बाबा, जय जय श्री श्री साई।

एक रामपुर दरबार की है, आपके समय प्रस्तुत है पढ़न। गदि गगन देत देत तगिनता धा त्रिगड धे धे धे धड़न नति धित तगि तित धगन का तणी तकित तक दिगन रान धे तगिन नधा ताधा तित तित धिगित तगिन धग तित गदिन तान धा किट किट धिगित तगिन धग तित गदिन तान धा किट किट धिगित तगिन धग तित गहिन तान

जिस तरह से नृत्य में तांडव और लास्य होता है, उसी तरह हमारे पर्णों में भी तांडव और लास्य की स्थिति होती है। एक परण हम आपको पहले लास्य की सुनाएंगे और दूसरी परण तांडव की। पहली परण नाना साहब पानसे घराने की है और दूसरी परण कुदौ सिंह घराने की है। ये था लास्य। अब है तांडव।

रस्तुते कुछ चक्रदार नाना पांचे घराने की काम त्रिगड़ तकता कत दिनता धा दिनता त्रिगड़ धेत कत तगिन नगे नाता धा त्रिगड़ धेत कत तगिन नगे नाता त्रिगड़ धेत कत तगिन नगे नाता

अभी आप सुन रहे थे पंडित राज खुशी राम का पखावज पर चौताल। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में आप समाचार सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।